0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: to RM2.
1: Radio Masti.
2: Radio Masti.
1: North, South.
2: 103.5.
1: East, West.
2: 96.4.
1: Center.
2: 99.4.
0: RM2.
2: Radio Masti.
0: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
3: लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सुप्रभात. घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 5 बजे हैं. इट्स टाइम टू राइज एंड शाइन.
0: वेक अप विद द सन एंड द साउंड ऑफ फन.
2: आरएम2
0: रेडियो मस्ती.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: बाहों में आ जा और सब लोग बस यही चाहते हैं कि प्यार में ऐसे ही डूबे रहें एंड प्यार से ही ऐसे गाने सुनते रहें. ये पॉसिबल है ओनली ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. सुबह के 5:05 हो चुके हैं. विशिंग यू ऑल अ लवली गुड मॉर्निंग. सुप्रभात आप सभी को. कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं. अभी देखिए मैं नॉर्थ से निकल कर अभी यहाँ पर आई हूँ मोका में और इट्स रियली रियली डिफरेंस. मौसम में इतना बड़ा अंतर है. मतलब नॉर्थ रीजन में हल्की हल्की हवाएँ बह रही हैं लेकिन यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है कि ओ माई गॉड इसको कहते हैं असली विंटर सीजन. तो चलिए जितने भी सारे लोग सेंट्रल प्लाटो में रहते हैं आप लोगों के लिए तो ज़्यादा मुश्किल होता होगा सुबह उठकर काम पर जाने के लिए. इसलिए तो हम आते हैं आपको थोड़ा बहुत एनकरेजमेंट देने के लिए, थोड़ी बहुत हिम्मत देने के लिए. एंड आई जस्ट होप कि हमारे गाने अपना मैजिकल इफेक्ट ज़रूर करेंगे एंड दे विल बूस्ट योर एनर्जी अप ताकि आपको करेज मिले इस बिस्तर से बाहर निकलने के लिए. वैसे मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं. एंड कहते हैं ना कि नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वालों की कभी हार नहीं होती है. तो ऑफ कोर्स यू नीड टू ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग अंटिल यू सक्सेड. चलिए यहाँ पर हम सक्सेसफुल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स इसमें बहुत बहुत सारी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है. कंसिस्टेंसी होना चाहिए. ऑनेस्टी इज ऑल्सो द कीवर्ड एंड आई जस्ट होप कि ये सारा कीवर्ड आप ज़रूर अपने डेली रूटीन में उतारते हैं. वेल दिव्या का साथ है अभी से लेकर सुबह के 7 तक. इन योर राइज एंड शाइन आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा ऑन 5:09, 12:94.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: हम भी कभी नहीं भूलेंगे और कभी आप भी मत भूलिएगा कि ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है. यू डोंट नीड टू स्ट्रेस ओवर लिटिल थिंग्स. कभी ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी में हमारे साथ छोटी सी छोटी घटना होती है लेकिन इसको राय का पहाड़ बनाकर हम इतने स्ट्रेस में पड़ जाते हैं और हम इसके बारे में भूल नहीं पाते हैं. और ये याद रखिएगा कि ज़िंदगी में जितना भी एनर्जी आप किसी चीज़ में कंप्लेन करने के लिए लगा देंगे या फिर यू विल पुट ऑल योर एनर्जी वरिंग अबाउट द स्मॉल थिंग तो आपके ज़िंदगी में और भी तकलीफें आती रहेंगी. इसको कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. अगर आप अपनी एनर्जी को पर इन्वेस्ट करते हैं नोइंग दैट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है एंड जस्ट ट्राइंग टू गो विद द फ्लो तो बिलीव मी सब कुछ अच्छा ही होगा. चलिए यहाँ पर 5:21 दिव्या का साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड चलिए बढ़ते हैं आपके कुछ मैसेजेस की ओर. गुड मॉर्निंग. एवरी न्यू डे इज़ अ चांस टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. ये आपने बिल्कुल सही कहा है. आपको भी ओम श्री गणेशाय नमः. जयशन जी साथ देने के लिए थैंक यू सो मच. आपको भी शुभ बुधवार. वेरी गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती टीम. अगला गाना जाएगा धनेश्वर जी के लिए जो इस वक्त बॉम्बू से कनेक्टेड हैं, प्यारी पत्नी सुनीता के लिए जो इस वक्त साथ हैं और साथ में हैं संजीव निशा फ्रॉम देवदूस फैमिली. थैंक यू दिव्या जी. बों कुहाज. थैंक यू सो मच धनेश्वर जी. आपको भी बहुत बहुत सारा प्यार हम भेज रहे हैं. साथ में यहाँ पर अगला गाना ख़ास तौर से हम डेडिकेट करेंगे उन तमाम लोगों के लिए जो कनेक्टेड हैं हमारे साथ. हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग सुप्रभात दिव्या टीना हियर. बाहर तो इट्स रियली वेरी वेरी कूल. बों कुहार जो काम पे जा रही है. अ नाइस सॉन्ग टू बूस्ट द एनर्जी. हैव अ नाइस डे. टेक केयर. स्टे सेफ. गॉड ब्लेस. थैंक यू सो मच टीना जी. आपको भी बहुत बहुत सारा प्यार. चलिए यहाँ पर अगला गाना जाएगा फॉर सरोज राजन पूनम मोनिका पल्लवी विशाल उमेश अर्शी एंड फैमिली के नाम. और आप कहते हैं कि नेचर हैज़ इट्स ओन वर्क टाइमिंग एंड अगर आपकी तरफ से यू कुड हेल्प समवन या फिर आप एनिमल्स को भी हेल्प करें इट्स वेरी बिग थिंग. बिल्कुल उनकी आवाज़ तो हमें ही बनना चाहिए एंड इट्स ऑलवेज़ अ नोबल डीड कि आप दूसरों के काम आए. एंड आई जस्ट होप कि आपको आपकी ज़िंदगी में आप भी ऊपर वाला इंस्ट्रूमेंट बनाकर भेजे ताकि यू कुड बी हेल्पफुल टू ईच एंड एवरीवन. नमस्कार टोनी जी. टोनी जी थोड़े कंफ्यूज हो गए थे. पहले तो आपने नीतू कहा फिर दूसरी बार रिया कहा फिर फाइनली आपको पता चला कि मैं हूँ. थैंक यू सो मच टोनी जी हमारा साथ देने के लिए. और आप कहते हैं गुड मॉर्निंग. डोंट compare your life to others. There's no comparison between the sun and the moon. They shine when it's their time. ये तो हमेशा हम कहते हैं कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले ना किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा. So always know that आपका time जब भी आएगा तो आपको ज़रूर ज़रूर हासिल होगा वो चीज़ें जो आपने कभी मांगी होगी.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: सुबह से मेरी खुद को थोड़ा बहुत सवाल करना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. आपका मन किसको ढूंढ रहा है, क्यों ढूंढ रहा है, किस लिए ढूंढ रहा है, ये सारा जवाब तो शायद खुद को ही आप ही दे पाएंगे. वेल, इसीलिए कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आपको हज़ार एडवाइजेस क्यों ना मिल जाए, एट द एंड ऑफ द डे यू विल नो योरसेल्फ मोर देन अदर्स. और आपको ही पता चलना चाहिए कि ज़िंदगी में आप कौन सी मंजिल को एम कर रहे हैं, आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य को पाने के लिए आपको कौन कौन सी मेहनत करनी ज़रूरी है, ये सारा कुछ आपको ही पता चलना चाहिए. वैसे खुद को मोटिवेट करना भी अच्छी बात होती है. आप कभी कभी क्या होता है कि ज़िंदगी में हम मोटिवेशन के लिए भी दूसरों का इंतज़ार करते रहते हैं और हम वेट करते रहते हैं कि थोड़ा बहुत आपको एक मोमेंट ऑफ अप्रिसिएशन मिल जाए. हाँ, मुझे पता है ये बहुत ही नेचुरल बात है, जाहिर सी बात है, एक मोमेंट ऑफ अप्रिसिएशन कोई आकर दे तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है. लेकिन इसको आदत नहीं बना लेनी चाहिए, क्योंकि एक बार आपको इसकी आदत लग गई तो बार बार आप ज़िंदगी में अच्छा करेंगे जस्ट टू गेट सम मोमेंट ऑफ अप्रिसिएशन. और अगर आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता है तो ये इंटिमिडेशन बन जाता है, जो कि गलत बात है. ऑलवेज ऑलवेज Try to motivate yourself. खुद के बारे में अच्छा अच्छा सोचें. और जब ज़िंदगी में आप अच्छा कर रहे होंगे तो डोंट वेट कि कब कोई आकर दे विल टैप ऑन द शोल्डर एंड टेल यू कि शाबाश, क्या अच्छा काम किया है. जस्ट ट्राई टू प्रेज योरसेल्फ एंड नो कि आप ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं. वेल, चलिए कुछ और आपके मैसेजेस की ओर हम ज़रूर बढ़ेंगे. वी हैव किशन भरोसे जी, जो राम भरोसे जी, एंड आप कनेक्टेड हैं हमारे साथ फ्रॉम चित्रकूट वाले दिपायत. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. एंड अगला गाना गुजार स्पेशली फॉर यू. एंड ऑल्सो बबीता जी, आप है बना कैसे, थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड. हाई दिव्या जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डियर, लोट्स ऑफ ग्रीटिंग्स, हैप्पीनेस एंड बेस्ट विशेज. आप कहते हैं कि यू जस्ट रिफ्रेश माई यादें. हे, मैंने कसम ली फ्रॉम द मूवी तेरे मेरे सपने बाय द लेजेंडरी देव साहब. वॉट अनफॉरगेट tube, it's amazing. From Bhai Mahen of Palma, thank you so much. इस unforgettable tune को आपने इतना पसंद किया, हमें भी बहुत ही अच्छा लगा जानकर. And we also would like to dedicate the next gana आपके नाम छाया सुकोई of Belgaum Sebastopol. आपके खूबसूरत प्रोग्राम को enjoy करते करते किचन में खाना तैयार कर रही हूँ. चलिए उम्मीद करते हैं कि आपका ये खाना अमृत से भी ज़्यादा टेस्टी लगे. वैसे कहते हैं ना कि जो प्यार से भी लोग बनाते हैं वो तो हमेशा अच्छा टेस्ट ही करता है. एंड आपको बोंकवाज इन द किचन छाया जी. अगला गाना आपके पति देव सुबिराज के लिए, बेटा है श्रेयस, बेटी शैवी. एंड आपकी प्यारी बहना के लिए ज़रूर हम अच्छा गाना चलाएंगे. एंड अगला गाना गोज आउट स्पेशली टू ऑल द फैंस एंड रेडियो मस्ती टीम. ओके, आपने हमें बहना कहा है. बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट गाना गोज आउट स्पेशली फॉर यू. जनीता बिहोस पुतियाज का बर्थडे है आज, तो उनको बहुत बहुत सारा प्यार. बर्थडे सॉन्ग ओनली फॉर हर. एंड हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू जनीता, आपको बहुत बहुत सारा प्यार. और साथ में यहाँ पर अगला गाना हम खास तौर से डेडिकेट करेंगे फोर सिस्टर्स, माला, बेबी एंड मीरा. सो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की ओर. जितने भी सारे लोग इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच. एंड आप कहते हैं हाय रेडियो मस्ती, नीता फ्रॉम बोलो. नेक्स्ट गाना गुज आउट फॉर माय डियर हबी सुभाष, ग्रैंड चिल्ड्रन नीरव, आराध्य, आरव एंड मोहिसोवा फैमिली के लिए. तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट गाने की ओर.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: 5:47 ऑलरेडी. चलिए बढ़ते हैं आपके डेली हॉरोस्कोप की ओर. शुरुआत करेंगे एरीज के साथ. मेष राशि, आज सोच समझ कर लिया गया निर्णय आपके लिए लाभदायक साबित होगा. परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है और व्यवसाय में फिलहाल वर्तमान कामों पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. नौकरी में प्रमोशन के संकेत भी आपको मिल रहे हैं. टॉरस वृषभ राशि, आज आपके संपर्क और सहयोग आपके लिए लाभदायक साबित होगा. नई तकनीक और ज्ञान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और जितना हो सके फैशन और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे. परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा. जेमिनी मिथुन राशि, आज अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें. दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा जोखिम ना लें. कारोबार में महत्वपूर्ण निर्णय लाभदायक साबित होंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति जरूर मिलेगी. कैंसर कर्क राशि, आज विदेश संबंधी कार्यों में आ रही रुकावट दूर हो सकती है. परिवार और संबंधियों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें और व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा रहेगी लेकिन आपकी जीत निश्चित है. पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातों को ज्यादा बढ़ाने से बचें और खान पान संतुलित रखने से स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा. लियो सिंह राशि, आज आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और कुछ नई उपलब्धियां भी मिल सकती हैं. यात्रा के योग सकारात्मक परिणाम देंगे लेकिन अहंकार और जल्दबाजी से बचना जरूरी है. व्यवसाय में नए अनुबंध लाभ देंगे हालांकि आर्थिक फैसले सोच समझ कर लें. घर परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और स्वास्थ्य के लिए हल्का और संतुलित भोजन करना बेहतर रहेगा. वर्गो कन्या राशि, आज मेहनत और आत्मविश्वास से आपका कोई बड़ा सपना पूरा हो सकता है. ज्यादा सोच विचार में समय ना गवाएं. व्यवसाय में फिलहाल वर्तमान कार्यों पर ध्यान देना बेहतर रहेगा. नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है. परिवार के साथ समय बिताने में से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और मौसम बदलने की वजह से स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको भी रखना है. लिब्रा तुला राशि, आज वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपके लिए भाग्य वर्धक साबित हो सकता है. छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें. व्यवसाय में कोई भी बड़ी डील पूरी जानकारी के बाद ही करें. विदेश जाने की कोशिश कर रहे युवाओं को शुभ समाचार मिल सकता है और प्रेम संबंधों से में थोड़ी निराशा रह सकती है और स्वास्थ्य के लिए अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखना जरूरी है आपके लिए. स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आज आपकी उन्नति में आ रही रुकावट दूर हो सकती है. आर्थिक स्थिति में बेहतर होगी लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ आपको अच्छी तरीके से उठाना है और स्वभाव से चिड़चिड़ापन भी आ सकता है. जितना हो सके ट्राई टू बी वेरी इजी एंड इजी गोइंग. व्यवसाय में ओवर कॉन्फिडेंस से बचें और नई तकनीक की जानकारी लेते रहें. जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है और प्रदूषण और संक्रमण में अपना बचाव करना जरूरी है. सजिटेरियस धनुराशि, आज प्रभावशाली लोगों से मुलाकात आपके लिए लाभदायक साबित होगी. सामाजिक स्तर पर सम्मान बढ़ेगा. कारोबार में नया ऑफर मिल सकता है लेकिन पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें. पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद हो सकती हैं और इसके अलावा खान पान संतुलित रखें ताकि गैस और एसिडिटी की समस्या से बचा जा सके. कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आज आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. संपर्क सूत्र भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे. परिवार में छोटी बातों को बढ़ाने से बचें. व्यवसाय में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन उसका परिणाम भी सकारात्मक मिलेगा और प्रेम संबंधों में भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है. अक्वेरियस कुंभ राशि, आज परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के योग है। हालांकि दिन की शुरुआत में अचानक कोई परेशानी सामने आ सकती है। व्यवसाय में ऑनलाइन और तकनीकी गतिविधियां लाभदायक रहेगी। पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें और वाहन सावधानी से चलाना बेहद ज़रूरी है। और आखिर में वी हैव पाइसेस मीन राशि। आज आध्यात्मिक सोच और सकारात्मक ऊर्जा आपको मानसिक शांति देगी। दूसरों की सलाह पर तुरंत भरोसा करने से बचें। व्यवसाय में उतार चढ़ाव रहेंगे लेकिन जल्द ही परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। नौकरी में सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है और बदलते मौसम की वजह से स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और प्रकृति के बीच कुछ समय जरूर बिताएं। सो ये था आपका डेली हॉरोस्कोप। हैव अ गुड गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।
0: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती। Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
0: Radio Musty.
1: ऑलरेडी 5:53 एंड चलिए कुछ ही देर में हम बढ़ने जा रही हैं 6 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर। देखते ही देखते ऑफकोर्स हम कदम रखने जा रहे हैं द सेकंड आवर ऑफ राइज एंड शाइन, जहां पर दिव्या का साथ है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती टिल 7 AM।

0: listening to Radio Musti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
0: Radio Musti.
5: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
5: Feel the Musti.
6: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। नमस्कार।
7: नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कल कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल को राज्यसभा में संशोधनों के साथ पारित किया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि केवल संविधान भर से किसी लोकतंत्र की रक्षा नहीं की जा सकती। उनके अनुसार लोकतंत्र की असली ताकत मजबूत संस्थाओं और जागरूक नागरिकों में निहित है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता और विकसित होता रहना चाहिए। संसद की कार्यवाही अब शुक्रवार 19 जून शाम 5 बजे तक स्थगित कर दी गई है। इससे दिन बजट 2026-2027 पेश किया जाएगा। बजट से पहले विभिन्न पक्षों के साथ परामर्श बैठकों का दौर 29 अप्रैल से 6 मई तक 5 दिनों में आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और भू राजनीतिक तनावों के बीच ये बजट चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 2,264 मिलियन रुपए की अतिरिक्त बजटीय राशि की मांग की है। इसके तहत द सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन बिल को राज्यसभा में पहली बार पेश किया गया। इस अतिरिक्त राशि का उपयोग प्रिजन सर्विस, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर और भूमि एवं आवास मंत्रालय समेत विभिन्न विभागों के बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। FCC ने एसेट्स डिक्लेरेशन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव घोषित किया है। अब डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट में संशोधन के बाद सभी डिक्लेरेशंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुदफ के माध्यम से जमा करनी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमरीकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर कार्रवाई की। अमेरिका के अनुसार ये कदम ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में उठाया गया। और अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
8: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
7: हमारे इलाके पर हल्की और गर्म हवाओं का असर है। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी। दोपहर बाद केवल दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो पर रह रहकर बरसात होगी और बादल भी घिरे रहेंगे। कभी कभी बरसात काफी तेज भी हो सकती है। रात को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। साहली इलाकों पर तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, दूर समुद्र में नहीं जाएं। सूर्योदय 6:49 पर, सूर्यास्त 5:37 पर होगा।
0: Your weather forecast on RM2
5: Radio Musti. Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
5: Radio Musti.

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, हद से नहीं गुजरना है. ज़िंदगी में आपको एक बैलेंस होना चाहिए, आपका एक बैलेंस होना चाहिए, आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका पर्सनल लाइफ और साथ में आपके लिए मी टाइम, ये भी इम्पोर्टेंट है. तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वक्त उठ चुके हैं, मे भी आप थोड़ी देर में तैयार होने जाएंगे एंड आप बस थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट रिलैक्स करके तभी उठेंगे और बस एनर्जी और मोटिवेशन को समेटने की पूरी कोशिश कर रही हैं हम हैं आपको मीठी नींद से जगाने के लिए. 6:10 विशिंग यू ऑल अ लवली गुड मॉर्निंग वंस अगेन. सुप्रभात. इट्स अ ब्यूटिफुल वेंसडे मॉर्निंग 3rd June 2026 जहाँ पर एक बार फिर से दिव्या साथ निभाने के लिए आ चुकी हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती. एंड चलिए यहाँ पर जितने भी सारे लोग इस वक्त तैयार हो रहे होंगे ऑलरेडी, आपको बोन कुराज. एंड जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, शायद थोड़ी देर में आपका नाइट शिफ्ट ख़त्म भी हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा और करिए जो विश कर रहे हैं. एंड चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं आपके कुछ और मैसेजेस की ओर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट. आई नो आप लोग कभी कभी इतने इंतज़ार कर लेते हैं अपने मैसेजेस के लिए, लेकिन सुबह सवेरे इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं कि आपने अगर जल्दी भी हमें मैसेज भेजा होगा तो आपका मैसेज धीरे धीरे करके नीचे और नीचे और थोड़ा नीचे होता जाता है क्योंकि लोगों के इतने सारे मैसेजेस आते रहते हैं. सो कहते हैं ना कि showing kindness while being patient is the real test. So thank you so much for being patient. And yahan par aap kehte hain, hello, I am Tina Murthy and want to wish my mama Shubha Ramtohal a very happy birthday. आज वो 70 years की हो गई है. हे आंटी जी, आपको वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. गॉड ब्लेस हर विद लॉन्ग लाइफ, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी फ्रॉम बेटी टीना पूनम कुना. एंड आई डोंट नो अगर आपका मैसेज यहाँ पर इनकम्प्लीट आया है, बस कुना तक ही यहाँ पर आपका नाम ख़त्म हो चुका है. अगर आपका मैसेज इनकम्प्लीट है तो प्लीज़ व्हाट्सएप पर ज़रूर हमें एक बार फिर से अपना मैसेज भेजिएगा ऑन 5499-1294. नंबर वही है, बस आपको व्हाट्सएप पर एक बार फिर से हमें याद करना होगा. और साथ में यहाँ पर अगला गाना हम ख़ास तौर से डेडिकेट करेंगे स्पेशली फॉर ज्योति जी आप चातु बिनागर से. नेक्स्ट वॉक गुजार फॉर आशनी रेखा सुरेखा मतलब फैमिली के लिए. थैंक यू सो मच कि आप लोग इतने प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं. वी आर रियली रियली ग्रेटफुल कि आप बस साथ दे रहे हैं. हाय नमस्कार, वुड लाइक टू विश अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू सिस्टर रूमा ऑफ वाकुआ. एंड नेक्स्ट गाना गुज आउट स्पेशली आपकी बहन के लिए. आपका भी मैसेज इनकम्प्लीट आया है, प्लीज़ डू सेंड योर मैसेज वंस अगेन ऑन 5499-1294. व्हाट्सएप पर आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहे हैं. हाय गुड मॉर्निंग प्रीतम बीटू जी, आप हैप्पी तो से वॉन्ट टू से थैंक यू फॉर प्लेइंग सच रोमांटिक सॉन्ग्स. धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है. इट रियली मेड अप माई डे. वेरी नाइस टू नो प्रीतम जी कि आपको हमारे गाने अच्छे लग रहे हैं. बस बाकी गाने भी आप एंजॉय करते रहिएगा. नमस्ते जी, वुड लाइक टू विश माय ब्रदर विकी ऑफ घोंगो बहन चाची माधवी ऑफ न्यू वेल्डी कुवैत अ वेरी हैप्पी बर्थडे. गॉड ब्लेस देम फ्रॉम रीना आरव होल बिसेस अ फैमिली ऑफ बिलेव. यसेश तो चलिए यहाँ पर भाई विकी रामफल को भी वेरी हैप्पी बर्थडे. विश हिम हेल्थ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी इन लाइफ फ्रॉम बाबू पल्लवी एंड बिसेस ऑफ फैमिली. तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की. And ye agla gana goes out to each and everyone connected with us.
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
0: RM2
1: Radio Musti.

पर फ्रेंड्स 6:24 चलिए कुछ ही देर में हम बढ़ने जा रही है सारी 6 के समाचार बुलेटिन की ओर। एंड यहाँ पर एक बार फिर से हम मोक्षदा गंगा दिन को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन विश करेंगे क्योंकि शी विल बी स्वेयरिंग इन आज नोटरी एट द सुप्रीम कोर्ट टुडे। एंड आपको मेनी कंग्रेचुलेशन, प्लेंटी ऑफ सक्सेस एंड मे यू बी सक्सेसफुल इन ईच एंड एवरी एंडीवर्स। एंड आपको बहुत सारा प्यार भेज रही हैं आपकी प्यारी सी मामा बबीता, डैड सुभाष, बहने हैं पेम, स्मृति, दादी, सभी गंगादीन फैमिली ऑफ सुदनाक एंड सेवास्तोपोल, आपको भी हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग, वॉन्ट टू विश ऑल गनवा फैमिली ऑफ पिचित रिट्रीट एंड रघु फैमिली फ्रॉम बुनमे अ ब्लिसफुल डे फ्रॉम विकी, वर्षा, रूही एंड लिटिल लव्या, थैंक यू सो मच, आपको भी गुड डे। नमस्ते जी, द नेक्स्ट गाना गुजार फॉर लेट डेड प्रेम चनन मोहिस फॉर हिज 81 एनिवर्सरी, मिस यू पापा फ्रॉम बेटा राम, बहुरेखा दामाद, दामाद नहीं बल्कि आपका पोता है निश्चय मोहिस फ्रॉम लिस्कालिये विलाज। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले गाने की

0: की ओर, एंड ये अगला गाना हमें लेकर जाएगा 6:30 के समाचार बुलेटिन की ओर। वक्त नहीं इजाजत दी तो एक बार फिर से आपसे मुलाकात करने के लिए आएंगे ऑफ कोर्स, वरना 7:00 वेदिता ऑलरेडी सेट होगी, आएंगी आप लोगों से मिलने ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती लेकर आएंगी आप लोगों के लिए मॉर्निंग बीट। सो स्टे राइट कनेक्टेड।
1: Wake up with the sun and the sound of fun.
2: RM2
1: Radio Musty.

सुबह के ठीक 6:30 बज रहे हैं, समाचार सुनिए। बुधवार 3 जून की सुबह है, प्रथम समाचार बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। नजर सबसे पहले डालते हैं आज की सुर्खियों पर।

0: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कल राज्यसभा में घोषणा की कि बजट 2026-2027 आगामी 19 जून को पेश किया जाएगा। उन्होंने पहले ही संकेत दिया कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और भू राजनीतिक तनावों के बीच ये बजट कठिन रहने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल संशोधनों के साथ राज्यसभा में पारित। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा, लोकतंत्र की असली ताकत मजबूत संस्थाओं और जागरूक नागरिकों में निहित है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 2,264 मिलियन रुपए की अतिरिक्त बजटीय राशि मांगी है। द सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन बिल राज्यसभा में पहली बार पेश किया गया। एमओआरए ने जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 के बीच वीएटी के रूप में 52,200 मिलियन रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। जानकारी प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में दी। एमएसएस फिलहाल किसी रणनीतिक साझेदार की तलाश में नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा, कंपनी का ध्यान पुनर्गठन और सुधार प्रक्रिया पर केंद्रित है। विदेश मंत्री रितेश रामफल ने राज्यसभा में दोहराया, मॉरिशस फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों और स्वतंत्र राष्ट्र की मांग का समर्थन करता रहेगा। पुलिस फाइटर्स यूनियन ने 4 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। आपात स्थिति में पुलिस वाहन में महिला की डिलीवरी कराने में मदद करने वाली 2 महिला पुलिस कर्मियों को सराहा गया। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल को संशोधनों के साथ राज्यसभा में कल पारित किया गया है। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि केवल संविधान से ही किसी लोकतंत्र की रक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। उनके अनुसार लोकतंत्र की असली ताकत मजबूत संस्थाओं, पारदर्शी व्यवस्था और जागरूक नागरिकों में होती है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलता और विकसित होता रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान की समीक्षा केवल सरकार या विपक्ष का विषय नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसी सोच के तहत उन्होंने नागरिक समाज से भी अपने सुझाव और सिफारिशें देने की अपील की। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इच्छा जताई है कि मॉरिशस की स्वतंत्रता के 60वें वर्ष से पहले ये संवैधानिक सुधार वास्तविक रूप से लेगा। हम आपको बता रहे थे कि 19 जून को बजट पेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
1: Je dirais, madame la présidente, le projet de loi traduit directement un engagement pris dans le programme gouvernemental 2024-2029. Le projet de loi institue une commission indépendante chargée de revoir notre loi suprême, notre constitution, de proposer des réformes majeures qui devront être votées ici. Mais moi, je l'espère. I can understand the worries of the former deputy prime minister. They may go on for ages, 2 years, 3 years, 4 years or whatever, and you have another election. Moi, je l'espère, madame la présidente, que avant que nous célébrons le 60e anniversaire de notre indépendance, la réforme sera là.
0: तो संसद की कार्यवाही अब शुक्रवार 19 जून शाम 5 बजे तक स्थगित कर दी गई है। इसी दिन बजट 2026-2027 भी पेश किया जाएगा और बजट से पहले विभिन्न पक्षों के साथ परामर्श बैठकों का दौर 29 अप्रैल से 6 मई तक चला था। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनावों के बीच ये बजट चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 2,26,40,00,000 रुपये के अतिरिक्त बजटीय राशि की मांग की है। इसी के तहत द सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन बिल को राज्यसभा में पहली बार पेश किया गया।

0: ये अतिरिक्त राशि प्रिजन सर्विस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय तथा भूमि और आवास मंत्रालय समेत विभिन्न विभागों के बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी ने 1 जुलाई 2025 से 30 अप्रैल 2026 के बीच वैल्यू एडिड टैक्स यानी VAT के रूप में 52,200,000,000 रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। ये जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने राष्ट्रीय सभा में दी। वे पोर्टली मैरीटाइम और पोर्टली ईस्ट के सांसद ईशान जुम्मन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर मॉरिशस को लेकर भी राष्ट्रीय सभा में कल सवाल उठाया गया, क्या कंपनी अपने पुनर्गठन के लिए किसी रणनीतिक साझेदार की तलाश में है। इस पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने स्पष्ट किया कि फिलहाल एयर मॉरिशस किसी साझेदार की तलाश में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस समय प्राथमिकता कंपनी के पुनर्गठन और सुधार प्रक्रिया पर है। साथ ही एयर मॉरिशस अपने उड़ान नेटवर्क और विमान बेड़ी की समीक्षा भी कर रहा है ताकि भविष्य की दिशा तय की जा सके। अदिति अवतार।
1: एयर मॉरिशस वर्तमान में अपनी नेटवर्क और अपनी फ्लीट का पुनर्मूल्यांकन कर रही है जो उसके भविष्य की दिशा तय करेगा। CEO आंद्रे विर्जोय ने पिछले महीने लिंक्डइन पर एयरलाइन के भविष्य के लिए अपनी 10 साहसी रणनीतियों का खुलासा करना शुरू किया। उड़ानों की संख्या बढ़ाने और परिचालन लागत को काफी कम करने के लिए वे कुछ क्षेत्रीय और एशियाई मार्गों पर छोटे विमानों को तैनात करने की योजना बना रहे हैं। वे जोहान्सबर्ग, केप टाउन, मुंबई और कुआलालंपुर जैसे गंतव्यों के लिए एयरबस A321LR या बोइंग 737 मैक्स 8 या 10 विमानों को शामिल करने का विचार कर रहे हैं। हालांकि ये विमान वर्तमान में सेवा में मौजूद बड़े विमानों की तुलना में कम यात्रियों और काफी कम कार्गो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि ये अधिक परिचालन दक्षता प्रदान करते हैं। MK अपनी लंबी दूरी की उड़ानों के लिए 2028 तक 3 एयरबस A350 भी प्राप्त करेगी। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने कल राष्ट्रीय सभा में दी। उनके पिछले कार्यकालों में से एक के दौरान कनाडा के एक ऑडिट फर्म ने पहले ही एयर मॉरिशस को एक रणनीतिक साझेदार खोजने की सिफारिश की थी।
0: राष्ट्रीय सभा में विदेश मंत्री रितेश रामफल ने मॉरिशस और इसराइल के संबंधों को लेकर सवाल पूछा। उनसे पूछा मंत्री ने कहा कि मॉरिशस हमेशा से फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों और स्वतंत्र राष्ट्र की मांग का समर्थन करता आया है। उन्होंने बताया कि इसराइल के साथ संबंधों में समय समय पर बदलाव हुए हैं, लेकिन मौजूदा समय में दोनों देशों के बीच सहयोग सीमित है। सरकार ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून, बहुपक्षीय सहयोग और फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। आदित्य अवतार।
2: Although diplomatic relations have not been formally severed, the current government has maintained a restrained approach to bilateral engagement.
1: विदेश मंत्री रितेश रामफल कहते हैं, भले ही कूटनीतिक संबंध आधिकारिक तौर पर रद्द किए गए हैं, फिर भी सरकार ने इसराइल के साथ मात्र एक सीमित द्विपक्षीय संबंध कायम रखा है। हमने फिलिस्तीनी जनता के प्रति नियमित रूप से समर्थन जताया है और साथ ही हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति भी कटिबद्ध हैं। फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर मॉरिशस अपने सिद्धांतों पर मजबूत है। इसको ध्यान में रखते हुए ही मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में फिलिस्तीन की नॉन मेंबर स्टेट के रूप में सदस्यता के हक में वोट कर रहा है। इससे जुड़ी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने के लिए मॉरिशस सभी संबद्ध कानूनी प्रावधानों का पालन करेगा ताकि इसके लिए मॉरिशस एक महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इस बीच मॉरिशस संयुक्त राष्ट्र के सभी प्रयासों का समर्थन कर रहा है ताकि फिलिस्तीन में संघर्ष और लोगों पर हमले खत्म किए जा सके, सुरक्षा कायम की जा सके और इस लंबे विवाद और अस्थिरता का कोई ठोस समाधान हो।
0: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन यानी FCC ने संपत्ति घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव घोषित किया है। डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट में संशोधन के बाद अब सभी जो घोषणाएं होती हैं ऑनलाइन मंच मुदाफ के माध्यम से जमा करनी होगी। ये व्यवस्था 1 जून से लागू हो चुकी है। 1 जुलाई के बाद कागज़ पर जमा की गई जो घोषणाएं होंगी उन्हें स्वीकारा नहीं जाएगा। FCC की डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स यूनिट के अधिकारी चंदन मधु को सुनते हैं।
3: Ça avènement là, une vie possible avec mon amendement dans la loi qui vient récemment.
1: ये बदलाव हाल में कानून में लाए गए सुधारों के साथ संभव हो पाया।

0: गया है। हमने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जिसके तहत डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स एक्ट के अंतर्गत आने वाले डिक्लेरेंट्स के पास अब से ई सबमिशन करने का विकल्प होगा, यानी वे अपने डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स फॉर्म ऑनलाइन भरकर सबमिट कर सकेंगे। ये प्रणाली एक परिवर्तनशील स्तर पर होगी, अतः 1 जून 2026 से हम ऑनलाइन डिक्लेरेशन स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि ये सिस्टम कायम हो चुका है, लेकिन साथ ही हम अभी के लिए हस्तलिखित फॉर्म भी ले रहे हैं। ये बात उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई 2026 से सभी डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स फॉर्म मात्र ऑनलाइन ही भरकर सुपुर्द किए जाने चाहिए। इसके लिए हम डिक्लेरेंट्स को सचेत कराने और उन्हें इस नई प्रणाली के इस्तेमाल के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं ताकि लोग इस सिस्टम से भली भांति परिचित हो सके।
1: Tout le monde est familiarisé avec utiliser ce système-là.
2: पुलिस फाइटर्स यूनियन ने 4 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया है। इनमें 2 महिला पुलिस कर्मियों को एक आपात स्थिति के दौरान पुलिस वाहन में महिला की डिलीवरी कराने में मदद के लिए सम्मानित किया गया। वहीं 2 अन्य पुलिस अधिकारियों को भी इस अभियान में योगदान देने के लिए सराहा गया है। समारोह में उनके साहस, पेशेवर रवैये और कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की गई है।
3: Je remercie Police Fighters Unit qui nous a demandé un trophée et c'est un moment bien fier pour moi et pour mes parents aussi. Ils ont découragé pour entendre les dire sans cesse training la durée tout ça, mais non, il pas au fait il pas comme ça. Ils disent oui, mais ils encouragent pour moi dire si en cas de musicien c'est chercheur, vous êtes capable de dire d'accord avec ça c'est chercheur.
4: Moi pour encourager ma jeune pour rentrer la police parce qu'il beaucoup pas de rentrer et sa training là c'est assez dur, mais ça lui pour faire du mental bien plus fort et me trouver à cause de training même qui comme ça joue là comme j'aime qu'à faire face à ça incident là.
5: Qu'il n'est pas fait partie de nos duties et que personne n'a pas donné aucun training pour sa bande policière là pour être capable à cause d'une maman.
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के एक सैन्य ठिकाने पर कार्रवाई की। अमेरिका के अनुसार ये कदम ईरान की ओर से किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में उठाया गया। अमेरिकी सेना का कहना है कि कई मिसाइलों और ड्रोन को रास्ते में ही रोक दिया गया।

और अब जल्दी जानते हैं कि मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर हल्की और गर्म हवाओं का असर जारी रहेगा। आज सुबह के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी। केवल दोपहर बाद दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लेटू पर कुछ बादल घिरे रहेंगे और मध्यम से हल्की वर्षा होने की संभावना है। अन्य इलाकों में मौसम आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग 2 डिग्रीज अधिक रहने का अनुमान है और ऊंचे इलाकों पर अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि तटीय इलाकों में 19 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच। रात में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने वाला है। हवा उत्तर पूर्व दिशा से लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। समुद्र प्रवाल रेखा के बाहर खराब रहेगा, जहां लहरें लगभग 2 मीटर तक उठ सकती हैं। दूर समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय सुबह 6:39 पर और सूर्यास्त शाम 5:47 पर होगा।

तो देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजन, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। महेश्वर नगरी रोड निव्यामिल त्रियोली में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के राम भंगी की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दोपहर बाद 2:30 बजे उन्हीं के मकान त्रियोली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी त्रियोली की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। 63 क्रिमेशन

0: Mission ne trompe pour lui, tu as 6 ans qui est 16 ans qui Nadsen Valaidon Tandrayen Nadisen Valaidon Tandrayen Logun his supaya ke naam se adhik jante thi ki mrityu ho gayi hai unki arthi aaj dopahar baad 2 baje unki patni ke makan Port-Louis, c'est Utaka Rantim Sanskar Kili, Ilakihi, Kishumshan Bhumi, Lijay Jayegi, Cremation to the at 2 p.m. Royal Road Belvedere, Royal Road Belvedere, 82 years old, ki, Bibi Ume, Sulma, Saïd Miraza, Bibi Ume, Sulma, Saïd Miraza, Intakal Kargai, Pedaish Nam Fundo, Logun His Surma Kinam Sadhik Jantiti, Orve Pali Flak Aspatal Me, Nursing Supervisor Ki Hesek Se Kam Kartiti, Un Kajanaza, Arsubhaki Daspaji, Unke Pati, Gulapa, Saïd Miraza, Kimakan Belvedere Senikal Kar, Dafnani Kili, Bubwa Lalmati, Kakabrastan Lijajaga, Funeral today at 10 a.m. Savan Road, Nouvelle France Me, France में 88 साल की 88 years old की कांति मोहरिया की मृत्यु हो गई है लोग उन्हें माता जी साबित के नाम से अधिक जानती थी उनकी अर्थी आज सुबह 3 बजे उनके बेटे सुरेश धनीलाल आहो के मकान सावन रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 पीएम रू गालिया कास्टेलमी 54 साल की 54 years old की उत्तम दत्त सामनाथ की मृत्यु हो गई है लोग उन्हें प्रीतम के नाम से अधिक जानती थी उनके थी आज दिन की 11 बजे बल्कि कल दिन की 11 बजे उन्हीं के मकान कास्टेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले ब्रियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11 एएम गांधी रोड अर्नेस्ट फ्लोरेंट बेलेयमी 52 साल की 52 years old की दिव्यानी लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है पैदाइश नाम जहाजिया लोग उन्हें बबीता के नाम से अधिक जानती थी उनकी थी आज दिन की बल्कि कल 4 जून को दिन के 11:30 बजे उनके पति विनोद स्तम लक्ष्मण के मकान बिलेर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 एएम Maya Vaham Road Sulyakmi 90 साल की 90 years old की Adama Swami की मृत्यु हो गई है पैदाइश नाम पुताया लोग उन्हें सरोज के नाम से अधिक जानती थी उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनकी बेटी माला रामिया के मकान सुलियाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंबुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी Plein de l'Hermitage Highlands, mais mousselement plein de l'Hermitage Highlands, mais Chatter Salki, 76 years old, qui Rup Quanti Lokiram. रुकमंती लकीराम की मृत्यु हो गई है पैदाइश नाम गंगा बिसुन लोग उन्हें सांता के नाम से अधिक जानती थी उनकी अर्थी आज दिन की 1 बजे उनके बेटे केविन लकीराम के मकान हाईलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आले ब्रियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 1 पीएम शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
2: Radio Musty.

0: Wake up with the sun and the sound of fun.
1: RM2
0: Radio Musti.
2: Well, friends, अच्छी बजकर 55 मिनट एंड चलिए इसी के साथ फाइनली इट्स अ टाइम फॉर दिव्या टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हमारे बाद वेदिता ऑल सेट हैं, लेकर आ रही हैं आप लोगों के लिए मॉर्निंग बीट. सो स्टे राइट कनेक्टेड. हमारी और आपकी मुलाकात बहुत ही जल्द. तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: सुबह के 7:11 हुए हैं, हम पहुंच गए हैं 3 जून तक. देखा, धीरे धीरे करके यहां पर वक्त बीतता चला जा रहा है. सो गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, राइज एंड शाइन. अभी सूरज चूट गए हैं, हमारा वाइब्स हाई हो चुका है. और चलिए भाई, यहां पर आपका फेवरेट मॉर्निंग कंपेनियन यानी कि रेडियो मस्ती आ गए हैं आपका साथ देने के लिए. हमारे साथ जुड़े रहे मॉर्निंग बीट में. और भाई, हम तो चाहते हैं कि आप अपने मॉर्निंग को किक स्टार्ट करें हमारे म्यूजिक के साथ, हमारे पॉजिटिव एनर्जी के साथ और खूब सारी मस्ती के साथ. तो आप काम पर जा रहे हैं, बच्चों को तैयार कर रहे हैं स्कूल के लिए, या तो फिर ड्राइव कर रहे हैं. फिर भी कुछ लोग हैं जो बैठकर शायद एक गर्मा गर्म कप चाय या कॉफ़ी के साथ हमारा साथ दे रहे हैं. अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. बहुत बहुत सारा प्यार है आपके लिए. चलिए, हम प्रॉमिस करेंगे आपको कि यहाँ पर हमारे जो गाने होंगे अब धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि अभी सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में रोमांटिक गीतों से कुछ नहीं होता भाई, ये धमाका तो करना पड़ेगा. चलो, हम बुलाते हैं सभी को, हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए और हमारे गीतों के साथ साथ अपने मूड को भी एकदम टकाटक बनाते चलिए.
3: Kamla, elle a senti bon que toi là. Qui? Tu baignes dans parfum? Tu l'auto aussi baignes dans parfum? Tu sales des bains si baignes dans parfum toi? Tu comique toi deux? Check ça? Sandale à le kick? Et toi l'im sandale 24-7 toi?
4: Celle-là, tu peux en trouver ça. Fait que t'es beau que celle-là.
3: À le kick gel air fresh no pocket size? Asté, on me comprend. Tu mets air fraîcheur dans ton poste mon sport, tout.
4: Vrai, même t'es bien comique, toi. Allez, essaye tout. Allo Kick, peine ce deuxième sans bosser.
5: Allo Kick, freshness anytime, anywhere.
6: Prêt à vivre la Coupe du Monde 2034?
7: Hey, partner, 2034? World Cup 2026 là!
6: Bien sûr, partner! Mais en achetant votre Smart TV Xiaomi chez Jikalachan, profitez d'une garantie unique de 10 ans, incluant 5 ans sur l'écran!
7: Eh, hey, vrai même? Avec 10 ans garantie, tu get World Cup 2026, 2030, 2034, tout sans tracas!
6: Vite! Profitez des 10 ans de garantie unique sur les Smart TV Xiaomi avec leur qualité d'image exceptionnelle! Only chez Jikalachan, distributeur officiel de la marque!
7: Eh, hey, partner! Mon pari pour vivre World Cup 2034, moi, hein?
8: Dans quelques heures se tiendront les tirages du loto et du loto plus. Le jackpot du loto plus est estimé à 8 millions de roupies et celui du loto est complètement délirant. Il est estimé à 65 millions de roupies. 65 millions de roupies. On aura tous les yeux rivés sur les tickets du loto ce soir.
9: Ceci est un communiqué de Lototech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
10: Kevin, ton petit déjeuner est prêt?
11: Aïe, non, j'ai pas envie.
12: Kevin manque d'énergie? Eggman à la rescousse! Vite, un œuf brouillé d'or avec un peu de sel et du poivre, un verre de jus de fruits frais ou du lait, et hop, il est prêt pour sa journée. Un œuf, c'est plein de bonnes choses pour te donner de l'énergie, t'aider à grandir. Et en plus, c'est délicieux, c'est pas cher et facile à trouver. Avec les œufs d'or, c'est plus fun, tu es plus fort.
0: RM2
1: Radio Musti.
0: Morning Beat.
13: Oh God, one more remix.
0: A good beat for your morning show.
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: लंबा हो संभा हो वॉल्यूम को थोड़ा हाई कर लीजिए. यू आर लिस्निंग टू रेडियो मस्ती विनीता के साथ आपका मॉर्निंग बीट.
1: रेडियो मस्ती
2: Béala, Wednesday Bazaar, la Gekot Winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans Douban Winners.
3: Et promotion bidoune balle. 500 grammes carottes pour 19,95 €. 500 grammes chouchou pour 7,95 €. 500 grammes giromont pour 9,95 €. 500 grammes blanc cuit sec aile de poulet frais pour 104,95 €.
2: Pas de prix là. Bazaar, Maudirou. Rendez-vous Gekot Winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
4: On est tous winners.
1: RM2 Radio Musti
5: Morning Beat
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: अजय शेर तो बनना ही पड़ेगा. हम इड वीक तक पहुंच जो गए. 7:21 गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. दिस इज विनीता आपके साथ. आपके अपने रेडियो मस्ती पर आए हैं थोड़ी मस्ती करने के लिए. भाई अपने लेजी मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करने का मौका दो. गाने चल रहे हैं, थोड़ा सा हाथ पैर हिला दो. मॉर्निंग में अच्छा होता है. और वैसे भी एक स्माइल आपके चेहरे की पूरी जियोग्राफी बदल देती है. बिल्कुल, ये जो आपके ऐसे आंखें सोई सोई हैं उनको जगाने का काम हमारा है. गाने को जैसे चलाएंगे गाना सुनना मस्त मूड में आ जाना. चलो भाई, यहाँ पर आपके पास कोई मैसेज है, आप किसी को बाय द वे हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं, यू मोस्ट वेलकम. 549 and 129 पर नंबर आपको बताए. अच्छे से नोट करके रखना. अरे इतने सालों से एक ही नंबर तो बता रहे हैं, अब तक तो आ जाने चाहिए. अगर नहीं आता है तो फिर भी बता देती हूँ, इट्स 549 and 129 ठीक है, समझ गए. ओके, अभी बताओ कहाँ तक पहुँचे. काम के लिए तो निकल गए होंगे. हाँ, कुछ लोग सुबह जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि उनको जल्दी पहुंचना होता है. और हमारा काम होता है कि आपके सफर में आपको सफर ना करना पड़े और आपका मूड एकदम टकाटक हो. और उसके लिए हमारे गाने कमाल का काम करते हैं. नाउ इफ यू वांट टू मेक समवन हैप्पी, अगर आप किसी के बर्थडे को स्पेशल बनाना चाहते हैं, नंबर वही है 549 and 129. आपको क्या करना है, उस इंसान का नाम और उसका फोन नंबर भेजना है ताकि लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से उनको कर पाएंगे हम खुश और देते हैं मॉर्निंग में सरप्राइज.
0: A good beat for your morning show. Morning Beat, RM2
1: Radio.

0: Gold.
1: For your morning show.
2: James.
3: RM2, Radio Musty, in the mix.

0: Good Beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: तो जिसका हमें इंतजार था वो आ गए हैं, चलिए उनसे मिलते हैं। कौन है, कहाँ से है? हेलो हेलो
3: हेलो,
2: गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग,
2: दिस इज काजल, राइट?
3: यस।
2: कैसी हो आप काजल?
3: थोड़ी बीमार है।
2: बीमार? क्या हो गया आपको? डॉक्टर को नहीं दिखाया?
3: हाँ दिखाया है।
2: दिखाया? ओहो, मुझे तो फोन किया गया था कि आपसे मैं गाना गवाऊं। मैंने सुना बहुत अच्छा गाना गाती है।
3: नहीं, मैं गाना नहीं गाती हूँ।
2: ऐसे कैसे गाना नहीं गाती? मुझे तो सबने कहा कि आप गाना गाती है।
3: नहीं,
2: आप गाना नहीं गाती?
3: नहीं,
2: पर मैंने तो आपका गाना सुना है।
3: नहीं, मैं गाया।
2: काजल झूठ बोल रहे हो, आप गाना गाती है?
3: नहीं।
2: आप खांस रही हो? हाँ शायद इसलिए गाना नहीं।
3: अस्थमा है।
2: ओह माय गॉड, तो डॉक्टर को दिखाया आपने? आपको पता है सर्दी का मौसम। हाँ देखो, यहाँ पर उन्होंने उन्होंने बोला था कि आपने ये गाना आपने गाया था।

0: from Radio Musti.
1: अच्छा, आपने पहले ही पहचान लिया था शायद ना?
2: हाँ,
1: आप रोज रेडियो सुनती हैं?
2: हाँ, रोज रेडियो सुनती
1: हूँ. क्या करूँ मैं, सब सुन लेते हैं, लेकिन अच्छी बात है. थैंक यू सो मच. और आपको हैप्पी बर्थडे. लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से आपको एक वाउचर मिल रहा है काजल. एंड मैंने सुना आप खांस रही हैं. आपको खांसते हुए मुझे लग रहा है कि जैसे पता नहीं मेरे गले में भी कुछ होने लगा है, इसीलिए आप प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा. एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे हमारी पूरी रेडियो मस्ती टीम की तरफ से. लोलो हाइपरमार्केट की तरफ से जो वाउचर है, आप उस वाउचर को लेने आ सकती हैं MBC आज नहीं तो कल. आपके पास 2 दिन है अपने ID कार्ड के साथ. एंड अपना ख्याल रखिएगा. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू.
2: A good beat for your morning show. Morning beat. RM2. Radio Musti.

0: to
1: Radio Musty.
0: Mieux connaître la taxe avec la MRA.
2: Toute bonne compagnie qui enregistrait avec la MRA, vous tenez l'obligation pour soumettre un return corporate tax. Une compagnie, normalement, il devait soumettre son return 6 mois après qu'il ait fini ferme son compte. Par exemple, si une compagnie sur l'année financière est terminée 31 décembre, les pour et n'a jusqu'à la fin juin pour lui soumettre son return et faire paiement si jamais lui et n'a paiement pour faire. Les bons connaissent qu'une compagnie lui a l'obligation pour soumettre un return tax même s'il n'est pas payé opéré. Nous faisons un appel à une compagnie qui n'a pas fini soumettre son return pour faire lui au plus vite à travers le site web de la MRA, www.mra.mu, pour qu'ils évitent plus pénalité et que l'intérêt. Pour plus de renseignements sur l'obligation pour soumettre un return corporate tax, visite le site web de la MRA, www.mra.mu, ou soit téléphone-nous le 207-6000. Merci et à bientôt.
0: Tout achat que tu payes TVA, pas oublié, exige ou reçu.
3: La vie, c'est ou PCR, scintille. C'est le macot c'est nol shop. Refil ban produit ménager, révinou bien moins. C'est et complice ou péran en grand service la nature. Amenou galon, vin refil ban produit ménager éclisienne dans nos 4 nol shops. Triolet, paille, petite rivière et floréal.
4: Économique, écologique, passez au refil, c'est logique.
5: Cernol, le signe de confiance.
0: RM2
1: Radio Musty.
6: Sports Magazine is brought to you by Quality Decor, the floor expert.
7: Sports news, latest updates.
8: Sports news.
1: Radio Musty in the mix.
9: एंड यस दोस्तों, अरविंद से मिलने का टाइम हो गया है। लिवरपूल के बारे में कुछ बता रहे थे, चलिए उन्हीं से जानते हैं क्या चल रहा है स्पोर्ट्स वर्ल्ड में। गुड मॉर्निंग अरविंद।
10: गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स, द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। लिवरपूल और एंटोनी इराओला के बीच समझौता हो गया, वर्बल एग्रीमेंट। एनफील्ड रोड का नया बॉस बनने के लिए वो तैयार है। खबर है इराओला 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आ रहा है। इराओला अपने साथ अपने असिस्टेंट टोमी एल्फिक और शोन कूपर को लाना चाहता है। टोमी एल्फिक बचपन से लिवरपूल का बहुत बड़ा फैन है। एक ब्राजीलियन गया, दूसरा आ रहा है। मैनचेस्टर यूनाइटेड और अटलांटा के बीच मिडफील्डर एडिसन के लिए 35 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग 35 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग ट्रांसफर फी पर मंजूरी हो गई है। 26 साल का एडिसन 4 साल के लिए साइन करेगा। एडिसन ब्राजील के वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है, इसलिए बहुत जल्द मेडिकल पूरा कर सकता है। फ्रांस का डिफेंडर इब्राहिमा कुनाते रियल मैड्रिड से बात कर रहा है। फ्री ट्रांसफर है इस के लिए, रियल मैड्रिड उसे साइन करना चाहता है। ऑनल भी गया था रियल मैड्रिड में, इंग्लैंड की टीम से बाहर है, अब कुनाते जा रहा है। कुछ फ्रेंडलीज भी खेले गए, फ्रेंडली मैच। कोलंबिया ने कोस्टारिका को 3-1 से हराया। कनाडा 2 उज्बेकिस्तान 0, क्रोएशिया 0 बेल्जियम 2। बेल्जियम के लिए चेलेमांस और लुकाकू का 1-1 गोल। जॉर्जिया 1 रोमेनिया 1। मोरक्को की जीत हुई 4-0 से मारेगास्काओ के खिलाफ। वेल्स 1 गाना 1। आज अल्बेनिया का मुकाबला इसराइल से होगा। कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्सेस डेनमार्क। लुक्सेमबर्ग इटली नेदरलैंड्स खेलेगा अल्जीरिया के खिलाफ। पोलैंड का मुकाबला नाइजीरिया से है। सर केनी डालगिश कैंसर ट्रीटमेंट पर हैं। स्कॉटलैंड सेल्टिक और लिवरपूल का लेजेंड केनी डालगिश इस खबर को प्राइवेट रखना चाहते थे, पर गलती से सोशल मीडिया पर इसके बारे में पोस्ट कर दिया। ट्रीटमेंट ठीक चल रही है। कुछ दिन पहले इंग्लैंड का पूर्व कप्तान और मैनेजर केविन कीगन ने भी कहा था कि वे स्टेज 4 के कैंसर ट्रीटमेंट पर हैं। फुलहाम का मैनेजर मार्को सिल्वा अब बेनफिका में जा रहा है। उसका कॉन्ट्रैक्ट जून महीने के अंत में पूरा हो जाएगा। उसके साथ फुलहाम चैंपियनशिप से प्रीमियर लीग में आया और इस सीजन एक

0: सम्मानजनक रिस्पेक्टेबल 11th पोजीशन पर आ पाया। कुछ खबरें वर्ल्ड कप से, ऑफसाइड डिसीजंस को बेहतर बनाने के लिए फीफा एक एडवांस सेमी ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा। एक रियल टाइम ऑडियो अलर्ट असिस्टेंट रेफरी को भेजा जाएगा अगर खिलाड़ी 10 सेंटीमीटर से ऑफसाइड हो, पर आखिरी फैसला लाइन्समैन पर होगा। और इंग्लैंड का नंबर 10 शर्ट जूड बेलिंगहम को दिया गया है, हैरी केन नंबर 9, मार्कस राशफोर्ड नंबर 11, डेक्लन राइस नंबर 4, साका नंबर 7, कोबी माइनू नंबर 16। लिवरपूल का एक भी खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम में नहीं है। टेनिस, फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची मार्ता कोइस्टुक, उसने एलिना वितोलिना को हराया। अंद्रीवा की जीत हुई सिएस्टा पर, वेरेव ने जोदा को हराया और मैंसिच ने फोनसेका को। आज के मैच कालिंस्काया श्वालिंस्का, सबालेंका श्नाइडर, ओगा अलियासिमे कुबोली, बेरेटिनी और नाल्डी। That's it, the latest from the sports world. भूलिएगा नहीं, we'll catch you again at 8:30 for the latest from the World Cup. चलो World Cup की ओर, till then enjoy the music on Radio Masti और आपको कहेंगे have a wonderful time ahead. Bye bye.
1: Thank you so much, Arvind. Have a good day.
2: Mega promo code quality déco. Tiles 30x30. Mega deal. Low tiles 60x60. Super sales. Low granite quartz. Oui, cassez-le la voix. La lumière moderne. Prix choc.

0: Morning Beat.
1: James. RM2, Radio Musty, in the mix.
2: चलो बेसिक के साथ टाइम हो गया है 8 बजे के समाचारों की ओर बढ़ने का, और फिर इसके बाद हमारी अगली मुलाकात फिर हो रही सेकंड आवर में। वही म्यूजिक है आपके मूड को ठीक करने के लिए। बाय द वे, इफ यू आर ड्राइविंग, बी केयरफुल ऑन द रोड।

नमस्ते। बजट 2026-2027-19 जून के पेश हुई। प्रधानमंत्री बोलन की वैश्विक आर्थिक स्थिति और भू राजनीतिक तनाव के बीच ई बजट कठिन हो सकेला। बजट से आगे अलग अलग पक्ष संगे परामर्श बैठक 29 अप्रैल से 6 मई ले चलल। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल संशोधन के साथ राष्ट्र सभा में कल पारित हो गलबा। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कहलन की खाली संविधान से लोकतंत्र के रक्षा नहीं हो सकेला। उनकर मुताबिक मजबूत संस्था, पारदर्शी व्यवस्था और एक जागरूक नागरिक लोकतंत्र के असली ताकत है।

0: जोर दे के कहलन कि संविधान एगो जीवित दस्तावेज है जे समय और परिस्थिति के हिसाब से बदलत रहे के चाही। प्रधानमंत्री कहलन कि संविधान के समीक्षा खाली सरकार या विपक्ष के विषय नहीं है बल्कि पूरा राष्ट्र के जिम्मेदारी है। यही सोच के तहत उ नागरिक समाज से सुझाव और सिफारिश देवे की अपील कर ले हवन। डॉक्टर नवीन राम गुलाम उम्मीद जतैलन कि मॉरिशस की स्वतंत्रता के 60वां वर्ष से आगे ई संवैधानिक सुधार लागू हो सकेला। वो भी याद दिलालन कि एक विधेयक के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बनावल जाए जे संविधान की समीक्षा करी और जरूरी संशोधन खातिर सिफारिश पेश करी। सरकार वित्त वर्ष 2024-2025 खातिर 2,264,000,000 रुपया के अतिरिक्त बजट के मांग कर लेबा। इस खातिर द सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन बिल राज्यसभा में पहला बार पेश करल गल। ई अतिरिक्त राशि प्रिजन सर्विस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर और भूमि और आवास मंत्रालय समेत कईगो विभाग के बढ़ल खर्चा पूरा करे खातिर इस्तेमाल हो। मॉरिशस रेवेन्यू अथॉरिटी यानी MRA 1 जुलाई 2025 से 30 अप्रैल 2026 ले VAT के रूप में 52,200,000,000 रुपया से जस्ती राशि एकत्र कर ले बा। ई जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम राज्यसभा में देलन। राष्ट्रीय विमानन सेवा मॉरिशस के मुद्दा भी राज्यसभा में उठावल गल। प्रश्न रहल कि का कंपनी अपन सुधार खातिर कोनो रणनीतिक साझेदार खोजत बा। ई पर प्रधानमंत्री स्पष्ट कहलन कि फिलहाल मॉरिशस कोनो साझेदार नहीं खोजत। उनकर मुताबिक अभी प्राथमिकता कंपनी के पुनर्गठन और इस सुधार प्रक्रिया परिबा। साथ ही मॉरिशस अपन उड़ान नेटवर्क और विमान बेड़ा के समीक्षा भी करत बा जमे आगे के दिशा तय हो सकी। राज्यसभा में विदेश मंत्री रितेश रामफल से मॉरिशस और इसराइल के संबंध पर प्रश्न पूछल गल। मंत्री कहलन कि मॉरिशस हमेशा से फिलिस्तीनी जनता के अधिकार और स्वतंत्र राष्ट्र की मांग के समर्थन करत आलबा। वो बतैलन कि इसराइल के साथ संबंध समय समय पर ही बदलल बा बकेर अभी सहयोग सीमित बा। सरकार फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय कानून बहुपक्षीय सहयोग और फिलिस्तीन मुद्दा के शांतिपूर्ण समाधान खातिर अपन प्रतिबद्धता जतैलक। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन संपत्ति घोषणा प्रक्रिया में एगो बड़ा बदलाव घोषित कर लेबा। डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट में संशोधन के बाद अब सभी घोषणा ऑनलाइन मंच पर ही जमा करे की पड़ी। ये व्यवस्था 1 जुलाई से लागू हो चुकल बा। 1 जुलाई के बाद 1 जून से लागू हो गल बा और 1 जुलाई के बाद कागज पर ही जमा घोषणा स्वीकार नहीं हुई। पुलिस फाइटर्स यूनियन 4 पुलिस अधिकारी के सम्मानित कर लेबा। इमें 2 महिला पुलिसकर्मी के आपात स्थिति में पुलिस वाहन में एगो महिला के डिलीवरी करावे में मदद खातिर सम्मानित करल गल। और दूसर देश के खबर में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गल बा। अमरीकी सेना दावा कर लेबा कि वो ईरान के एगो सैन्य ठिकाना पर ही कार्रवाई कर लेबा। अमरीका के मुताबिक ये कदम ईरान की मिसाइल और ये ड्रोन हमला के जवाब में उठावल गल। अमरीकी सेना के कहना बा कि कई मिसाइल और ड्रोन रास्ता में ही रोक देवल गल। तो इरहल हमनी के भोजपुरी में समाचार हमनी के सुनला जा। धन्यवाद।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Morning Beat.
2: James. RM2, Radio Musty, in the mix.

बैठी घरे का भाई हो बड़ी बेस बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो

0: a good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: हाजी दादी के साथ क्या नाना नानी चाचा चाची मौसा मौसी मम्मी पापा जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:10 हुए हैं। हेलो, कैसे हो? चलो चलो आगे चलते रहो, बढ़ते रहो। लाइफ यही तो है ना कि चलती का नाम गाड़ी है। हाँ, और हमारी ज़िंदगी जो है इसको भी चलने चाहिए ना। और हमारे साथ जितने भी हमारे लिसनर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी इस समय रेडियो मस्ती पर, आपका वेलकम करते हैं। चलिए भाई, यहाँ पर आप भी जानना चाहेंगे कि आज प्लान्स का है। अब हो सकता है कई सारे लोग हैं प्लान्स बनाते हैं, आपको क्या लगता है कि लोग सिर्फ वीकेंड्स में प्लान बनाते हैं? अरे कुछ नहीं, चलो यहाँ पर जान लेते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा। चलिए वेलकम करते हैं आस्था का।
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
3: ओनली टू विनर्स।
4: हमारे इलाके पर हल्की और गर्म हवाओं का असर है। पूर्वानुमान है कि आज सुबह के दौरान देश भर में धूप खिली रहेगी। दोपहर बाद केवल दक्षिण पश्चिम

0: दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो पर रह रहकर बरसात होगी और बादल भी घिरे रहेंगे। कभी कभी बरसात काफी तेज भी हो सकती है। रात को देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। साहली इलाकों पर तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं जाएं। सूर्यास्त 5:37 पर होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
3: Béala, Wednesday Bazaar, la Gekot Winners. Wednesday Bazaar, c'est tous les mercredis dans Douban Winners.
4: Et promotion bidoun balle. 500 grammes carottes pour 19,95 €. 500 grammes chouchou pour 7,95 €. 500 grammes giromo pour 9,95 €. 500 grammes blanc cuit sec aile de poulet frais pour 104,95 €.
3: Bonne prix là. Bazaar, Moudirou. Rendez-vous Côte Winners tous les mercredis pour Wednesday Bazaar.
5: On est tous Winners.
2: RM2 Radio Musti.
6: Attention moustique, plus qu'il y a 1 million de monde dans le monde beau chaque année à cause moustique. Et un risque qu'un chikungunya est dingue. Pas billet, prends ou précaution. Moustique peuplé dans d'îlot qui posé. Débarrasse d'îlot qui accumulé l'eau dalle. Couvert bien ban réservoir d'îlot. Débarrasse d'ouvan kitseuse qui ramasse d'îlot. Comment boîte conserve vide, capsule et que les œufs d'essai. Mette ban vieille la roue dans une place couverte ou soit sévili pour planter. Sans d'îlot dans vase à fleurs au moins une fois par semaine. Dévide d'îlot qui accumulé dans ce qui nous connaît comment sous-coupe pour flair. Nettoie bien ou l'entourage et débarrasse tout feuille et ban saleté. Mette ban linge qui bien couvert pour évite qui moustique pique ou. Servi moustiquaire. Servi ban produit anti-moustique. Pour tout renseignement, téléphone hotline ministère de la Santé et Bien-être, l'eau 89D4. C'est une initiative ministère de la Santé et Bien-être en collaboration avec l'Organisation Mondiale de la Santé.
1: RM2
2: Radio Musti.
1: A good beat for your morning show.
2: Come on.
1: Morning Beat. RM2
2: Radio Musti.

0: grand défi de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: दोस्तों, आप किसी इंसान को चाहे जितना भी तोड़ो, चाहे उसका हौसला कितनी बार गिरा दो, लेकिन अगर उसके अंदर जीने और बढ़ने की चाहत जिंदा है ना, तो वो एक दिन फिर अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। जख्म उसे कमज़ोर नहीं बल्कि और मजबूत बना देता है। जिंदगी में कभी कभी लोग, हालात या नाकामियाँ हमें इतना तोड़ देती हैं कि लगता है कि अब संभालना मुश्किल है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन इंसान की असली ताकत उसके गिरने में नहीं बल्कि हर बार उठने में होती है। जो लोग मुश्किलों से गुजरते हैं वही अक्सर सबसे मजबूत बनकर निकलते हैं। भाई, जिंदगी की लेसन्स तो यही है कि किसी की स्ट्रगल को उसकी वीकनेस मत समझो। टूटा हुआ इंसान भी दोबारा खुद को बना सकता है। हर सेटबैक एक कमबैक की तैयारी होती है। वक्त और हिम्मत मिलकर हर जख्म को ताकत में बदल देते हैं। तो इंसान को तोड़ना आसान हो सकता है, लेकिन उसकी हिम्मत को ख़त्म करना नहीं। जो अंदर से मजबूत होता है वो एक दिन फिर से उठकर अपनी पहचान खुद बना लेता है।
0: Avant de défi, de long shift, de premier pas qui capable sens tous audi, il a toujours un pause, un souffle, un moment. Nescafé first. Après tout fait une différence. Il pas une simple tasse, il un nouveau départ, un nouveau énergie, un nouveau vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé. Avant de défi, de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: Morning Beat.
3: James. RM2, Radio Musty, in the mix.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: अजय यही तो हम चाहते थे कि आप ट्विस्ट करो. ट्विस्ट क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डांस कर लेने से, बॉडी को स्ट्रेच कर लेने से बहुत अच्छा होता है. अभी वैसे भी सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में आपको चाहिए कि आप अपनी तबीयत का थोड़ा ख्याल रखें, गर्म पानी पिया करो. जी हाँ, सर्दी में ये आपके गले को भी कंफर्ट देगा और अच्छा रहता है. गर्म या थोड़ा सा लुकवार्म पानी हो, गुनगुना हो तो अच्छा रहता है. अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाओ, ऑरेंज खाओ, लेमन जूस पियो और आंवला अगर हो सके तो उसको भी शामिल करो. ये जो सीजनल इन्फेक्शन से बचने के लिए ना ये सारे फ्रूट्स मदद करते हैं. थोड़ा सा धूप भी ज़रूरी होता है. हाँ, मॉर्निंग में जब उठो, अब 12 बजे वाली धूप नहीं, मैं सुबह वाली धूप की बात कर रही हूँ, वो भी थोड़ा सा अच्छा रहता है. और ये भी है कि आपको चाहिए कि आप अच्छी नींद सोएं, अच्छा मूड बनता है इससे. और साथ ही साथ खाना भी है, आपको सोच समझकर खाना चाहिए. अपने आप को थोड़ा सा अपने शरीर पे थोड़ा सा ध्यान दो. और बाकी अगर हमारे गाने से आपको डांस करने का, स्ट्रेच करने का मूड बनता है तो क्यों नहीं.
0: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
1: RM2 Radio Musti in the mix.

0: मुखरे पे काला काला चश्मा, चलिए चश्मा पहनिए, ड्राइव पे निकलिए। लेकिन इससे ज्यादा अभी इम्पोर्टेंट हो गया है कि हम जाने वर्ल्ड कप के बारे में। अरविंद आ गए हैं कुछ और डिटेल्स के साथ।
1: Get ready for the biggest World Cup ever!
2: 2026 FIFA World Cup.
1: पहली बार होंगी 48 teams, 104 matches. रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
2: रेडियो मस्ती के साथ रोड टू द वर्ल्ड कप।
3: चलो वर्ल्ड कप की ओर। फीफा वर्ल्ड कप 2026 नॉकिंग एट द डोर। आज है 3 जून और बचे हैं कितने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बूम 11, यानी केवल

0: आठ दिन रह चुके हैं सो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का बिगुल बज चुका है और इस बार मैदान पर खिलाड़ियों के साथ साथ एक और चीज सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है वो है इस टूर्नामेंट की ऑफिशियल मैच बॉल जिसका नाम है एडिडास ट्रियंडा इस फुटबॉल खूबसूरत फुटबॉल का नाम है ट्रियंडा स्पैनिश भाषा में इसका मतलब होता है तीन लहरें ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस बार वर्ल्ड कप का रोमांच तीन देशों में होने जा रहा है कनाडा मेक्सिको और अमेरिका इस बॉल के डिजाइन में तीनों देशों की झलक है कनाडा का मेपल लीफ मेक्सिको का गोल्डन ईगल और अमेरिका का स्टार इस बॉल को बेहद खास बनाते हैं ये सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है ये अब तक की सबसे हाईटेक फुटबॉल है क्यों हाईटेक क्योंकि ये चार पैनल का कमाल पुराने जमाने की फुटबॉल को टुकड़ों में जोड़कर बनती थी लेकिन ट्रियंडा को सिर्फ चार पैनल से जोड़कर बनाया गया है इससे हवा में इसकी रफ्तार और कंट्रोल लाजवाब होने वाला है ये एक स्मार्ट बॉल टेक्नोलॉजी इस बॉल के ठीक अंदर एक छोटा सा चिप एक सेंसर लगा है जो एक सेकंड में 500 बार डाटा भेजता है यानी रेफरी को ऑफसाइड और हैंडबॉल पकड़ने में अब एक सेकंड की भी देरी नहीं होगी और ये वायरलेस चार्जिंग है मोबाइल की तरह इस फुटबॉल की चिप को भी मैच से पहले बिना तार के यानी इंडक्शन से चार्ज किया जा सकता है तो इस बार जब गोल पोस्ट पर दनादन शॉट लगेंगे तो नजरें सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस अजूबे ट्रियंडा पर भी रखिएगा सो ऐसी कुछ खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे वर्ल्ड कप स्पेशल में सो कीप ऑन लिसनिंग
1: फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई कैच ऑल द न्यूज व्यूज प्रीव्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स

0: Good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: एक्चुअली लाइफ को आपने पूरी तरीके से सेट कर लिया हुआ है, सारी प्लानिंग कर ली होगी, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है. ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इट 37 3 जून. ये जून पता नहीं क्यों जैसे मुझे बीन जैसा लग रहा है कि जून आ गया. कुछ ऐसी वाली फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो, मुझे अजीब लग रहा है कि ये साल तो जैसे अभी अभी शुरू हुआ था भाई, ऐसे जल्दी कैसे खत्म हो सकता है. वो इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोडेड हो, बहुत कुछ है करने को, और आपको लगता है कि भाई हमने अभी ये कंप्लीट नहीं किया, ये कंप्लीट नहीं किया. आप ज़्यादा दिन आप फ़ोन पे लगा के रखोगे, आपने कभी देखा है आप कितने टाइम तक मोबाइल यूज़ करते हो? आपका एक घंटा ऐसे मोबाइल में निकल जाता है, जबकि इस एक घंटे में आप म्यूज़िक पे थोड़ा डांस करके एक्सरसाइज कर सकते थे, आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते थे, आप अपने चेहरे का मसाज कर सकते थे, गर्म पानी में पैरों को सोक कर सकते थे. तो ये सब आप चीज़ें तो सोचते नहीं हो. चलो हमने याद दिला दिया, अच्छी बात है. अब बाकी हमारे म्यूजिक के साथ जो लोग डांस करना चाहते हैं, गाड़ी चला रहे, क्या वेदिता हम गाड़ी चला रहे डांस कैसे करें? अरे डांस करने के लिए किसने कहा बॉडी को हिलाना जरूरी है? इंसान मन से भी नाच सकता है.
0: A good beat for your morning show. Morning beat, RM2
1: Radio Musti.
2: आपने कभी चेहरे से डांस किया है? थोड़ा स्माइल करके देखो, फिर उसके बाद थोड़ा और स्माइल करके देखो, फिर उसके बाद थोड़ा सा और स्माइल करके देखो. जब चेहरा स्माइल करता है ना, इसका मतलब चेहरा डांस कर रहा होता है. जानती हो क्या सोचो, बड़ी बदमाश ये लड़की, मतलब मैं हूं ही. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग बीट. चलिए गाना शालिनी के लिए जो हमें सुन रही हैं ड्राइव करते हुए, और आत्माराम जी के लिए जो तो बीच में हमें सुन रही हैं.

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: So, यहाँ पर आज बहुत सारे लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. जीनिता बृहस्पतिया का आज बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे टू यू. तारा दिगम मगविया जो कॉम्पोज से आपको बहुत सारा प्यार है. एंड साथ ही साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. यहाँ पर एक और मैसेज आया है, हैप्पी बर्थडे टू हस्बैंड, ये है अनुषा की तरफ से. और साथ ही साथ यहाँ पर अंजू अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं प्लंदे पपाई से, उनकी दोनों बेटियों की तरफ से, दामाद की तरफ से, उनके पति की तरफ से, उनकी मम्मी की तरफ से, भाई भाभी पूरे फैमिली की तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू. एंड हैप्पी बर्थडे टू लिटिल इयान. इयान जो कि आज एक साल के हो गए हैं, रहते हैं प्रोविडेंस. उनकी मम्मी आश्मिता, उनके पापा इरेश, उनकी दादाजी जो ऊपर बैठे हैं उनको बहुत सारा आशीर्वाद भेज रहे होंगे. और उनकी दादी, चाचा चाची, उनकी पूरी फैमिली की तरफ से, गुप्ता फैमिली जो कि हैं प्रोविडेंस से, जितन फैमिली जो कि हैं फ्रॉम पलमा, उनके मामू मामी नाना नानी सबकी

0: ओर से बहुत सारा प्यार है. विशिंग दिस लिटिल वन अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे.
1: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो.
2: RM2 Radio Musti in the mix.
0: कभी कभी लाइफ में कोई ऐसा इंसान होता है who makes you feel so good, makes you happy, and you feel all right, right?

0: है तो आल बी ऑल राइट, क्योंकि जब विकास आते हैं तो हमारा चेहरा खिल हो जाता है। हम कहते हैं ना कि मैंने कहा था कि लाइफ में आपके कोई ऐसा इंसान होता है जिसके आने से या तो फिर आप लड़ने लगते हैं या तो फिर आप खुश होने लगते हैं, कोई वजह होती है टॉम एंड जेरी वाली। तो हमारी टॉम एंड जेरी वाली वही है। तो मैं जा रही हूँ,
1: आल बी ऑल राइट। आर यू नॉट फीलिंग ऑलरेडी ऑल राइट?
0: I am. Who said I'm not all right?
1: All right, all right. सब कुछ ठीक है, all right. तो right के बाद left भी लो अगर गाड़ी चला।

0: जगह में पहुंचो, बाकी हम आपके साथ ही रहेंगे।
1: पता था मुझे, पता था मुझे, प्लीज मुझे बचा लो।
2: मॉर्निंग बीट, अ गुड बीट फॉर योर मॉर्निंग शो।
3: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
1: चलो भी ऑल राइट है, तो मैं लेफ्ट लेके निकल जाती हूँ, विकास के आने का टाइम हो गया है। मिलते हैं कल मॉर्निंग में 7 बजे, इंतजार करना हमारा। बाय, टेक केयर।

0: समाचारों को लेकर उपस्थित हो चुकी है आस्था। नमस्ते आस्था।
1: नमस्कार जी। हाँ, 9 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बजट 2026-2027 अब आगामी 19 जून को पेश किया जाएगा। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, बढ़ती महंगाई और भू राजनीतिक तनाव के बीच इस बजट पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ये बजट चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने बिल सुधार के साथ कल राज्यसभा में पारित किया गया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि केवल संविधान भर से लोकतंत्र की रक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, बल्कि मजबूत संस्थाएं, पारदर्शी व्यवस्था और जागरूक नागरिक भी उतने ही आवश्यक है। सरकार ने नागरिक समाज से भी सुझाव देने की अपील की है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 2,264 मिलियन रुपए की अतिरिक्त बजट राशि की मांग की है। द सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन बिल राज्यसभा में पहली बार पेश किया गया। ये अतिरिक्त राशि प्रिजन सर्विस, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दफ्तर और कई विभागों के बढ़ते हुए खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। एमओरए ने जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक वीएटी के रूप में 52,200,000,000 रुपए से अधिक की राशि एकत्रित की है। ये जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने राज्यसभा में कल दी। उन्होंने सांसद ईशान जुम्मन के प्रश्न का उत्तर देते हुए ये आंकड़े सामने रखे। एमओएस फिलहाल किसी रणनीतिक साझेदार की तलाश में नहीं। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि अभी प्राथमिकता कंपनी के पुनर्गठन, संचालन में सुधार और खर्च कम करने पर है। साथ ही एमओएस अपने उड़ान नेटवर्क और विमान बेड़े की समीक्षा भी कर रही है ताकि भविष्य की दिशा तय की जा सके। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के एक सैन्य नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाया है। वहीं ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन के जरिए अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। अमेरिकी सेना के अनुसार कई हमलों के बीच रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया। इसके साथ ये समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।
2: Radio Musti.
3: Hit music only.
2: Feels a Musti. Radio Musti.

0: बोले?
1: Welcome to RM2.
2: Musty Mornings. Radio Musty.
0: अब गुड मॉर्निंग, 9:06 और मैं आपके साथ टिल 12 PM. चलो मूड को बिल्कुल फिट एंड फाइन करने के लिए और बॉलीवुड की कुछ बातें लेकर मस्ती के साथ जुड़ने के लिए, एंजॉय द म्यूजिक ऑलरेडी, क्या बात है. अरे तो खाली शुरुआत है.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: Hey, it's Musty over this mornings. Hey, good morning. हाल चाल कैसे हैं? चलिए जहाँ पर हम बिल्कुल मिड वीक में पहुँच गए हैं वैसे का दिन और ऑलरेडी द 3rd of June बस इंतजार है कि अब वर्ल्ड कप। हाँ वैसे आप हमारा स्पेशल एडिशन सुन ही पा रहे हैं रोड टू द वर्ल्ड कप जहाँ पर बात हो रही है टीम्स की प्रोफाइल ऑफ द प्लेयर्स एंड बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स सब कुछ है आप ही के लिए क्योंकि यहाँ पर म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स हाथ में हाथ लेकर ही चलते हैं और भाई कोशिश ये रहती है कि हम आपके हर मूड को बदलते हैं टू गेट यू ऑन द हैप्पीएस्ट साइड ऑफ लाइफ। चलिए हम जोड़ने वाले हैं कुछ जिंदगी कुछ अलग ही एंड जहाँ पर वी टॉक अबाउट हाउस होल्ड डेको टिप्स वहीं पर हम बात करेंगे कुछ बी टाउन की भी क्योंकि बड़ी मूवीज ऑल सेट कॉन्ट्रोवर्सी से लेकर और बहुत सारी नोक झोंक तो क्यों करें थोड़ी सी भी रोक टोक। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट वन कमिंग अप।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलिए मॉर्निंग शुरुआत होगी और मॉर्निंग मॉर्निंग में बहुत सारी प्लानिंग होती है कि ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन सुबह उठकर जब नींद खुलती है तो लगता है कि ये भी भूल गए और वो भी भूल गए। रात की कहानी कुछ ऐसी होती है नहीं, बस अब पूरा दिन काम खत्म करके बस थोड़ी देर बैठना, आराम से खाना पीना खाना, लेकिन उसमें भी काफ़ी लोग बिजी हो जाते हैं। कहीं आप भी तो उनमें से नहीं है जो कि घर पर काम लेकर जाते हैं, यानी कि लैपटॉप अपने लैप पर रख कर शुरू हो जाते हैं। अच्छी बात नहीं है, नहीं इसलिए क्योंकि काम तो करना सच बात है, लेकिन किसी किसी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो घर तक लेकर आता है और बाकी के जो सदस्य होते हैं घर वाले वही चिंता में रहते हैं, बेटा कुछ खा लो, देखो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, क्या बात कर रहे हो, मुझे टारगेट कंप्लीट करना है। हाँ ठीक है कि अभी यंग हो और अभी काम के संग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी हेल्थ को आप इग्नोर करें। इसलिए बी टॉप ऑफ इट, ऑन टॉप ऑफ इट, ये सोचना कि कब आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना और कब काम भी करना है। कभी कभी ग्रुप वर्क, लोग घर पे आते हैं साथ में काम करते हैं, आजकल का जो कॉर्पोरेट कल्चर है ना वो चेंज होता जा रहा है और वहीं पर लोग फिर फाइनली सोचते हैं कि अब ब्रेक लेना तो क्या करें, कुछ अलग करें। यू आर टू बी केयरफुल कहाँ पर आप जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए जो भी आपकी साइड में प्लानिंग हो रही है उसको चलने दीजिए और म्यूज़िक की तरह ज़िंदगी में भी कुछ चेंजेस आने दीजिए, क्योंकि और कुछ नहीं परमानेंट है, एक ही वो है बदलाव। रखो इसे चाव।
1: You're listening to Musty Mornings.
3: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.

0: ऐसी सिचुएशन आती है जब लगता है कि दिल धक धक कर रहा है, यानी कि आप क्यूरियस हैं या थोड़े से नर्वस हैं, कुछ ऐसा जो आपको एक्साइट कर रहा है प्रॉब्ली। लेकिन सच माने जो एक्साइटमेंट है ना जिंदगी में रहनी चाहिए, तो लगता है कि कुछ नया करने को है ही नहीं।
1: Your daily horoscope, RM2, Radio Musti.
0: जैसे आप चलते हैं सितारों की चाल देख लेते हैं और शुरुआत करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि।
0: मेष राशि, आज किस्मत आपके साथ में है और आपके पक्ष में नजर आ रही है। दिन की शुरुआत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ होगी और मन में किसी मनोरंजन या खास कार्यक्रम में शामिल होने को उत्साहित रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ अच्छा वक्त काटेंगे और आशीर्वाद मिलेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा।
2: टॉरस वृषभ राशि,
0: खुशियों और हलचल से भरा रहेगा। किसी मांगलिक या पारिवारिक उत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा जिससे मन आनंदित होगा। हालांकि आपको किसी की बात बुरी लग सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने दिल पर इतना न लगाएं कि आप परेशान हो जाएं। कानूनी मामलों में सावधानी बरतनी बहुत जरूरी होगी और शेयर मार्केट से जुड़े जो लोग हैं ना, अचानक से कुछ लाभ मिल सकता है।
2: जेमिनी मिथुन राशि,
0: मिथुन राशि आज का दिन आपके लिए राहत और खुशियों का संदेश लेकर आने वाला है। परिवार और कोई सदस्य आपको कोई ऐसा सरप्राइज दे सकते हैं जो दिल को खुश कर देगा। बड़ों का सम्मान, उनकी सलाह आज आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकती है। और वहीं पर प्रॉपर्टीज जुड़े जो लोग हैं उनके लिए कोई शानदार डील फाइनल हो सकती है।
2: कैंसर कर्क राशि,
0: आज के दिन आपके लिए बड़ी उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। परिवार और रिश्तों में मजबूती आएगी। घर के भीतर चल रही जो परेशानियां हैं उनको सुलझाने में आपकी अहम भूमिका होगी। नए लोगों से मुलाकात होगी, आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। वैसे कामकाज में छोटी मोटी गड़बड़ियां आती रहती हैं, इनको इतना दिल पे ना लगाएं।
2: लियो सिंह राशि,
0: जो भी काम मिले उसको कर दियो, वैसे तो आत्मविश्वास तो पूरा ही है, यह आपकी ताकत बनेगी। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन लोगों को प्रभावित करेगा और आपको कोई मन चाही इच्छा पूरी होने से दोगुनी खुशी मिल सकती है। निजी यानी कि पर्सनल जीवन में आप काफी सक्रिय रहेंगे और नए लोगों से अच्छे संबंध बनाने में सफल होंगे।
2: वर्गो कन्या राशि,
0: आज का दिन संपत्ति और सुख सुविधाओं में कुछ वृद्धि लेकर आने वाला है। घर में मेहमान का आगमन माहौल को खुशनुमा बना सकता है। लंबे समय से रुकी हुई कोई डील फाइनल हो सकती है और आप एक साथ कई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, ध्यान बढ़ सकता है, इसलिए बी फोकस्ड।
2: लीब्रा तुला राशि,
0: आज करियर के क्षेत्र में आपको शानदार अवसर मिल सकते हैं। हर काम में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा। हालांकि किसी भी काम में लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए सतर्क रहें। भाई भोजन हो या आरामदायक माहौल, इसका आप आनंद उठा पाएंगे।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: सामाजिक क्षेत्र में आपकी पहचान और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। लोग आपकी बातों और व्यक्तित्व से प्रभावित नजर आएंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला लेना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर कामकाज में दिन अच्छा है वैसे उधार लेने से बचे, नहीं तो आर्थिक बोझ बढ़ सकता है।
2: सजिटेरियस धनु राशि,
0: नौकरी और करियर के मामले में दिन अच्छा है, वैसे प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं। आपकी मेहनत और काम का तरीका लोगों के बीच

0: अलग पहचान बनाएगा, प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन इसे कुछ लोग हो सकता है चिंतित हो, कोई बात नहीं, अपना काम करते जाइए और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: भाई आर्थिक मामले में आप का साथ दे रही है किस्मत। लंबे समय से अटके हुए जो काम है वो पूरे होने की राह पर है। पैसों की वजह से रुका हुआ कोई इम्पोर्टेंट काम भी गति पकड़ सकता है। घर के बड़े सदस्यों के साथ और अनुभव आपको मिलेगा और परिवार की पुरानी समस्याएं फिर से सर उठा सकती हैं। लेकिन परेशान ना हो, रात बैठकर मिल बैठकर बातचीत को आगे बढ़ाएं।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: साझेदारी में किए हुए जो काम है वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। कानूनी मामले में नई उम्मीद और राहत मिलने के संकेत हैं। घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम आयोजित हो सकता है जिससे खुशियों का माहौल बनेगा। और विद्यार्थी है तो मेहनत का समय है क्योंकि आज की लगन भविष्य को बेहतर बनाएगी।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: मान सम्मान और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगी। किसी भी काम को करते समय उसके अंदर जो नियम है, जो मर्यादा है, उसका ध्यान देना होगा। जल्दबाजी में जो फैसला लिया है उसमें पछतावा हो सकता है, इसलिए थोड़ा वक्त लेकर, अपना समय लेकर काम कीजिए। भाई बहन के साथ किसी बात को लेकर मतभेद ना हो, इसलिए चीजों को आराम से देखिए, उनकी नजरिए से भी थोड़ा देखिए, समझिए। उसके बाद अगर एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है तो जरूर लीजिए।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: हर कोई इंतजार में कि फीफा वर्ल्ड कप शुरू होगा तो क्या कमाल होगा, जी हां सभी की नजरें इसी बड़े इवेंट पर हैं। 11 जून से शुरुआत होने वाली है और फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर दुनिया के कई महान खिलाड़ी हैं जो अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। वैसे तो कुछ रिकॉर्ड्स हैं, अगर बात करें मिरोस्लाव क्लोस की, मिरोस्लाव क्लोस जो जर्मनी से 16 गोल 4 वर्ल्ड कप के अंदर और 24 मैच खेले, वहीं पर अब सोच रहे हैं कि क्या अब रोनाल्डो इसको मैच कर पाएंगे, देखना अभी बाकी है क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे गोल होने बाकी हैं और वो 26वीं पोजीशन पर है रोनाल्डो। उनको 8 गोल और मारने होंगे, देखते हैं कि इस बार वो कोशिश कर पाते कि नहीं। राइट, पुर्तगाल के कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस लिस्ट में काफ़ी पीछे हैं और फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले की लिस्ट में 26वें स्थान पर हैं। उन्होंने अब तक फीफा वर्ल्ड कप के 5 संस्करणों में 22 मैचों में कुल मिलाकर 8 गोल किए हैं। क्लोज की बराबरी करने के लिए उन्हें 8 और गोल करने होंगे। रोनाल्डो का आखिरी विश्व कप हो सकता है और इस बार खिताब को जीतने के लिए पूरी कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन किसको क्या पता क्या करने वाले हैं। लिस्ट काफी लंबी है और इसमें पेले भी आते हैं और 4 वर्ल्ड कप्स 12 गोल काफी शानदार। एम्बापे आशी उनके भी 12 गोल हैं और 2 वर्ल्ड कप ही खेले हैं। पर लियोनेल मेसी उनके 13 गोल हैं 5 वर्ल्ड कप्स। सोचिए कमाल है, ऐसे रिकॉर्ड्स बना चुके हैं कि उनको हराना बहुत ही मुश्किल होगा, उनके पास जाना भी बहुत ही मुश्किल होगा। देखते हैं गर्ड मुला जो कि पश्चिम जर्मनी 14 गोल और 2 विश्व कप यानी कि 10 और 4 14 गोल ओलाला। देखते हैं अब रोनाल्डो इस बारी क्या करते हैं कमाल। लेकिन भूले मत वर्ल्ड कप स्पेशल सारे अपडेट्स आपको मिलती हैं। रोड टू द वर्ल्ड कप होता है 8:30 बजे ऑन वीकडेज।
3: फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई। कैच ऑल द न्यूज व्यूज प्रीव्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स।

0: Right, 3rd of June, it's 50 past 9 in the morning. और थोड़ी देर बात करने वाले हैं World Bicycle Day. अरे बाइसिकल चलाई, वैसे कहते हैं कि मारते रहो पेडल, फिर चाहे जिंदगी दे ना दे मेडल. World Bicycle Day, आज थोड़ा घूम ही आओ, क्या सोचते हो?
1: Welcome to Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
2: Radio Musti feels a Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: World Bicycle Day और ये बेस्ट गिफ्ट है जो आपने आपको दे सकते हैं आप. कोशिश कीजिए. अगर नहीं सीखे अभी तक तो जस्ट लिव इट अप. बहुत मजा आता है भाई. भागा दौड़ी की जिंदगी है. मोटापा अनहेल्दी लाइफस्टाइल एक बड़ा चैलेंज बन चुका है ना. ऐसे में कई लोग जिम जाते हैं डाइट पर या फिर महंगे फिटनेस प्लान अपनाते हैं, लेकिन सिर्फ साइकिल चलाकर क्या वजन कम किया जा सकता है? बहुत से लोगों ने इसके बारे में बात की है. चलिए जब वर्ल्ड साइकिल डे दिवस मना रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा जान भी लेते हैं. दरअसल हर 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाइसिकल डे और इस पर कुछ बातें हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट्स निकाल कर लाते हैं. भाई साइकिल चलाने से आपकी जो मांसपेशियाँ हैं ना वो एक्टिव हो जाती हैं, जिससे जो ऊर्जा की खपत है, जो कैलोरी बर्निंग प्रोसेस है, वो शुरू हो जाती है. जब शरीर जरूरत से ज़्यादा कैलोरी खर्च करता है तो एनर्जी के लिए जो फैट जमा है ना आपके इधर उधर, आप पकड़ के देख लो. हाँ वही तो वो उसका इस्तेमाल करने लगता है. यही प्रक्रिया धीरे धीरे वजन कम करने के लिए मदद करती है. और अगर रेगुलरली आप साइकिलिंग करते हैं तो मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाती है, जिससे शरीर लंबे समय तक कैलोरी बर्न कर सकता है. तो अगर आपको वक्त मिलता है तो ज़रूर एक ऐसे टूर पर जाइए, घूम फिर के आइए, या फिर सब्जी लानी हो या फिर आसपास कहीं भी जाना, साइकिल का इस्तेमाल. एक लॉक ले लो, चेन लॉक या जो भी, उसके बाद लगाओ कहीं भी हुआ. नहीं तो वो कंप्लेन ही करते रहोगे, हाँ ट्रैफिक बहुत था. अरे सोचो ना साहब, आपने एक तो अच्छा काम किया जहाँ पर आपने फ्यूल बर्न नहीं किया, पोल्यूशन ही बढ़ाया, और उसके बाद आपकी मेहनत एक्सरसाइज भी हो गई. अगर आप साइकिल चलाते हैं तो कितनी कैलोरीज बर्न होती है, क्या क्या होता था, बताता हूँ थोड़ी देर में, बिकॉज ये जो कार्यक्रम चलेगा टिल 12, डोंट फॉरगेट.
1: यू आर लिसनिंग टू मस्ती मॉर्निंग्स.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है.
1: Stay tuned. Stay musty.
4: Must Morning Show.
1: Radio.

0: RM2 Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: 3rd of June, Wednesday ka din, time check. It's 10 a.m. Abhi thodi der mein sunenge sanchip samachar. Milte hain aasha se, namaskar.
6: नमस्कार 10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का बजट 2026-2027 अब आगामी 19 जून को पेश किया जाएगा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती महंगाई और भू राजनीतिक तनाव के बीच इस बजट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए यह बजट चुनौतीपूर्ण रह सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल सुधार के साथ कल राज्यसभा में पारित प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल संविधान भर से लोकतंत्र की रक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती बल्कि मजबूत संस्थाएं पारदर्शी व्यवस्था और जागरूक नागरिक भी उतने ही आवश्यक हैं सरकार ने नागरिक समाज से भी सुझाव देने की अपील की है सरकार ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 2,264,000,000,000 रुपए की अतिरिक्त बजटीय राशि की मांग की द सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन बिल राज्यसभा में पहली बार पेश किया गया ये अतिरिक्त राशि प्रिजन सर्विस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर और कई विभागों के बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी एमओरए ने जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक वीएटी के रूप में 52,200,000,000 रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है ये जानकारी प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में दी उन्होंने सांसद ईशान जुमन के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए ये आंकड़े पेश किए एमोशस फिलहाल किसी रणनीतिक साझेदार की तलाश में नहीं है प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि अभी प्राथमिकता कंपनी के पुनर्गठन संचालन में सुधार और खर्च कम करने पर है साथ ही एमोशस अपने उड़ान नेटवर्क और विमान बेड़े की समीक्षा कर रहा है ताकि भविष्य की दिशा तय की जा सके विदेश मंत्री रितेश रामफल ने राज्यसभा में एक बार फिर दोहराया कि मोशस हमेशा से फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों और स्वतंत्र राष्ट्र की मांग का समर्थन करता आया है उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून बहुपक्षीय सहयोग और शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में मोशस अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगा अमरीका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ा अमरीकी सेना ने

0: दावा किया है कि उसने ईरान के एक सैन्य नियंत्रित केंद्र को निशाना बनाया। वहीं ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन के जरिए अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। Pour les sports rude, Rivière des Créoles, 65 साल की 65 years old की देवजीत सुपोल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें अनिल के नाम से ज्यादा जानते थे। उनके अर्थ कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान रिविया दे क्रियोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। गांधी रोड एनएस फ्लोरों बेलेमे 52 साल की 52 years old की दिव्यानी लक्ष्मण, पैदाइश नाम जहाजा, लोग उन्हें बबीता के नाम से अधिक जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके पति विनोद श्याम लक्ष्मण के मकान बेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11:30 AM। बेक्सले हीफ कैंट यूके में 74 साल के 74 years old के जयराज जीवन की मृत्यु हो गई है। वे पहले मॉरिशस में टागोर रोड फोंजिसा के रहने वाले थे। लोग उन्हें अनिल के नाम से ज्यादा जानते हैं। उनकी अर्थी शुक्रवार 5 जून को यूके के समयानुसार सुपहर 3 बजे उठाई जाएगी। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों को हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: वेलकम टू द सेकंड आवर 10 मिनट का 8 मिनट और अभी छोटा सा ब्रेक, उसके बाद अपनी बातचीत जारी। जैसे कहा अभी ब्रेक की बारी।
1: RM2
2: रेडियो मस्ती
1: Alkohi Fashion, the best one-stop wedding destination.
3: Mais oui, in a lehenga poudoulin, lacha, crop top, shelvani, jutpuri, sari, costume, blazer poudoulha. Enfin, in a zis tout pour toute la famille.
4: Monsieur, madame, enfants, je tout pour gain, zolizolilens, poil moyaz, à bon prix imbattable.
3: Alkohi Fashion, de nous écoute la famille, une élégance extraordinaire.
4: Alkohi Fashion, route royale vis-à-vis Jordan Problemus.

0: अच्छा बात करते अबाउट वर्ल्ड बाइसिकल डे जो मनाया जाता है आज यानी कि 3rd of June। वैसे बाइसिकल साइकिलिंग इट्स किलिंग, यानी कि जब आप निकल पड़ते हैं साइकिल करने के लिए और जब मसल्स में दर्द होता है ना अगले दिन लगता है इट्स नॉट ईजी एट ऑल। वैसे और क्या है इसके बारे में बता रहे थे, चलिए इसको जारी रखते हैं।
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.
0: और ये बड़ा मज़ा आता है जब आप अपना हेलमेट पहनकर और साइकिल लेकर निकल पड़ जाते हैं और उसके बाद आसपास के छोटे डिस्टेंस आप यूं ही कवर कर लेते हैं बिना ट्रैफिक और कितनी आसानी से ना। और जहाँ पर आप अपनी हेल्थ की तरफ काम कर रहे हैं वहीं पर पोल्यूशन भी नहीं फैल रहा, कितनी कमाल की बात है ना। फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं हो रहा, वेरी नाइस। तो आप बताएं कि 30 मिनट लगभग आप साइकिल चलाते हैं तो कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं। अगर आप हल्की गति से हल्की रफ्तार से साइकिलिंग करते हैं तो 150 to 250 कैलोरीज इन 30 मिनट्स, वहीं पर अगर मीडियम स्पीड है तो 200 to 350 कैलोरीज, और अगर तेज़ आप चला रहे हैं तो 400 से 700 कैलोरी पर आवर। हाँ ये डिपेंड करता है कि आप इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल पर चला रहे हैं, अगर आप इंक्लाइन पे या फिर आप सोच रहे हैं कि फ्लैट पे चला लें, ये शुरू शुरू में थोड़ा सा आसान रखना चाहिए। वहीं पर कहते हैं कि साइकिलिंग के साथ अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो वज़न घटाने के परिणाम और बेहतर हो सकते हैं, कितनी कमाल की बात है ना। अगर हम स्पेशलिस्ट की बात करें तो कहते हैं शुरुआती लोग 20 से 30 मिनट प्रतिदिन से शुरुआत करें, फिटनेस बनाए रखने के लिए 45 मिनट साइकिलिंग चलाना बिल्कुल बढ़िया है, वज़न घटाने के लिए सप्ताह में कम से कम 5 दिन 45 से 60 मिनट साइकिल चलाना फायदेमंद माना जाता है। तो बस ऐसा कीजिए कि आप कोशिश कीजिए एक रिदम रूटीन बनाने का और एक साइकिलिंग क्लब बना लो ना पड़ोसी के साथ, चलो घूम फिर के आते हैं, अच्छा वो रीजन एक्सप्लोर करके आते हैं, और साथ साथ में बहुत सारे गैजेट्स जहाँ पर लाइट आग लगा सकते हैं, एक अलार्म लगा सकते हैं, एक हॉर्न जैसे कहते हैं एक छोटा सा, जहाँ पर आपको कहीं अगर रास्ते में जाना है सामने कोई भी ऑब्स्टेकल है उसको बता सकते हैं, है ना। और हेलमेट लगाना बहुत बहुत ज़रूरी। चलिए कुछ और बातें होंगी, बात करेंगे कुछ और हेल्थ बेनिफिट्स की साइकिलिंग।
1: वेलकम टू RM2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: जैसे आप जहाँ पर म्यूजिक चल रहा है वहीं पर आपको देनी है कुछ अपडेट्स और सीधा चलते हैं खुद दो जहाँ पर पहुँच गए पूनम। अब वहाँ पर चल रहा है नेशनल साइंस वीक ऑर्गेनाइज बाय राजीव गांधी साइंस सेंटर और डिटेल्स क्या हैं अपडेट्स क्या हैं चलो इनसे जान लेते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग पूनम।
3: वेरी गुड मॉर्निंग विकास, कैसे हैं आप?
2: मैं ठीक, थैंक यू सो मच। वहाँ की अपडेट्स बताओ, क्या हो रहा है, कैसी हलचल?
3: अरे बहुत ज़बरदस्त हलचल है यहाँ पर। नेशनल साइंस वीक 2026 जो चल रहा है ना, उसका उत्साह जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। इस समय ना सब तरफ सिर्फ बच्चे दिख रहे हैं,

पेरेंट्स भी आ रहे हैं, बट ज़्यादातर बच्चे दिख रहे हैं स्कूल कॉलेजेस के। और सच कहूँ ना, यहाँ पर जो हमें कल लग रहा था सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि साइंस और मैथ समझना इतना आसान नहीं होता। और जो कि हर काउंटर जो है ना, और हर एग्जिबिटर जो है अपना सेक्शन लगाए बैठे हैं, चाहे मिनिस्ट्री से की तरफ से हो और चाहे साइंस की तरफ से हो, राजीव गांधी साइंस सेंटर की तरफ से हो, पर जो अभी देखने को मिल रहा है

0: आने वाला शायद मुझे लगता है फ्यूचर उनको पता है, क्योंकि साइंस से लोग जब रिलेटेड होते हैं तो उन्हें पता होता है कि आने वाला फ्यूचर किस में जाने वाला है, तो उन्हें पता है रोबोट से रिलेटेड है या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। आज तो घर में हर चीज़ जो है बस बटन ऑन करो और स्टार्ट हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं हर चीज़ बिहाइंड साइंस से चल रही है, विदाउट एनर्जी और साइंस के बिना तो नहीं चल रही है। और यहाँ पर जो लोग बहुत है एक्साइटेड हो रहे हैं, साथ में जो बच्चे हैं उन्होंने भी ये कह दिया है कि भाई आज हम साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो टीचर्स को पकड़ के खड़े हो रहे हैं, एग्जिबिटर्स को खड़े करके पूछ रहे हैं, क्वेश्चंस आंसर चल रहे हैं। और साथ में उनकी जो खूबसूरती एग्जिबिटर्स की है, मैं सही बताऊँ ना कि वो कल जो थे, भाई शाम को हर कोई टायर्ड होता है, बट वो आज इतनी प्यारी सी मुस्कान लेकर दोबारा आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हम तुम्हें बताएंगे कि क्या क्या साइंस में होता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे काउंटर्स हैं इतने, मैं तो पेरेंट्स को बोलूँगी सबको आना चाहिए, अगर जिसको छुट्टी मिल सकती है मिल सकती है, जिसको नहीं मिल सकती कोई बात नहीं, बट बच्चों को ज़रूर भेजिए, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में आए चाहे अकेले आए, अगर बच्चे आ सकते हैं तो। और जो नहीं आ सकते उनको भी मैं यही कहूँगी कि भाई कुछ ना कुछ प्लानिंग करें और यहाँ पर आए कुद्दो में, क्योंकि यहाँ के जो प्रोग्राम्स हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं वहाँ से कि हम लोग कितना एक्साइटिंग चीज़ दिखा सकते हैं, बच्चे चीज़ें समझ सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में चाहे फूड से रिलेटेड हो, चाहे रोबोट से रिलेटेड हो, चाहे आपकी सिक्योरिटी से, फायर सेक्शन से, और चाहे आप पुलिस फोर्स से, और यहाँ DNA के लिए भी बहुत सारे एक्साइटिंग चीज़ें हैं जो बच्चों को पसंद आती हैं, जो वो लोग नॉर्मली फिल्म्स में देखते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप इधर आइए कुद्दो में, इस समय हमारी पूरी MBC की टीम है, और साथ में मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर राजीव गांधी सेंटर ने बहुत ही आसानी से सब चीज़ें कर रखी हैं, तो बस आपका आना है और बच्चों का फ्यूचर बनाना है। और मैं आप सबको कहूँगी कि MBC की टीम में कि इस समय हमारे साथ RM1 के भी हैं हमारी टीम, और साथ में डोमिनिक भी जुड़े हुए हैं, और MDC के प्रोग्राम आप इस समय कहीं से भी देख सकते हैं। और अगर आपको कोई कुछ सुनना है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा लाइव TV, लाइव रेडियो, अगर आपको कुछ सुनना है, और कहते हैं MBC के प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर उसको डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो मैं विकास आपके साथ हूँ यहाँ से कुद्दो से, और आप बस आइए, जिसको भी आना है, पेरेंट्स को आना है, और बस समझना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है आपके और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए। थैंक यू विकास।
1: थैंक यू सो मच पूनम सारी अपडेट्स के लिए।
2: RM2 Radio Musty Feels a Musty.
3: Make some noise!

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती। जैसे अब फैशन का मीटर ऑन हो गया और हम चलते हैं कुछ फैशन टिप्स की तरफ। वैसे तो हम ये जानते हैं कि सन सैंड द सी एंड ह्यूमिडिटी हो, जब बारिश हो जाती है तो कुछ ऐसे मामला हो जाता है। चलिए आज कुछ फ्रेश ट्रॉपिकल फैशन हैक सुनते हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं और स्टाइलिश भी। फैब्रिक का फंडा, ये टच टेस्ट बहुत ही कमाल का है। अगर कपड़ा हाथ में ठंडा लगे तो समझ लो ट्रॉपिकल अप्रूव्ड है। लिनन ब्लेंड, रेयन या लाइट कॉटन, ये स्वेट को चिपकाने नहीं देते, इसलिए ज़रूरी है कि आपकी त्वचा के साथ ये ना चिपकें। अच्छा लगता है, गुड फील फैक्टर। अब जब थोड़ी सी ठंड हो रही है तो एक लाइट जैकेट ऊपर डाल सकते हैं, क्यों नहीं। बैकपैक्स, हाँ, एक स्वेटी पैक डिजास्टर होता है, इसलिए स्विच टू एरी या क्रॉस बॉडी बैग्स। स्टाइलिश भी होते हैं, कंफर्ट भी होते हैं, लेकिन अब जब मौसम थोड़ा ठीक है तो चल सकता है, राइट। और काफ़ी लोग ब्रीदेबल मेश या फिर परफोरेटेड शूज़ पहनना चाहते हैं जहाँ पर हवा चलती रहे। भाई फ्लिप फ्लॉप्स तो नहीं, लोफर्स भी ठीक ठाक चल जाते हैं, लेकिन हाँ जब अभी थोड़ी ट्रांजिशन हो रही गर्मी से ठंडी की तरफ तो ये काम कर सकते हैं। लाइट फुल स्लीव शर्ट्स, कॉटन या लिनन, एक्चुअली आपको बेटर प्रोटेक्ट करते हैं स्लीवलेस होने से। टैनिंग भी कम होती है और ज़्यादा क्लास भी लगती है। और जैसे मैंने कहा, एक छोटा मतलब कि एक स्लीवलेस आप स्वेटर पहन सकते हैं, क्यों नहीं। मॉर्निंग में अच्छा लगता है, और वहीं जहाँ पर आप सेंटर प्लाटो की तरफ काम कर रहे हैं तो फिर इसका मजा अलग। दिन में ब्लैक और नेवी हीट को ट्रैप करते हैं, और डे टाइम में पैसल या फिर वाइट सॉफ्ट प्रिंट्स, नाइट को डार्क टोन्स, मतलब कि फुल स्वैग। ह्यूमिडिटी में स्लीक स्टाइल्स टिकते नहीं, गो फॉर टेक्सचर्ड मेसी बंस, ब्रेड्स या फिर शॉर्ट इजी कट्स। जरूरी है कि एक रेस्क्यू लेयर यानी कि एक अल्ट्रा लाइट शर्ट या फिर श्रग रखो अगर आपको लगता है कि मौसम में चेंज होता है तो, और आपको अछूम होना शुरू तो बेटर कीप योरसेल्फ प्रोटेक्टेड। इसलिए जरूरी है फैशन भी और कम्फर्ट भी।
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. RM2
1: Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: बात करते हैं साइकिलिंग की। यू ईयर है वर्ल्ड बाइसिकल डे और हम बात करते हैं उसके बहुत सारे बेनिफिट्स की। और साइकिलिंग एक बहुत ही बेहतरीन कार्डियो एक्सरसाइज है जो हार्ट की कार्य क्षमता बढ़ाने और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर आप रेगुलरली साइकिलिंग करते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ का जोखिम कम होता है। साइकिलिंग के दौरान एंडोर्फिन हॉर्मोन्स रिलीज करती है बॉडी, जिसे कहते हैं फील गुड हॉर्मोन्स। इससे तनाव और चिंता कम होती है। आप जब बाहर निकलते हैं और उन्हीं गलियों में से जहां पर आप ध्यान नहीं देते, आराम से चलते चलते साइकिल करते करते आप उनका मज़ा भी लेते हैं। पैरों में या थाइज़ में कमर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के साथ साथ शरीर की जो सहन शक्ति होती है ना, वो भी बेहतर होती है। साइकिलिंग एक इको फ्रेंडली साधन है। इसका उपयोग करने से ईंधन की बचत होती है और वायु प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगली बारी आसपास कहीं जाना हो तो अपने आप को एक गिफ्ट कीजिए और वो होगा साइकिल। इसके बाद ये मत कहना कि अब साइकिलिंग इज रियली किलिंग। अरे शुरुआत है, क्योंकि वो मसल्स आपने कितने टाइम से यूज़ नहीं किया, अब आने लग गए यूज़ के अंदर, तो कुछ फर्क तो पड़ेगा ही ना।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: संक्षिप्त समाचार का वक्त और आ गई हैं आशा स्टूडियो के अंदर उनसे मिलते हैं नमस्कार
1: नमस्कार 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का बजट 2026-2027 आगामी 19 जून को पेश किया जाएगा वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती महंगाई और भू राजनीतिक तनाव के बीच इस बजट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ये बजट चुनौतीपूर्ण रह सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल सुधार के साथ कल राज्यसभा में पारित प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल संविधान भर से लोकतंत्र की रक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती बल्कि मजबूत संस्थाएं पारदर्शी व्यवस्था और जागरूक नागरिक भी उतने ही आवश्यक हैं सरकार ने नागरिक समाज से भी सुझाव देने की अपील की है सरकार ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 2,264 मिलियन रुपए की अतिरिक्त बजटीय राशि की मांग की है द सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन बिल राज्यसभा में पहली बार पेश किया गया ये अतिरिक्त राशि प्रिजन सर्विस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर और कई मंत्रालयों एवं विभागों के बढ़ते हुए खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी एमओरए ने जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक वीएटी के रूप में 52,200,000,000 रुपए से अधिक की राशि एकत्रित की है ये जानकारी प्रधानमंत्री डॉक्टर मीन राम गुलाम ने राज्यसभा में दी उन्होंने सांसद ईशान जुमन के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए ये आंकड़े पेश किए विदेश मंत्री रितेश रामफल ने राज्यसभा में एक बार फिर दोहराया कि मॉरिशस हमेशा से फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों और स्वतंत्र राष्ट्र की मांग का समर्थन करता आया है उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून बहुपक्षीय सहयोग और शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में मॉरिशस अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगा डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट में संशोधन के बाद संपत्ति घोषणा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव लागू अब सभी डिक्लेरेशन ऑनलाइन मंच के माध्यम से जमा करने होंगे ये व्यवस्था 1 जून से लागू हो गई है जबकि 1 जुलाई के बाद कागज पर जमा किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे पुलिस फाइटर्स यूनियन ने 4 पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया इनमें 2 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल जिन्होंने एक आपात स्थिति के दौरान पुलिस वाहन में एक महिला की सुरक्षित डिलीवरी कराने में मदद की अन्य पुलिस अधिकारियों को भी उनके योगदान के लिए सराहा गया अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के एक सैन्य नियंत्रित केंद्र को निशाना बनाया वहीं ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन के जरिए अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया अमेरिकी सेना के अनुसार कई हमलों को बीच रास्ते में ही रोक दिया

0: किया गया, जबकि ईरान ने चेतावनी दी कि क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को प्रभावित करने वाली किसी भी कार्रवाई के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। Bon espoir Road, Rivière des Créoles-Mé, 65 साल के 65 years old के देवजीत सुपोल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें अनिल के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उन्हीं के मकान Bon espoir Road, Rivière des Créoles से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्रेमानियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रीमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: चाहे आपके कुछ मैसेजेस और यहाँ पर ईशा आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, मामा प्रिया की तरफ से सिस्टर हैं, अंशा की तरफ से नानी हैं, और आपको ढेर सारी खुशियाँ ईशा। और ऐसी खुश रहो, मुस्कुराते रहो, म्यूजिकली ट्यून रहो। भाई जरूरी है कि आप जिंदगी के अंदर ना सारी मुश्किलों को पीछे छोड़ दें और अपनी नई एनर्जी के साथ इस दिन को कैप्चर कर लें। कहते बस ज्योति हूँ, शायद बनारस से साथ दारी हूँ, और साथ में आशनी के लिए, रेखा के लिए, सुरेखा एंड मदर फैमिली के लिए भी जरूर जरूर देवानंद साहब आपके लिए अगला गाना। कहते हैं सोफी हैं और साथ में उनका बर्थडे था, तो वर्णा की तरफ से और लवली ब्रदर की तरफ से उनको ढेर सारा प्यार। और साथ में कहते हैं हेलो गुड मॉर्निंग, मैं हूँ रमेश, साथ दे रहा हूँ पंजाब इंडिया से। ओ जी पापा जी क्या हाल है। अच्छा इतनी दूर होने के बाद भी ना एक जैसे नाता समझ आता है, कुछ ऐसी लगता है कि रमेश साहब। अच्छा मॉरिशस में थे कभी बताना कभी। हाँ गुड मॉर्निंग जी, और क्या कमाल की फोटो भेजी है यालेश, यानी कि सी साइड पर कटे हुए वहाँ पर फ्रूट्स हैं, जूस रखा हुआ है खाने पीने के। ओए होए होए, मैं कहता हूँ मैं अटैक करने वाला हूँ खाना एकदम से, मतलब 12 बजते ही भाग जाऊँगा, खाना पीना खा के एकदम से सेट हो जाऊँगा। भाई गुड मॉर्निंग जी, मॉर्निंग टीम, अब्दुल सारवानो हमारे साथ देने, गुड मॉर्निंग आपको भी, और साथ में आ गए हैं कहते नमस्ते, मेरा नाम क्या बताया, हाँ सिल्विया यूवी कृषि शिवसागन फैमिली है फ्लैग में, उनके लिए प्लीज, और जाना हमारे साथ दे रही है, थैंक यू जी। प्रिया जी आपको भी हैप्पी हैप्पी टाइम्स एंड हैप्पी बर्थडे टू रेणुका, कहते हैं सभी क्रेजी बनीस की तरफ से। चलिए साहब अगर चढ़ गया तो चढ़ने देते हैं रंग थोड़ा प्यार का।
0: वेलकम टू RM2
1: मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: चलिए शुरू से बात चलते हैं, सीधे चलते हैं कोड दो, जहां पर मना रहे हैं नेशनल साइंस वीक बाय राजीव गांधी साइंस सेंटर। देखिए साहब, साइंस की बात करें तो इतना सब उसका इस्तेमाल होता है अब आने वाले टाइम में, अभी से 10 साल आगे सोच लेना क्या क्या टेक्नोलॉजी इनोवेशन करना, ये सब जानते हैं पूनम के साथ। अब भाई गुड मॉर्निंग, फिर से स्वागत।
3: वेरी गुड मॉर्निंग विकास, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर आ गई हूँ कोड दो, और मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो सिचुएशन है बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड है, टीचर्स, प्रोफेसर्स और जितने भी लोगों ने अपने यहाँ पर लगाई हुई एग्जीबिशन, और बता रहे हैं कि साइंस जो है कितनी इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में आज की डेट में, क्योंकि स्टूडेंट्स को कई बार एहसास ही नहीं होता कि वो खुद क्या क्या कर सकते हैं, क्या जान सकते हैं। उनके पेरेंट्स को भी कभी नहीं पता होता, क्योंकि उनको तो लगता है बच्चे घर में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और सिर्फ स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। बट जब वो यहाँ पर आकर देख रहे हैं तो उन्हें एहसास हो रहा है कि वो अपना जो फ्यूचर है आने वाले टाइम में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को देख सकते हैं। तो यहाँ पर कई चीज़ें समझ आ रही हैं, जैसे कि अभी मैं एक काउंटर पर गई थी, वहाँ पर उन्होंने बताया कि जो ये हमारी मेट्रो की ट्रेन होती हैं, वहाँ पर जो हर स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट तरह के ट्रैक्स होते हैं, तो ट्रैक्स जैसे हम लोग, जैसे हमने ट्रेन ली है तो उसका जो ट्रैक सिस्टम है वो अलग है, जब उसके बाद हम उतर रहे हैं उसका ट्रैक सिस्टम अलग है, अगर हम लोग पुल पर चढ़ रहे हैं तो उसका ट्रैक सिस्टम अलग है, और अगर हमारी ट्रेन चल रही है कहीं पर फ्लैट एरिया में तो उसका ट्रैक सिस्टम अलग है। तो साइंस ही तो है सब कुछ पीछे। और उसके साथ में ही अगर यहाँ पर बात करें तो सब लोग ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं, कि अगर नर्सिंग की ट्रेनिंग है, आईटी की है, इंजीनियरिंग की है, अगर आपको मेडिकल से कुछ रिलेटेड कुछ जानना है, यहाँ पर जैसे कि अन्ना मेडिकल कॉलेज वाले हैं, यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं कि सीपीआर कैसे देते हैं, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि घर में कोई एक जना होता है, ओल्ड होते हैं पेरेंट्स, और कोई इमीडिएटली कोई हार्ट का इशू आ जाए या उनको पहले से कोई बीपी की प्रॉब्लम है, तो वो सिखा रहे हैं कि सीपीआर भी कैसे देना है, बीपी चेक कैसे करना है, कैसे आप किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कैसे ईजिली निकल सकते हैं, बच्चों को केयर कैसे देनी है, अगर घर में कुछ फायर लग जाए तो आपको क्या चीज़ें लेनी है, प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, और बच्चों को कैसे बचाना है। साथ में यहाँ पर एग्रो से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको अगर वेजिटेरियन है तो कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, अगर आपके ग्लूटेन की प्रॉब्लम है तो आप आटा ना खा के, वाइट आटा, वाइट फ्लावर ना खा के, या व्हीट फ्लावर ना खा के आपको ग्लूटेन हटाना है तो उसमें आप कौन सी चीज़ें, कसावा ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पर ये भी ऑप्शंस मिलते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपको मतलब स्टिक रहना है कि जापान पे ही या ब्रेड्स पे ही, नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर एक राणा विला करके एक प्लांट है जिसके ऊपर आप उसको अपनी, जैसे आपके पास बहुत बड़ी लैंड है उसके ऊपर आप प्लांट कर सकते हैं, काफ़ी सालों के बाद आपको उसके अंदर कहते हैं कि मतलब जो उसका प्लांट है उसको अगर आप उसको उसका ग्रीन निकाल देते हैं उसका पोर्शन, और उसका एक सिस्टम है, प्रोसीजर है, अगर वो प्रोसीजर करते हैं तो उससे आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ब्रिक्स बना सकते हैं, उसके साथ में आप उन चीज़ों को क्राफ्ट करके बेच सकते हैं। तो ये भी चीज़ एक्चुअली मुझे लगता है यहाँ पर जो साइंस है ना उससे आप चीज़ें सीख सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आपको चीज़ों का पता चलता है घर के अंदर बाहर बिजनेस से रिलेटेड। तो ये जो जो हमारे लिए राजीव गांधी साइंस सेंटर ने जो कर दिया है सब लोगों के लिए बहुत ही इजी कर दिया है, तो आप आएँ घर में बिल्कुल मत बैठिए, और यहाँ पर आकर ये जो दो तीन चार दिन हैं हमारे पास आपके लिए हैं, और इम्पॉर्टेंट मैं ये बताऊँगी कि आपको एक एमबीसी का प्ले स्टोर पर जाना है, और एमबीसी का जो हमारा एक स्पेशल कहते हैं एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करना है, और वहाँ पर आप अपने कभी भी किसी टाइम पर भी, जैसे अगर आप कहीं बिजी हैं तो उसमें आप बिज़ी रहिए, बट उसके बाद आप जो आपको फेवरेट प्रोग्राम है आप देखना चाहते हैं तो आप उधर से रेडियो भी सुन सकते हैं और आप अपना टीवी भी देख सकते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल मत भूलिए। और मैं यही कहूँगी कि बिल्कुल विकास, जहाँ जिसको भी ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है और जो हमें लिसनर्स सुन रहे हैं, बस यहाँ आए, देखिए, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप भी एज अ विजिटर आएंगे आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नॉट आपके लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए और फ्यूचर के लिए, और कजन्स रिलेटिव्स बहुत सारे होते हैं, कईयों को बहुत ध्यान होता है दिमाग में कि उनके लिए आगे चल कर क्या करना है, तो आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और यहाँ पर सारे लोग ही एक दूसरे की बहुत ही हेल्प कर रहे हैं साइंस को लेके, तो आप बिल्कुल मिस मत कीजिए ये अपॉर्चुनिटी। थैंक यू विकास,
2: थैंक यू सो मच सारी अपडेट्स के लिए।
0: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: अच्छा, एक चीज बड़ी कमाल की और वो ये कि जहाँ पर रणवीर सिंह की मूवी चल गई बहुत ही कमाल की धुरंधर, लेकिन उसके बाद डॉन 3 के जो किस्से सामने आए कि वो प्रोजेक्ट छोड़कर निकल पड़े और उसके बाद उनको बैन कर दिया गया। अब काफी सारे लोग हैं जो मेंबर्स हैं फ्रेटर्निटी के जो उनके साथ काम नहीं करना चाहते, लेकिन बहुत सारे लोग इनके सपोर्ट में भी आए हैं। डॉन 3 से रणवीर सिंह से अचानक बाहर निकल गए और विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने एक्टर के खिलाफ अपना रुख और कड़ा कर लिया है। जहाँ रणवीर इन विवादों से घिरे हुए हैं, वहीं उन्हें लेकर बॉलीवुड से ज़्यादा लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो सामने आए हैं। वैसे कंगना रनौत मंगलवार को अपनी आगामी फिल्म भारत भाग्य विधाता के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर मौजूद थी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने रणवीर सिंह के बैन पर सवाल किया गया जब उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे हर किसी ने बैन कर दिया है, मैं क्या कहूँ। लेकिन ये सच बात है कि जहाँ पर पद्मिनी कोल्हापुरी, उन्होंने कहा कि देखो, रणवीर सिंह को अपने सदस्य के रूप में पाकर गर्व है। हम बीच में उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, उनको देखकर गर्वित महसूस करते हैं, लेकिन उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा है कि अभी तक बात सामने नहीं आई कि क्या वजह थी कि उनको इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलना पड़े, निखिल त्रिवेदी या फिर बात करें ऐसे कुछ और आर्टिस्ट की। तो अब दो दो ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पर कुछ लोग हैं जो उनके साथ हैं, कुछ लोग हैं उनके साथ नहीं हैं। लेकिन फरहान अख्तर, जोया अख्तर, वो अभी मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि अब वो प्रोजेक्ट का हिस्सा ना रहे, और अब वापस आने में भी उनकी कोई रुचि नहीं है। देखते हैं कितना असर पड़ता है, लेकिन बहुत सारे फिल्म मेकर्स उनके साथ प्रोजेक्ट में काम करना तो चाहेंगे ही। ये बात कब सॉल्व होती है बताएंगे जैसे ही पता लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पर मिलता है द बेस्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक अपडेट्स फ्रॉम बी टाउन।
1: यू आर लिसनिंग टू मस्ती मॉर्निंग्स।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है।
1: Stay tuned, stay musty.
4: Must Morning Show
1: Radio.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Oh my god, oh my god, oh my god! Devine qui est de retour chez McDonald's!
3: Hé, calme-toi un peu! On connaît qui chez McDonald's?
2: Le Spicy Panier Burger! Tu te rappelles comment il était spicy?
3: Ah oui, je me rappelle! J'en pleure encore!
2: Mais là, il est revenu, mais en édition limitée et avec une nouvelle sauce tandoori 100% végétarien! Faut qu'on aille goûter maintenant!
3: Le Spicy Panier Burger est de retour chez McDonald's avec un twist qui va vous surprendre à tester avant qu'il ne disparaisse! McDonald's, pa-da-pa-pa-pa! I'm loving it.
0: RM2
1: Radio Musti.
4: आज सुबह से मौसम थोड़ा ठीक ठाक है ना, लेकिन भाई बॉलीवुड की बात करें तो बारिश कभी भी हो सकती है. It's always so nice कि जब एक टीम साथ में रहकर एक फैमिली की तरह कुछ वक्त बिताए, कुछ कहें, कुछ सुनाए. And it just gets better क्योंकि अभी जैसे ही अभी लंच टाइम आने वाला है, थोड़ी प्लानिंग हो रही है और ये हो रही है फॉरेस्टसाइड बॉयज में. भाई वहाँ पर काफ़ी एनर्जेटिक लोग हैं जो काम करते करते बीच में ब्रेक लेना नहीं भूलते. यस, वी टॉकिंग अबाउट भामिनी, साथ में प्रेमा है एंड विराज. खुश तो बहुत हो गया आज. Enjoy this one. अभी आने वाली थोड़ी देर में रेट्रो रिदम लेकर और नेक्स्ट आज है जहाँ पर ये 90s गाने, पुराने गाने चलने वाले हैं. Enjoy this one.

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: भाई ऐसी परफॉर्मेंस तो याद रहेगी ही रहेगी, वैसे कहते हैं घर याद रहे, अब भाई इससे ज्यादा और क्या कहें।
1: Welcome to RM2. Musty Mornings Radio Musty.
0: Right, this one coming from Teddy, और कहा कि इनको गाना बहुत ही बहुत पसंद आ गया। अच्छा वैसे ये है कि मॉर्निंग मॉर्निंग में हम कितना सारा प्रेशर ले लेते हैं ना, काम की बात हो, देखिए साहब ट्रैफिक हो जाता है दिमाग में, चाहे थॉट्स का हो या फिर रोड पर गाड़ियों का। हाँ मीटिंग्स कभी ज़्यादा चलती हैं देन एक्सपेक्टेड और प्लान्स चेंज होते हैं, तो कभी कभी कुछ चीज़ें अनफिनिश होती हैं, लेकिन इसकी टेंशन लेना ये ठीक नहीं है, डू योर बेस्ट। कभी कभी कुछ मुश्किल होती है तो फिर लगता है चाहे एक जॉब इंटरव्यू हो या फिर कोई एग्जाम हो या फिर एक फैमिली के इशू हो या फिर एक स्ट्रेसफुल डेडलाइन, जो भी हो बस ये सोचिए कि इससे भी बुरा हो चुका है पहले और मुझे पता है इसे डील कैसे करना है। अपने आप पर विश्वास रखिए, ये सोचना कि हर कोई आगे निकलता जा रहा है और आप पीछे रह गए, ये तो सच नहीं है ना। कोई घर खरीद रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई प्रमोशन सेलिब्रेट कर रहा है, तो ये सोचकर आप कंपेयर करने लगते हैं कि मेरे साथ कुछ ठीक हो नहीं रहा। अरे साहब ये देखिए कि आप कहाँ पर हैं, आपसे कितने सारे लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज हैं, आपने कोशिश की है, मेहनत की है और आप जहाँ पर पहुँचे हैं ये अपने एफर्ट पर, सो बी प्राउड। बड़े बड़े गोल्स अच्छे हैं लेकिन छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स हैं ना उनको भी सेलिब्रेट कीजिए। ये मत सोचिए कि हाँ जब ये हो जाएगा उसके बाद ही लगेगा कि मैंने जिंदगी में कुछ किया है, नहीं नॉट रियली। सेल्फ क्रिटिसिज्म ठीक है लेकिन इतना अपने आप पर हार्श होना ये ठीक नहीं है। कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाती हैं इसलिए थोड़ी सी प्लानिंग करनी ज़रूरत है। बस अगर आपने ये कर लिया, फोकस बना लिया, तो बस फिर देखिए साहब चीज़ें विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस और आपको लगेगा कि यही तो जगह है जहाँ पर म्यूजिक ही म्यूजिक, म्यूजिक की दुनिया RM2। जाने के वक्त थैंक यू सो मच साथ दिया। कल एक बार फिर से मुलाकात होगी आपके साथ, होगी 9 to 12।

0: time to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Masti.
4: Radio Masti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Masti.
4: Feel the Masti.
5: दिन के 12 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आस्था। नमस्कार।
6: नमस्कार। 12 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। बजट 2026-2027 अगले 19 जून को पेश किया जाएगा। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, बढ़ती महंगाई और भू राजनीतिक तनाव के बीच इस बजट पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सरकार पहले ही संकेत दे चुकी है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ये बजट चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन ने बिल सुधार के साथ कल राज्यसभा में पारित। प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम ने कहा कि केवल संविधान भर से लोकतंत्र की रक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, बल्कि मजबूत संस्थाएं, पारदर्शी व्यवस्था और जागरूक नागरिक भी उतने ही आवश्यक है। सरकार ने नागरिक समाज से भी सुझाव देने की अपील की है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए 2,264 मिलियन रुपए की अतिरिक्त बजटीय राशि की मांग की है। सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन बिल राज्यसभा में पहली बार पेश किया गया। यह अतिरिक्त राशि प्रिजन सर्विस, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के कार्यालय, कई विभागों, मंत्रालयों के बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। एमओरए ने जुलाई 2025 से अप्रैल 2026 तक वीएटी के रूप में 52,200,000,000 रुपए से अधिक की राशि एकत्रित की है। ये जानकारी प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कल दी। उन्होंने सांसद ईशान जुम्मन के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए ये आंकड़े पेश किए हैं। विदेश मंत्री रितेश रामफल ने राज्यसभा में एक बार फिर दोहराया कि मॉरिशस हमेशा से फिलिस्तीनी जनता के अधिकारों और स्वतंत्र राष्ट्र की मांग का समर्थन करता आया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, बहुपक्षीय सहयोग और शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में मॉरिशस अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेगा। डिक्लेरेशंस ऑफ असेट्स एक्ट में संशोधन के बाद संपत्ति घोषणा प्रक्रिया में बदलाव लागू हो गया है। अभी डिक्लेरेशंस ऑनलाइन मंच के माध्यम से जमा करनी होंगी। ये व्यवस्था 1 जून से लागू हो चुकी है, जबकि 1 जुलाई के बाद कागज पर जमा किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने ईरान के एक सैन्य नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाया। वहीं ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन के जरिए अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का किया दावा। अमेरिकी सेना के अनुसार कई हमलों को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। बेक्सली हीथ कैंट यूके में 74 साल की 74 years old की जयराज जीबन की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें अनिल के नाम से ज़्यादा जानते थे और वे पहले टागोर रोड फोंजिसाक के रहने वाले थे। उनकी अर्थी शुक्रवार 5 जून को यूके के समयानुसार 3 बजे वहीं पर उठाई जाएगी। शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
0: Retro Rhythm
4: RM2 Radio Musty.

0: Retro Rhythm.
1: पल पल दिल के पास आप रहते हो, स्पेशल सी जगह है जो आपके लिए हमेशा होगी। इट्स योर आरएमजू रेडियो मस्ती। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, इट्स नमनी। कैसे हो आप? आज है

0: थर्सडे 18 जून ऑलरेडी। जून के प्लान्स आपने लिख दिए हैं या अभी भी कंस्ट्रक्शन मोड में हैं? अगर हाँ, नो वरीज, जिंदगी यही पर है आपको वो एक्स्ट्रा पुश देने के लिए। लेकिन अभी रेट्रो रिदम का सफर जारी है, गानों को एंजॉय करते हैं, वापस चलते हैं उन्हीं गोल्डन जमाने में, इस बार मोहम्मद रफी जी की आवाज में।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: रेट्रो रिदम के प्यारे प्यारे दोस्तों, आज है ग्लोबल रनिंग डे। उम्र चाहे आपकी 20 हो या 50 के ऊपर, थोड़ा सा वॉक या हल्का सा जॉगिंग हमारे दिल और सेहत के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद होता है। और वैसे भी आपके जमाने के गाने सुनते सुनते पैर खुद ही थिरकने लगते हैं। तो आज का चैलेंज ये है कि एक छोटी सी वॉक जरूर कीजिए और जिंदगी के इस रिदम को एंजॉय करते रहिए। 2 बजे तक नीलमणि आपके लिए ऐसे ही गोल्डन हिट्स रेट्रो के लाते रहेंगे आपके ही आरएमजू रेडियो मस्ती पर ही।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti

0: रेट्रो रिदम।
1: और दोस्तों, ग्लोबल रनिंग डे के साथ साथ आज वर्ल्ड बाइसिकल डे भी है। याद है वो दिन जब साइकिल ही हमारी पहली पहली फ्रीडम हुआ करती थी? स्कूल जाना, दोस्तों से मिलना या बिना वजह गलियों में घूमना, साइकिल के साथ कितनी कितनी यादें जुड़ी हुई है ना। अगर आज भी आप साइकिल चलाते हो तो हेलमेट पहनिए और सेफ राइड कीजिए, और अगर नहीं चलाते हैं तो उन खूबसूरत यादों को ज़रूर याद कीजिएगा, क्योंकि आपको फील कराने के लिए ही रेट्रो रिदम का ये सफ़र जारी है।
2: RM2 Radio Musti in the mix. Radio

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: रेडियो मस्ती।
1: यस, सभी के लिए चलते हैं स्टूडियो के बाहर पूनम से मिलने के लिए, जो भी राजीव गांधी साइंस सेंटर पर है। मेरे पहले विकास अपडेट्स ले रहे थे, तो चलिए जानते हैं व्हाट्स हैपनिंग। आरएमटू रेडियो मस्ती की पूरी टीम वहां पर है, तो गुड आफ्टरनून पूनम।
2: वेरी गुड आफ्टरनून नील, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं, और हम यहाँ पे बहुत मजे से हैं। मुझे पता है कि आप एक्साइटेड हो रही हैं अपडेट्स लेने के लिए, बट मैं भी आपको बता दूं कि यहाँ हम लोग हैं कुद्दो में, और नेशनल साइंस वीक 2026 चल रहे हैं, और राजीव गांधी साइंस सेंटर ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं यहाँ पर जो बात कहना चाहती हूँ ना, यहाँ आज एहसास हो रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल तरीके से यहाँ पर सिखाई जा रही है, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से उसको, मतलब उन्होंने डेवलप किया है। हर काउंटर को बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत ही ये जो हमारा ये पूरा कह सकते हैं बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। बच्चे बहुत आराम से आ जा रहे हैं। पहले कल तक तो सिर्फ कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे और बड़े स्टूडेंट्स थे, बट आज प्राइमरी से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं, टीचर्स लेकर आए हैं। और साथ में मैं बताऊँ ना, तो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी एक्साइटमेंट बहुत अलग होती है। कल बच्चों की एक्साइटमेंट थी कि डीएनए कैसे होता है और कैसे क्राइम सीन को देखा जाता है, बट आज के जो बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, उनको एक्साइटमेंट हो रहा है कि 3D प्रिंटिंग कैसे चलती है। 3D प्रिंटिंग, अगर आप ऑब्जेक्ट लाते हैं या आपने कोई फोटो लाते हैं 3D की, तो उसको कैसे प्लास्टिक के डिज़ाइन कैसे उसको लिया जा सकता है, तो ये उनको बहुत एक्साइट कर रहा है। साथ में वो बच्चे जो हैं यहाँ पर हमारे, चाहे पुलिस फोर्स हो, चाहे फायर की फोर्स हो, उसके लिए भी उनके कपड़ों को टच कर रही हैं और उनसे बात कर रही हैं। बच्चों को बहुत ही एक्साइटेड फील हो रहा है कि आज हम लोग साइंस के साथ जुड़े हुए हैं, और साथ में ये इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हैं। उसके साथ में मैं बताऊँ ना, यहाँ पर तो टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा रूप ले रही है, क्योंकि लगता है कि सभी को एहसास हो चुका है कि जैसे हमारे पुराने टाइम में जो लोग होते थे, उनको इतना नहीं पता होता था कि साइंस, उसको वर्ड नहीं बता पा रहे थे, बट जबकि वो साइंटिफिकली ही कुछ काम कर रहे होते थे, बट पता नहीं था। बट आज जो जिस तरीके से राजीव गांधी साइंस सेंटर ने इसको ऑर्गेनाइज किया और समझाया है कि हर चीज़ के अंदर, चाहे आप हेल्थ ले लो, एग्रीकल्चर लैंड ले लो, या एग्रीकल्चर कोई भी एग्रो चीज़ ले लो, या कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, या कोई भी काउंटर्स हो, उससे पता चल रहा है कि ये साइंस हर चीज़ में आगे बढ़ चढ़कर साथ दे रही है। और हमारे को जो वेजिटेबल्स है, जैसे आज बहुत सारी लोगों को कैंसर्स की प्रॉब्लम आ रही है, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग खा नहीं पाते हैं, कई चीज़ें हम लोग फ्रिज में रख देते हैं या बहुत बहुत दिन तक रखते हैं, या बहुत सारे उसके अंदर चीज़ें होती हैं, उनके उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए, जैसे वेजिटेबल्स हैं फ्रेश कैसे खाए जाए, उसको अलग तरीके से प्लांट कैसे किया जाए, वो ये लोग सब सिखा रहे हैं। अगर आप बात करो तो यहाँ पर एक काउंटर है जो कि एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है, जो वेदर फोरकास्ट को समझा रहा है, जो आपका और मेरा रेगुलरली हम लोगों को बताना होता है कि मौसम का हाल कैसा है, तो यहाँ पर ये भी सिखा रहे हैं कि मौसम को कैसे जाना जाता है, और उसके बाद पानी को कैसे क्लीन किया जाता है, पानी को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, रिजर्वा में कैसे साफ हमारे घरों तक पहुँचा जाता है। तो ये बच्चों को बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस भी है, जो कि एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन सेक्शंस भी देख रही है, और जहाँ पर अगर जो न्यू जॉब सीकर्स हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और हाउसवाइफ हैं, उनको कुछ भी नई चीज़ सीखनी है, तो यहाँ पर बहुत ही चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हैं। और में अगर आप फिजिक्स और बायोलॉजी आपने ली हुई है, तो उसमें आप साइंस की कौन सी फील्ड चुन सकते हैं, आईटी सेक्शन में कैसे जा सकते हैं, ये बहुत है। और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है और मैकेनिकल फील्ड है, वो बच्चे उनको, मतलब जैसे चीज़ें अगर समझ आ जाती ना, उसका बेस लाइन नीलमणि, वो और अच्छा लगता है, उनको बच्चों को टेस्ट आता है कि हाँ भाई क्यों ना इस चीज़ के अंदर हम आगे बढ़ा जाए। तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे नेशनल साइंस वीक में हमने जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड बहुत हैं। अगर आपको कोई इश्यूज़ हो गए हैं, हार्ट का इशू हो गया है, या हेल्थ से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है, या आपको किसी को इमीडिएटली CPR देना है, तो उसको किस तरीके लेना है, BP कैसे चेक करते हैं, आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं कि आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। ये भी एक टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इन चीज़ों से हम लोग छोड़ नहीं सकते, और हमें जुड़ना ही पड़ेगा। और साथ में जब डेमोन्स्ट्रेशन होता है और बच्चे उसको खुद से करते हैं पर्सनली, रोबोट्स हैं यहाँ पर बहुत तरीके के, जैसे यहाँ पर कहते हैं ना ड्रोन है, उनको बच्चों को और सीनियर्स को, बड़ों को, और जो विजिटर्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनके बिना अब हम जी नहीं सकते हैं। हर चीज़ हमको 3D फॉर्म में चाहिए, हर चीज़ हमें हर एंगल से सीखनी है और सीखनी चाहिए। और आगे मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड जो है साइंस के नाम होने वाला है, और मैं इतना ज़रूर सभी को कहूँगी, इस टाइम आप हम जुड़े हुए हैं RM2 रेडियो मस्ती के साथ, और मैं हूँ आपके साथ पूनम, और आपको इतना ज़रूर बताऊँगी कि MBC के आप उसमें जाइए, एप्लीकेशन में जाइए, जहाँ से आप डाउनलोड करते हैं, तो वहाँ पे जो एक एप्लीकेशन, जो ऐप स्टोर होगा उसमें एक एप्लीकेशन होगी MBC प्ले की, उसको आप लोड कीजिए, जिसमें अगर आपका कुछ भी चीज़ आपने कोई मिस कर दिया है, जैसे कि आपने कोई स्पेशल आपका प्रोग्राम और मिस कर दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। रेडियो की कोई बात सुनना चाहते हैं वहाँ से सुन सकते हैं, और अगर आप बस में हैं या कहीं पर भी है तो आप बस रेडियो ऑन कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और ना कि सिर्फ मॉरिशस में, मैं तो कहती हूँ पूरा वर्ल्ड से ही आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और यही मॉरिशस की खूबसूरती है कि जितना इनका दिल अच्छा है, जितनी इतनी खूबसूरती हमको दी गई है एज अ हेवन, तो हम चाहते हैं कि हमारे सभी लिसनर्स जो भी पूरे वर्ल्ड से इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो ये मिस बिल्कुल ना अपॉर्चुनिटी करें, तो हमारे को बस ज्वाइन करें। और ये हमारा जो है 0.10 है, क्या कहते हैं MBC का प्लेयर, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। और साथ में अभी मैं हूँ आपके साथ, और नाथों भी यहाँ पे हैं RMN टीम की तरफ से, साथ में ही डोमिनिक हैं, और डोमिनिक ने हमारा साथ बिल्कुल छोड़ा नहीं है और हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल हम साथ हैं। तो थैंक यू नीलमणि, आप तक ये बात हमने पहुँचाई, ये लेटेस्ट है। और मैं इतना ही कहूँगी, घर में जो भी है, आज कल भी हम यहाँ पर होंगे, परसों भी यहाँ पर होंगे, बिल्कुल मिस मत कीजिए। आप नहीं जानते कि यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, क्योंकि आप जब सीखते हैं, नॉलेज लेते हैं, उसके साथ में ही आपको ये चीज़ें सीखने के बाद आप उसको कंस्ट्रक्शन फील्ड हो या कोई भी किसी भी तरह की फील्ड हो, आप जुड़ सकते हैं अपने अपने साथ में और अपने बच्चों के लिए और उनके भी फ्यूचर के साथ। थैंक यू नीलमणि,
1: क्या बात है, थैंक यू, ने कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें बताई है, तो अपडेट्स के लिए धन्यवाद। और अभी वापस चलते हैं आपके रेट्रो रिदम के सफर पर ही।
0: RM2 Radio Musti

0: स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से कहां कहां,
1: कोथाय कोथाय,
0: किथे किथे,
1: कहां कहां कहां,
0: कहां कहां
1: कहां कहां।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती,
1: वेलकम टू RM2।
3: रेडियो मस्ती,
2: रेडियो मस्ती,
3: नॉर्थ साउथ
2: 103.5,
3: ईस्ट वेस्ट
2: 96.4,
3: सेंटर
2: 99.4।
1: RM2,
2: रेडियो मस्ती,
1: रेडियो मस्ती, the latest news and the greatest mix of music।
3: रेडियो मस्ती,
1: feel the musty।
4: It's 1 PM. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अशिता। नमस्कार।
5: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। मॉरीशस का राष्ट्रीय बजट वर्ष 2026-2027 के लिए आगामी 19 जून को राष्ट्रीय सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। इस बात की पुष्टि प्रधानमंत्री कार्यालय के एक आधिकारिक सूत्र ने MBC को दी है। बजट प्रस्तुति के दौरान सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपनी आर्थिक नीतियों, विकास योजनाओं और राजकोषीय प्राथमिकताओं का ब्यौरा पेश करेगी और सभी जानकारियां मिलेंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल कल शाम लगभग 8 बजे राष्ट्रीय सभा में संशोधन के साथ पारित कर दिया गया। बहस के समापन पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री डॉक्टर रवि राम गुलाम ने देश की चुनावी प्रणाली की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि एक आधुनिक मॉरीशस के सुचारू संचालन और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संवैधानिक तथा चुनावी ढांचे का पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। वर्षों से जारी तटीय कटाव यानी इरोजन के कारण थोबिश समुद्र तट के कई हिस्सों की चौड़ाई में काफ़ी कमी आई है। यहां पर्यावरण मंत्रालय लगभग 1.1 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संरक्षण कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहा है। वहीं होटल ग्रुप बीचकॉम्बर ने इस सप्ताह थोबिश होटल के सामने समुद्र तट पुनर्वास परियोजना का शुभारंभ किया है। फ्रांस से आए विशेषज्ञों द्वारा किए जा रहे इन कार्यों का उद्देश्य रेत के बहाव और विस्थापन की गति को धीमा करना है। साथ ही तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक अवसादी यानी सेडिमेंट आदान प्रदान की प्रक्रिया को भी सुरक्षित बनाए रखना है। अधिकारियों के अनुसार ये पहल समुद्र तट को दीर्घकालिक रूप से संरक्षित करने और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुख करते हैं हम भारत दिल्ली की ओर। भारत की राजधानी नई दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में आज सुबह एक इमारत में भीषण आग लगने से कम 21 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार इमारत के भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट और ऊपरी मंजिलों पर एक होटल संचालित किया जा रहा था। दक्षिणी दिल्ली का ये घनी आबादी वाला इलाका छात्रों और युवा पेशेवरों के लिए काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है। 8 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि बचाव अभियान के दौरान 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकालकर आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है और मामले की जांच जारी है। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों से दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास करते दिखाई दिए जबकि इमारत से घना धुआं निकल रहा था। अंदर फंसे कुछ लोग खिड़कियों से लटक कर मदद की गुहार लगाते हुए दिखे। स्थानीय निवासियों ने ये भी कहा कि राहत और बचाव कार्य में सहयोग उन्होंने भी दिया। उन्होंने इमारत में फंसे लोगों को बाहर निकालने और घायलों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में मदद की। गौरतलब है कि नई दिल्ली में इलाज के लिए आने वाले कई विदेशी मरीज अक्सर आसपास के होटलों या आवासीय परिसरों में ठहरते हैं। इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री श्री

0: नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला, साथ रहिए, बढ़ते हैं हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए, मोरेल रोड रिविया जो रंपोर में, मोरेल रोड रिविया जो रंपोर में 92 साल की, 92 ईयर्स ओल्ड की बीबी अमीना दर्मन पैदाश नाम कुदाबकस और जिन्हें मीना के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज रात 8:30 बजे इनके बेटे रफीक दर्मन के घर रिविया जोंपो से उठाकर दफनाने के लिए पॉइंट लास्कोर का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट हाफ पास्ट 8 PM सलाबी लेन क्लेफो नंबर एक फिनिक्स में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री सदासिवन पीले कनकसाबा जिन्हें सदा के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज शाम 4 बजे उनके घर क्लेफो नंबर एक फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm. RM2, Radio Musty.

0: Retro Rhythm. गुड आफ्टरनून, नमस्ते। 11:11 हो चला है रेट्रो रिदम के साथ। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ग्लोबल रनिंग डे और वर्ल्ड बाइसिकल डे। एंड वैसे फिटनेस कोई रेस नहीं होता, बल्कि एक जर्नी होता है। थोड़ा सा वॉक, थोड़ा सा साइकिलिंग और बहुत सारा म्यूजिक, यही है खुश रहने का फॉर्मूला। तो दोस्तों, एक्टिव रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ एंजॉय कीजिए इस हसीन रेट्रो के सफर को। 2 बजे तक नंदमणी यही पर है आपके साथ। तो लेट्स डाइव राइट बैक आपके ही आरएमजू रेडियो मस्ती पर।
1: Retro Rhythm. RM2 Radio Musti.

नाम लिख लिया, बिन पूछे ये काम किया।

0: रेट्रो रिदम।
1: अब वक्त है देखने के लिए कि हमारे रेट्रो रिदम परिवार ने हमें किया क्या प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजे हैं। चलिए पढ़ते हैं कुछ खास संदेश जो आ रहे हैं मॉरिशस के कोने कोने से। वाकवा से वी हैव विश्वानी धूमन जी, अभी वो गाना सुन रहे हैं और मांग रहे हैं डेडिकेशंस। इंदिरा, श्रद्धा, सहेली नीला, प्रतिभा, शोभा, गीता के लिए। एंड वी हैव अनदर मैसेज, आपने नाम नहीं लिखा लेकिन मैसेज है। गुड आफ्टरनून निर्मनिक जी, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? वेरी स्वीट सॉन्ग आप चला रहे हो। आप प्लीज़ मेरे पति राज, बेटे अंतिश, अंकुश, बहू मनीषा, अशीमा, पोती हिमेशा, आध्या, पोती अंश के लिए भी एंड सभी रेडियो मसी टीम के लिए भी एक हैप्पी वाला गाना चला दो ज़रूर जी। वी हैव अनिता जी फ्लैग से एंड वी हैव अविनाश जी, अमर जी जो मांग रहे हैं गाना ना कर्जे की धार, जरूर जी चलाएंगे आपके लिए गाना। एंड वी हैव देव जी फ्रॉम पेरिस, वो मांग रहे हैं गाना जिक्र होता है जब कयामत, मूवी माय लव से डेडिकेट करना चाहते हैं अपनी प्यारी वाइफ के लिए। वी हैव यालिश श्याम सोगी नाम से, आप चलाना चाहते हैं नेक्स्ट गाना अपने लिए एंड फॉर ऑल द रेडियो मस्ती टीम। एंड वी हैव जना जी फ्लैग से बोल रही है, एंजॉय कर रही है गानों को एंड बोल रही है कि नेक्स्ट गाना मेरे लिए भी चला दीजिए, ज़रूर चलाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया इन खूबसूरत मैसेजेस के लिए, आपका ही प्यार रेट्रो रिदम को खास बनाता है। सो लेट्स गो, लेट्स डाइवर्ट बैक आपके ही आनंद जो रेडियो मस्ती पर।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 Radio Musti.

0: Retro Rhythm.
1: दोस्तों पुराने गाने सिर्फ यादें ही नहीं जगाते बल्कि दिलों को भी जोड़ते हैं, इसलिए आपके मैसेजेस हमारे लिए बहुत खास स्पेशल होते हैं। इन और भी मैसेजेस आए हैं, वी हैव ललिता जी जो अपनी लंच टाइम पर है, ऑल्सो वी हैव श्याम दाबीचंद जी जिन्होंने मैसेज लिखा है, वो एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम घर पर ही। आराध्या जी भी है जो साथ दे रही है, येसुदास जी का गाना मांग रही है, ठीक है, सर्च जारी करते हैं अभी के अभी, लेकिन आप यहीं पर जुड़े रहना अपने रेट्रो रिदम के साथ। एंड नेक्स्ट गाने की ओर बढ़ते हैं आपके इस वेंसडे को और खास बनाने के लिए।
2: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।

0: Retro Rhythm.
1: इसी के साथ मैं मनी साइन ऑफ करती हूँ. पुराने गानों की मिठास दिल में बसाए रखिए और यादों की इस महफिल को कभी भी खत्म होने मत दीजिएगा. मेरे बाद आने वाले हैं गिनीशा बॉम्बे टॉकीज के साथ, तो यहीं पर जुड़े रहिए एंड आप सुन पाएंगे अपना बॉम्बे टॉकीज. गिनीशा के साथ नहीं, कोई और ऑर्डर होगी, लेकिन आप यही आरएमजी रेडियो मस्ती पर ही स्टे ट्यून्ड एंड गानों का मजा लीजिए.
0: रेट्रो रिदम
2: आरएम2 Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परिश्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। मेलगोज उच्च सुरक्षा कारागार में बंदी ओंजी सेल्मो की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट मंगलवार को प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम को सौंप दी गई। पूर्व न्यायाधीश पुल लाम शांगलिन द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में मामले से जुड़े तथ्यों का विस्तृत विवरण, जांच के निष्कर्ष और कई महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल हैं। रिपोर्ट में विशेष रूप से जेल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा कारागार प्रशासन और प्रबंधन में सुधार से संबंधित सुझाव दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार रिपोर्ट में प्रस्तुत सिफारिशों का उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना और देश की कारागार प्रणाली को अधिक प्रभावी तथा सुरक्षित बनाना है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की एक व्यापक जांच में विधवाओं, बुजुर्गों और बीमारी और शोक से प्रभावित परिवारों को कथित रूप से निशाना बनाए जाने का एक मामला सामने आया है। वाक्वा सुल्फिगनो नंबर 3 क्षेत्र के 64 वर्षीय निवासी हेमराज मनोहर पर आरोप है कि उन्होंने दर्जनों कथित पीड़ितों की भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाकर उनसे बड़ी रकम हासिल की। आज बुधवार को उन्हें औपचारिक चेतावनी के तहत पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उनके लंबित ओवरटाइम का भुगतान इस महीने के अंत तक कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दमकल विभाग के कर्मचारियों के लिए संडे अलाउंस तथा पब्लिक हॉलीडे अलाउंस की पेमेंट भी शुरू हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार इन सभी पेमेंट्स की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2026 की समाप्ति से पहले पूरी कर ली जाएगी। इन निर्णयों पर सरकारी कर्मचारियों के एक प्रमुख संगठन गवर्नमेंट सर्विसेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनका स्वागत किया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीकी सेना ने कहा कि उसने रात भर ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा के तहत हमले किए और हमले किए और जहाज़ों तथा खाड़ी देशों की ओर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में स्थित कश्म द्वीप पर किए गए ये हमले मध्य पूर्व में ईरान की ओर से कथित हमलों की कोशिशों के जवाब में किए गए। ईरान ने कहा कि उसने जवाबी कार्रवाई में एक क्षेत्रीय देश में मौजूद अमरीकी ठिकानों और हेलीकॉप्टरों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। सेटकॉम का दावा है कि तेहरान ने क्यूवेट की ओर 2 और बहरीन की ओर 3 मिसाइलें दागी, जिन्हें या तो बीच रास्ते में रोक लिया गया या वे स्वयं ही निष्क्रिय हो गई। इस बीच क्यूवेत की सेना ने कहा कि ईरानी ड्रोन ने उसके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया, जिससे इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा और कई लोग घायल हुए हैं। आज बुधवार सुबह हवाई यातायात स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। वहां के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल साउद अब्दुल अजीज अल उतैबी ने इस हमले को ईरानी आक्रामकता का आपराधिक कृत्य बताया और कहा कि घायलों को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रही सुन पाएंगे एक शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड कौचिमलितिया में 75 साल के 75 ईयर्स ओल्ड के श्री जगदत सिंह सांदुगाम जिन्हें जग के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले बायोन कॉलेज और बॉम्बू एसएसएस में एजुकेटर थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके घर कौचिमलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विल में शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टुमारो एट 11:30 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
2: More music in the mix.
3: Aaj azadi hai.
4: Bombay Talkies. Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: Bombay Talkies.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: So well friends, that was a beautiful song to start with. और इसी गाने के साथ आपका warm welcome, आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं. जानते हैं आप दोस्तों, दो से लेकर चार बजे तक मैं हूं परी आपके साथ. Every day इसी time मुलाकात होती है आपकी और मेरी on the waves of RM2 Radio Musti. So पहुंच चुके हैं mid week तक. It's Wednesday afternoon and it's 3rd of June. यानी कि एक नया महीना शुरू हुआ है. दो दिन बीत चुके हैं, तीसरा दिन. I hope that it's a kind Wednesday आपके लिए, जहां पर काम का लोड कम है, दिमाग में स्ट्रेस थोड़ा सा कम है और एंटरटेनमेंट का डोज तो हम आपके लिए लेकर आए हैं. सो साथ रहेगा आपका और मेरा टिल 4 पीएम राइट हियर ऑन रेडियो मस्ती. और अगर आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल से दिल मिले हुए हैं, सो नॉट टू फॉरगेट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर.
4: रेडियो मस्ती,
0: हिट म्यूजिक ओनली.
4: फील्स अ मस्ती. रेडियो मस्ती.

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: Talkies.
0: Radio Musti.
1: Radio Musti.
3: सो वेल फ्रेंड्स, बी टाउन की गर्मा गर्म खबरें आप तक हम लेकर आते हैं। और आजकल एक एक्टर जो काफी चर्चाओं में है वो है विकी कौशल। जब से उनकी शादी हुई है कैटरीना कैफ के साथ, लगता है कि उनका जो लक है वो एकदम चमकने लगा है। और भाई, सारा कमाल तो लेडी लक का ही है कह सकते हैं। सो जो एक्टर विकी कौशल है अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं और उन्होंने शादी को लेकर किए गए जोक पर ट्रोल होने के मामले में अब अपनी बात आगे रखी है। विकी कौशल का इस साल मार्च में एक वीडियो सामने आया था, इसमें वो शादी पर जोक मारते हुए नजर आए थे। इसके लिए उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा था और इस मामले में उन्होंने कहा कि किसी पब्लिक फिगर के लिए हर समय परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर एक बातचीत के दौरान विकी कौशल ने कहा कि जो लोग उन्हें देखते हैं एज अ स्टार, तो उसमें काफ़ी सारे उसके पहलू होते हैं। कभी कभार आपकी अच्छी बातों को अच्छा कहा जाता है और कई बार आपको ट्रोल किया जाता है। सो कहते हैं कि लोग आपको किस तरह से लेते हैं उस पर आपका कंट्रोल नहीं। और उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं कि सिर्फ इसीलिए आप पब्लिक फिगर हो कि आप हमेशा परफेक्ट हो। कभी कभार जो पब्लिक फिगर है वो भी कुछ गलतियों के हकदार होते हैं और कभी कभार कुछ बातें ऐसी मुंह से निकल जाती है जिसके बारे में वो बाद में सोचते हैं। सो यहाँ पर ऐसा ही हुआ था, जहाँ पर एक वीडियो उनका वायरल हुआ जहाँ पर बैचलर्स से वो पूछते नजर आए थे दैट हाउ इज द जोश। बैचलर्स ने कहा हाय सर, और उनका कहना था कि बैचलर्स जो है वो हमेशा जोश में ही रहते हैं, यानी कि शादीशुदा मर्द जोश में नहीं रहते हैं। लोगों ने इसे इसी तरह से ले लिया और उसके बाद ये अटकलें होने लगी कि क्या वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है। यू नो हाउ इट इज, बॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता रहता है। लेकिन उन्होंने कहा दैट ही इज वेरी हैप्पी और उन्हें कैटरीना कैफ से परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकती थी, ये उनका कहना था। और उन्होंने कहा कि भाई, लोगों का जो भी क्रिटिसिज्म है वो सर आंखों पर, क्योंकि जो भी प्यार उन्हें मिला है वो पब्लिक से ही मिला है। सो ये कहना था विकी कौशल का। और अब आ गया है बयान सामने कि भाई, एवरीथिंग वॉज एक फन की तरह इन्हें बात की।

की गई थी, और ये जो बात है उसे इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। सो चलिए दोस्तों, अभी के लिए आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बी टाउन की गर्मा गर्म खबरें अगर आप भी सुनना चाहते हैं, सो यू नो दैट दिस इज द राइट प्लेस, आरएम2 रेडियो मस्ती, जहां पर लेकर आए हैं योर बॉम्बे टॉकीज।

RM2. Radio Musty. Feels a musty.

0: Mustis.
1: Radio Musti.
2: Radio Musti.
3: वेल 2:30 एंड दैट वाज पापॉन की आवाज में अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म वध 2. चलिए दोस्तों अभी के लिए आप दे रहे हैं साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती. मैं हूं परी आपके साथ. डॉन 3 से जुड़े विवाद को लेकर रणवीर सिंह लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं. FWICE से असहयोग निर्देश जारी होने के बाद रणवीर ने FWICE को लीगल नोटिस भेजा है. वहीं आज FW

0: YCE ने रणवीर के खिलाफ जारी असहयोग निर्देश के फैसले को वापस ले लिया है। इसी बीच अब प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अभिनेताओं, निर्देशक और टेक्नीशियंस द्वारा आखिरी समय में प्रोजेक्ट से हटने के बढ़ते चलन के खिलाफ कड़ा बयान जारी किया है। सो वेल फ्रेंड्स, आपको बता दें दैट किसी का नाम लिए बिना प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा है कि उसे दो सदस्य प्रोडक्शन हाउस एक्सेल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और पैनोरमा स्टूडियोज इंटरनेशनल लिमिटेड से औपचारिक शिकायतें मिली है। इनमें फिल्म की शूटिंग शुरू होने से कुछ दिन पहले कलाकारों के बाहर होने की बात कही गई है। ये शिकायतें डॉन 3 से रणवीर सिंह के बाहर होने और दृश्यम 3 से अक्षय खन्ना के बाहर होने से संबंधित है। ये बयान फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज FWICE द्वारा रणवीर सिंह के अचानक फिल्म छोड़ने के विरोध में असहयोग का निर्देश जारी करने के कुछ दिन बाद आया। एक हफ्ते बाद रणवीर ने अपने खिलाफ जारी निर्देश के खिलाफ फिल्म संस्था को कानूनी नोटिस भेजा है। हालांकि FWICE ने रणवीर के खिलाफ असहयोग निर्देश अब वापस ले लिया है। लेकिन जस्ट इमेजिन व्हाट अ कोइंसिडेंस, दो स्टार्स धुरंधर से जुड़े हुए और अक्षय खन्ना एंड साथ में रणवीर सिंह दोनों ही इतने पॉपुलर हुए इस फिल्म को लेकर और अब दोनों के ही खिलाफ यहाँ पर मामले दर्ज हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सामने भी कानूनी कार्रवाई चल रही है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है दैट FWICE ने अपना जो उन्होंने अपने स्टार के खिलाफ जो एक बैन जारी किया था उसे अब वापस ले लिया है। सो अब आगे देखना है कि ये जो कहानी है कहाँ पर मोड़ लेती है, ये बात कितनी आगे जाती है और क्या फाइनली डॉन 3 बनेगी, और अगर बनेगी तो रणवीर सिंह के साथ बनेगी या फिर दृश्यम 3 इसमें अक्षय खन्ना नजर आएंगे या नहीं, इसके लिए तो अब करना थोड़ा सा इंतजार। दोस्तों, बॉलीवुड की खबरें हैं, बी डाउन में कितना कुछ होता रहता है, बस ये खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सो आफ्टरनून टाइम कनेक्टेड है आप RM2 रेडियो मस्ती के साथ, गर्मा गर्म खबरें एंड सम लेटेस्ट सॉन्ग्स आपके लिए ऑन रेडियो मस्ती।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती।

RM2. Radio Musty. Feels a Musty.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो चलिए दोस्तों, थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर. बता दें, कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म भारत भाग्य विधाता का ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है. फिल्म में कंगना एक नर्स के किरदार में नजर आएंगी और फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में कंगना रनौत एक सुंदर सी साड़ी में नजर आई. ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान कंगना रनौत ने डॉन 3 विवाद के बीच एक्टर रणवीर सिंह का सपोर्ट किया है. वहीं पैपराजी से मस्ती करती नजर आई कंगना रनौत और उन्होंने

0: रणवीर के सपोर्ट में कहा कि जब हैसियत बढ़ती है तो दुश्मन भी बढ़ते हैं, ये कहना था कंगना रनौत का। बहुत ही जल्द नजर आने वाली है उनकी अपकमिंग फिल्म भारत भाग्य विधाता में, जिसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। सो चलिए दोस्तों, इट्स 2:55, बी टाउन की गर्मा गर्म खबरें आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए तो नेक्स्ट गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर, उसके बाद लौट कर आएंगे एंड गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन द वेव्स ऑफ आरएम टू रेडियो मस्ती। मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM।
1: You're listening to Radio Masti.

0: to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Pa-da-pa-pa-pa. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2
0: Radio Musti.
4: Radio Musti. The latest news and the greatest mix of music.
3: Radio Musti.
4: Feel the Musti.
5: Time check exactly 3 p.m. सुनते हैं देश विदेश की खबरें अशिता से. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार. संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है. नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल द्वारा कैनाबिस से जुड़े सुधारों पर परामर्श प्रक्रिया जारी रखी गई है. आज बुधवार को विभिन्न मंत्रालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के लगभग 40

0: प्रतिनिधियों को इस विषय पर अपना मत देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य नीतिगत सुधारों पर व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करना और संबंधित पक्षों के सुझावों को शामिल करना बताया जा रहा है। मेलरोज उच्च सुरक्षा जेल में बंदी ओंजी सेल्मो की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट मंगलवार को प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाब को सौंप दी गई। पूर्व न्यायाधीश पलाम शांगलिंग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में मामले से जुड़े तथ्यों पर विस्तार विवरण, जांच के निष्कर्ष और कई महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल हैं। रिपोर्ट में विशेष रूप से जेल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा जेल प्रशासन और प्रबंधन में सुधार से संबंधित सुझाव दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार रिपोर्ट में प्रस्तुत सिफारिशों का उद्देश्य भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना और देश की जेल प्रणाली को अधिक प्रभावी तथा सुरक्षित बनाना है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उनके लंबित ओवरटाइम का भुगतान इस महीने के अंत तक कर दिया जाएगा। इसके साथ ही दमकल विभाग के कर्मचारियों के लिए संडे अलाउंस तथा पब्लिक हॉलीडे अलाउंस की पेमेंट भी शुरू हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार इन सभी पेमेंट्स की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2026 की समाप्ति से पहले पूरी कर ली जाएगी। इन निर्णयों पर सरकारी कर्मचारियों के एक प्रमुख संगठन गवर्नमेंट सर्विसेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रतिक्रिया व्यक्त की और उनका स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार आज बुधवार तड़के यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने सेंट पीटर्सबर्ग में ऊर्जा और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। ये हमला ऐसे समय हुआ जब शहर में रूस के प्रमुख आर्थिक मंच का आयोजन शुरू हो रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भाग लेने की उम्मीद है। सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर बेग्लोव ने कहा कि हमले में कई बुनियादी ढांचा सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। वहीं विभिन्न यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य आर्थिक मंच के आयोजन को प्रभावित करना है, यानी कि इकोनॉमिक फोरम के आयोजन को प्रभावित करना है और उसे बाधित करना है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच इस हमले को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies. Radio Musti.
5: Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musti feels a musti.
2: So, चलिए दोस्तों 3:06 कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स लेकर आए हैं आपके लिए टू गेट यू इन द मूड. मिड वीक तक तो पहुंच चुके हैं. टू डेज मोर टू गो टू वेलकम द वीकेंड. वेल फ्रेंड्स, मैं हूं परी आपके साथ. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज एंड वंस अगेन इट्स टाइम फॉर धुरंधर. एंजॉय दिस वन.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Care?
1: RM2.
2: Radio Musty feels a musty.
3: Bombay Talkies.
4: Radio Musty.
1: Radio Musty.
5: So, well, that was Giz Giz, the latest from the film Welcome to the Jungle, upcoming film जो release होने वाली है जून में. वैसे जून में बहुत सारी फिल्में lined up है. And दूसरी फिल्म जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है Cocktail. शाहिद कपूर, कृति सनन, रश्मिका मंदना की फिल्म Cocktail 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है. और ट्रेलर सामने आने के बाद फिल्म को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट अब और भी बढ़ गया है. इस दौरान ट्रेलर लॉन्च इवेंट से कई वीडियोज भी सामने आए हैं जहाँ फिल्म की लीड कास्ट ने काफी मस्ती की. इस दौरान शाहिद कपूर, सुनिधि चौहान साथ गाना गाते नजर भी आए. और वहीं कृति और रश्मिका ने फिल्म में अपने रिश्तों को लेकर कुछ बातें भी की. यानी कि यहाँ पर जो फैंस है वो सुपर एक्साइटेड हो गए हैं इस ट्रायो को देखने के लिए ऑन द बिग बिग स्क्रीन. और खबरें तो ये भी चल रही है कि भाई Cocktail जो ओरिजिनल फिल्म थी और जो रिलीज हुई थी उसमें नजर आए थे करीना कपूर के पति यानी कि सैफ अली खान, और इसमें नजर आ रहे हैं करीना कपूर के एक्स यानी कि शाहिद कपूर. देखिए लोगों का दिमाग कैसे चलता है, कहाँ कहाँ से स्टोरीज लेकर आते हैं. लेकिन चर्चे तो हो रही है. अब कहते हैं ना कि गुड पब्लिसिटी बैड पब्लिसिटी जो भी हो, लेकिन पब्लिसिटी तो मिल रही है इस फिल्म को. एंड दैट्स Cocktail 2. लोगों को ट्रेलर काफी पसंद आ रहा है और काफी उम्मीदें लगाई जा रही है इसी फिल्म के साथ. सो फिल्म में नजर आने वाले हैं फॉर द फर्स्ट टाइम शाहिद कपूर, उनका साथ देती हुई कृति सनन एंड रश्मिका मंदना. तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए तो ऐसी कुछ खबरें हम लेकर आए हैं और Cocktail फिल्म जो रिलीज होगी दिस जून. सो वेल, अभी के लिए उसी फिल्म का ये गाना माशूका लेकर आए हैं आप सभी के लिए. एंजॉय दिस वन.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: बजकर 32 मिनट ज्योति नूरन एंड रिबेल की आवाजों में दैट वाज वारी जावा आपके लिए। चलिए दोस्तों बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार यानी कि आज 3 जून को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। सुनवाई के दौरान जैकलिन ने जज के सामने अपना पक्ष रखा और खुद पर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह से गलत बताते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट की कार्रवाई खत्म होने के बाद वो मीडिया से बिना बात किए वहां से रवाना हो गई और ये तो हम जानते हैं दैट काफी समय से जैकलिन का एक बैड टाइम चल रहा है। ये मामला सुकेश चंद्रशेखर नाम के एक हाई प्रोफाइल ठग से जुड़ा है और आरोप है कि सुकेश ने जेल के अंदर रहते हुए एक बड़े कारोबारी की पत्नी से 200 करोड़ रुपए की जबरन वसूली की थी। जांच एजेंसी ने दावा किया कि सुकेश ने इस वसूली के पैसों का एक बड़ा हिस्सा जैकलिन और उनके परिवार पर खर्च किया था। सुकेश ने जैकलिन को करोड़ों रुपयों के महंगे गिफ्ट दिए थे जिनमें लग्जरी कार्स, ब्रांडेड बैग्स, गहने और महंगे पालतू जानवर शामिल थे। और इसी मामले में आज जैकलिन कोर्ट में पेश हुई थी। यस, दिल्ली के पटियाला हाउस में उनकी पेशी हुई आज, जहां पर जज के सामने उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए सभी आरोपों को गलत ठहराया है। अब आगे देखना है कि क्या क्या झेलना है हमारी इस एक्ट्रेस को। डिफिकल्ट टाइम से तो गुजर रही है और चलिए देखते हैं। अब वक्त वक्त की बात है एंड जैकलिन फर्नांडिस नॉट ए गुड टाइम फॉर अभी के लिए। बीच आउट की खबरें आप तक पहुंचा रही हैं दोस्तों और कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स आपके नाम साथ दे रहे हैं आप ऑन RM2 रेडियो मस्ती।
0: You're listening to Radio Masti.
2: Well, this one goes out for Harsh Patel. इस वक्त आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, कनेक्टेड हैं आप RM2 रेडियो मस्ती के साथ। So have a wonderful time and enjoy this one.

0: झटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमोन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ो लोग

0: अंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा
1: yeah.
0: पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शकर शकर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker
1: yeah.

0: Radio Mercy
1: in the mix.
0: Radio Mercy feels a mercy
1: in the mix.
2: और चलिए दोस्तों, अब एक ऐसा गाना जिसने करोड़ों दिलों को छुआ है, ब्यूटीफुल ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज फ्रॉम द फिल्म धुरंधर, मदर्स डे हाल ही में सेलिब्रेट किया है. सो दिस वन गोज आउट फॉर ऑल द मदर्स एंड टू एवरीवन जिसका एक कनेक्शन है दिल के रिश्ते से. एवरीवन जो कनेक्टेड हैं दिल से और जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, दिस वन गोज आउट फॉर यू. A beautiful track hamare sabhi listeners ke naam. Have a wonderful time on the waves of RM2 Radio Masti. It's time for your Bombay Talkies. Main hu Pari aapke saath till 4 p.m.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: So well friends, it's 3:53 and it's time for Pari to say goodbye. जाते जाते साधना साथ दे रही हैं आप और dedicate कर रही हैं गाना for all Ajeeban family. Mondalway Union Park, La Rosa and Dubai से हमारा साथ दे रही हैं. So have a wonderful time. साधना, thank you so much. Best FM यानी कि हमारा जो RM2 Radio मस्ती है उस पर हमारा साथ देने के लिए and इतने wonderful messages हम तक पहुंचाने के लिए. रितेश, रानी, श्यामा, थनीश, आदर्श, जयश्री, निष्ठा, युश्रा, शकील, राधा, वशिष एंड ऑल जीवन फैमिली पहले से हमारा साथ दे रहे हैं और कहते हैं दैट गाना गोज आउट पूरे रेडियो मस्ती टीम के नाम एंड स्पेशली फॉर यू परी. दैट्स सो स्वीट. थैंक यू जी. आपका प्यार सर आंखों पर गाना आपके नाम एंड विशिंग यू अ वंडरफुल टाइम, अ लवली आफ्टरनून. भगवत विदेशी साथ दे रही हैं आप. डेडिकेट कर रहे हैं गाना अनुषा के नाम. से एक स्वीट सा गाना कमिंग अप आप दोनों के लिए. और साथ ही धुरंधर फिल्म का गाना सुनना चाहते हैं. यले शाम ऑफ सुरिनाम. चलिए यहाँ पर धुरंधर का तो हमने काफी गाने चला दिए लेकिन वी हैव दिस नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट करेंगे आपके लिए. कहते हैं सच में यार मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा लेकिन हर बार मेरा ही बुरा क्यों होता है. दैट्स कमिंग फ्रॉम ललिता जीतन. दैट्स लाइफ. और कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन्स जिंदगी का हिस्सा है ललिता जी. हम तो बस आपके लिए प्यार ही प्यार लेकर आए हैं. अभी के लिए याद कर रही हैं सभी कलीग्स को. सुपूर्णिमा, कान्या, जिमी, साथ में है पारोही, सलमा, एशली, रवि, सिनिका एंड सुनीति. सभी के लिए प्यार एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं. दैट्स रियली स्वीट. थैंक यू ललिता जी एंड कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज. गाना आपके नाम कुमार देवीचरण साथ दे रहे हैं आप इलायची चाय के साथ. डेडिकेटिंग गाना ये होगा फॉर पापा श्याम देवीचरण ऑफ पेबे और कहते हैं हमेशा उन्हें याद करता हूँ. विजया जी हमारा साथ दे रही हैं और कहते हैं दैट धुरंधर फिल्म का गाना सुन रही हूँ एंड अभी जो इस वक्त रणवीर सिंह के साथ हो रहा है इट्स रियली वेरी सैड. एक्चुअली इट इज. लेकिन चलिए अभी के लिए तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो. और साथ देने के लिए शुक्रिया और थैंक यू सो मच जो आप इतना प्यार हम तक पहुँचा रही है. साथ ही साथ धुरंधर का जो एंडिंग है, जैसे आप कहती है कि स्पाइस की जो लाइफ होती है इट्स नॉट ईजी. सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं देश के नाम एंड फाइनली उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता. बिल्कुल सही कहा आपने. तभी तो धुरंधर फिल्म जो है वो एक डिफरेंट लेवल पर फील होती है. सो थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव हमेशा. अपारू परिवार भी हमारा साथ दे रहे हैं. सो गाना होगा आपके नाम. चलिए दोस्तों नेक्स्ट ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. स्टे कनेक्टेड आर एम टू रेडियो मस्ती के साथ. आपसे मुलाकात होगी कल सेम प्लेस सेम टाइम 2 से लेकर 4 बजे तक इन योर बॉम्बे टॉकीज.
1: Radio Musty in the mix.

0: में एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। वर्षों से जारी तटीय कटाव यानी इरोजन के कारण त्रोबिश समुद्र तट के कई हिस्सों की चौड़ाई में काफी कमी आई है, ये जहां पर्यावरण मंत्रालय लगभग 1.1 किलोमीटर लंबे तटीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संरक्षण कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहा है। वहीं होटल ग्रुप बीचकॉम्बर ने इस सप्ताह त्रोबिश होटल के सामने समुद्र तट पुनर्वास परियोजना का शुभारंभ किया है। फ्रांस से आए विशेषज्ञों द्वारा किए जा रहे इन कार्यों का उद्देश्य रेत के बहाव और विस्थापन की गति को धीमा करना है, साथ ही तटीय क्षेत्र में प्राकृतिक आफ्तादी यानी सेडिमेंट आदान प्रदान की प्रक्रिया को भी सुरक्षित बनाए रखना है। अधिकारियों के अनुसार ये पहल समुद्र तट को दीर्घकालिक रूप से संरक्षित करने और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उनके लंबित ओवरटाइम की पेमेंट इस महीने के अंत तक कर दी जाएगी। इसके साथ ही दमकल विभाग के कर्मचारियों के लिए संडे अलाउंस तथा पब्लिक हॉलीडे अलाउंस की पेमेंट भी शुरू हो चुकी है। अधिकारियों के अनुसार इन सभी पेमेंट्स की प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2026 की समाप्ति से पहले पूरी कर ली जाएगी। इन निर्णयों पर सरकारी कर्मचारियों के एक प्रमुख संगठन गवर्नमेंट सर्विसेज एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आयोजित एक प्रेस वार्ता में प्रतिक्रिया व्यक्त की और स्वागत किया। मेलरोज उच्च सुरक्षा जेल में बंदी ओंजी सेल्मो की मृत्यु की परिस्थितियों की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट कल मंगलवार को प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम को सौंपी गई। पूर्व न्यायाधीश पल्लम शांगलिन द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में मामले से जुड़े तथ्यों का विस्तृत विवरण, जांच के निष्कर्ष और कई महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल हैं। रिपोर्ट में विशेष रूप से जेल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा जेल प्रशासन और प्रबंधन में सुधार से संबंधित सुझाव दिए गए हैं। नेशनल एजेंसी फॉर ड्रग कंट्रोल द्वारा कैनाबिस से जुड़े सुधारों पर परामर्श प्रक्रिया जारी रखी गई है। आज बुधवार को विभिन्न मंत्रालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के लगभग 40 प्रतिनिधियों को इस विषय पर अपना मत देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस प्रक्रिया का उद्देश्य नीतिगत सुधारों पर व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करना और संबंधित पक्षों के सुझावों को शामिल करना बताया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस और यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार आज बुधवार तड़के यूक्रेनी ड्रोन हमलों ने सेंट पीटर्सबर्ग में ऊर्जा और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। ये हमला ऐसे समय हुआ जब शहर में रूस के प्रमुख आर्थिक मंच यानी इकोनॉमिक फोरम का आयोजन शुरू हो रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भाग लेने की उम्मीद है। सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर बेगलोव ने कहा कि हमले में कई बुनियादी ढांचा सुविधाओं को नुकसान पहुंचा है, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं विभिन्न यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य इकोनॉमिक फोरम के आयोजन को प्रभावित करना और उसे बाधित करना था। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के बीच इस हमले को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: रफ्तार वाइज फिल्मी राइट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती।

तो चलिए जी चेक होते हैं स्टूडियो की घड़ी में 4:08 हो चुके हैं। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार, गिनिशा का प्रणाम। वेडनेसडे 3rd of June 2026। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स? आई नो थके हुए हो, इसीलिए हम लेकर आए हैं ऐसे गुड गुड म्यूजिक, लवली सिलेक्शंस फॉर यू माय लवली पीपल आउट देयर जो हमारा साथ दे रहे हैं, सो दैट वी कैन रियली रियली मेक यू फील गुड अबाउट द गुड म्यूजिक यू आर लिसनिंग टू योर नंबर 1 रेडियो स्टेशन। तो चलिए जी, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड ऑन आवर इंटू रेडियो। मैं गिनिशा इज़ गोना बी हियर रात के 7:00 To all those who are driving, hello G, drive carefully. Chaliye jaldi se apne radio ka volume high kar lijiye. This one goes out to you.

I really hope that you guys are really loving these beautiful and lovely गानों का selections जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए so my dear and lovely people thank you so much जी साथ निभाने के लिए हमारे साथ रहे and of course हम तो हमेशा यही कहते हैं कि on RM2 Radio मस्ती ऐसे ऐसे म्यूजिक्स हम लेकर आते हैं fast rides और non-stop hits so welcome in your Raftaar vibes on

वीडियो मस्ती अगर आप स्टीयरिंग पकड़ के निकले हो ऑफिस से या वीकेंड के प्लानिंग अभी से शुरू कर लिया है आपने तो मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें बाद में फिलहाल के लिए जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द रोड. बहुत सारे लोग जो होते हैं ना बोलते हैं अरे यार अभी तो सिर्फ वेडनेसडे है दो दिन बाकी है अभी फिर से वी गोना हिट द वीकेंड. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, यू हैव द फुल टाइम टू डू दैट. तो चलिए जी मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट राइड्स और जो नॉन स्टॉप हिट लेकर आए हैं आप लोगों के लिए उम्मीद करते हैं दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट. और साथ साथ में हमेशा हम आपको अच्छी अच्छी बातें इसलिए याद दिलाते हैं सो दैट आपकी सेफ्टी सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है. सो दोस्तों स्पीड से पहले सेफ्टी हमेशा याद रखो, सीट बेल्ट लगाओ फिर ही रफ्तार वाइब्स का मजा उठाओ और फोन पे बात बाद में कर लेना मेरी जान. अभी रोड से बात करो, आईज ऑन द रोड ईयर्स ऑन रेडियो मस्ती. सिग्नल रेड हो या मूड लो हो पेशेंस रखो ब्रो और सेफ ड्राइविंग इज ऑलवेज अ हिट सॉन्ग, ऑलवेज रिमेंबर दैट. और थोड़ा जल्दी पहुंचने के लिए रिस्क मत लो, घर वाले आपके इंतजार कर रहे हैं एंड आखिर ये हम तो यहां पे लेकर आए हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गाने. सो हियर वी गो, लेट्स हिट इट रेडियो मस्ती वे.

तो चले जी लेकर आए हैं कुछ ऐसे गिने चुने गाने स्पेशली फॉर यू माय लवली पीपल आउट देयर जस्ट दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती। व्हाइट रोल ड्राइवर्स, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस। एंड जितने भी कंडक्टर्स हैं, जितने भी पैसेंजर्स बस में बैठे हैं, टैक्सी में हो, गाड़ी में हो, ट्रक में हो, या इवन मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, टू दोस हु आर लिसनिंग टू अस एट द मोमेंट, थैंक यू सो मच जी। अगला गाना स्पेशली आपके नाम है। जी हाँ, सो लेट्स हिट द रोड एंड रेडियो मस्ती पर ये रफ्तार वाइब्स हैं। एंड गिनीशस हियर टू गिव यू वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जहां बीट्स होते हैं पावरफुल, एनर्जी है अनलिमिटेड और मूड है फुल ऑन मस्ती के साथ। चाहे आप ट्रैफिक में हो, फंसे हुए हो, या इवन घर पे ही आप आराम फरमा रहे हो, या हो सकता है ब्यूटीफुल लेडीज किचन में घुस चुके हैं और सोच रहे हैं कि अरे मेरी जान खाने में क्या बनाना है, पूछे तो जरा। अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, सो डू लेट मी नो 5499-1394।

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: और M2
2: रेडियो मस्ती।
3: वैसे मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, क्या आपको पता है कि आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे है? बिल्कुल, आज है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। सो एक सैल्यूट उन सब साइक्लिस्ट को जो पैडल की पावर से रोड्स को ग्रीन और हेल्दी बना रहे हैं। चाहे आप बाइक पे हो या बाईसाइकिल पे, याद रखिए कि रोड सभी की है। सो रिस्पेक्ट है सबको। बिल्कुल जी, एंड हमेशा जैसे कि हम बोलते हैं कि ड्राइवर्स, हमेशा आप सावधान रहे। एंड आज वर्ल्ड बाईसाइकिल डे है, उस पर एक्स्ट्रा नज़र साइक्लिस्ट पे, जितने भी साइक्लिस्ट हैं उनके लिए रखें। सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें, पेशेंटली ओवरटेक

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: OMG,
2: रेडियो मस्ती।
3: Well guys, I really hope that you guys are really enjoying this beautiful and lovely gaane jo especially aap logon ke liye hum lekar aaye hain. Chin-chin kar lekar aate hain aapke liye in your raftaar vibes. Filmy rides. Bilkul ji, Bollywood ki duniya se aise khoobsurat khoobsurat gaane hum lekar aate hain. 4:38 minutes ho chuke hain. Ganesha on the mic. Wednesday 10 of June 2026. To all those who are celebrating their birthdays, hello ji, happy birthday to you. To all couples celebrating on their wedding anniversaries, congratulations to you. वैसे दिन भर की मेहनत के बाद मेरी जान अब वर्क है, रिलैक्स करने का. वैसे ऑफिस पीछे रह गया है और घर जो है ना सामने है, बीच में पता है क्या आ जाती है, रफ्तार वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती विद मी किनिशा. सो आज का एक छोटा सा रिमाइंडर मेरी जान, हर डेस्टिनेशन एक एक किलोमीटर करके ही मिलती है. हमेशा याद रखना कि बस ड्राइव करते रहे और मुस्कुराते रहे और लाइफ के सफर का मजा लीजिए. ओनली ऑन रेडियो मस्ती.
1: RMT, रेडियो मस्ती.

0: You're listening to your number one radio station, Bollywood की दुनिया से निकल के लेके जाएंगे स्ट्रीट स्पोर्ट्स की दुनिया में, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स गुरु अरविंद आ गई है इन द स्टूडियो.
1: स्पोर्ट्स मैगजीन इज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी देखो, द फ्लो एक्सपर्ट.
2: स्पोर्ट्स न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स.
3: स्पोर्ट्स न्यूज,
4: रेडियो मस्ती इन द मिक्स.
0: बोल तो दिया है कि स्पोर्ट्स गुरु से ऐसा गर्मा गर्म न्यूज लेकर आए हैं. हेलो जी, गुड आफ्टरनून.
5: गुड आफ्टरनून आपको गिनी. गुड आफ्टरनून लिसनर्स. सो अभी वर्ल्ड कप की तैयारियां हो रही हैं. आज डेट क्या है?
0: आज ऑलरेडी 3rd ऑफ जून है.
5: 3rd. मैथमेटिक्स आपकी ठीक है?
0: हाँ जी.
5: ओके, 11th को है वर्ल्ड कप.
0: ओके, मतलब कि 10 दिन बाद. नहीं, 7-8 दिन बाद. यही तो हम बोल रहे ना कि मैच ठीक नहीं है हमारा. 8 दिनों के बाद.
5: Only 8 days.
0: Only 8 days.
5: So, जिसका इंतजार 4 साल तक करते रहते हैं.

0: कब आएगा एंड विच इज समथिंग ए ड्रीम कम ट्रू फॉर ए प्लेयर टू बी इन, अब आ रहा है कुछ ही दिनों में.
1: एवरीवन इज सुपर डुपर एक्साइटेड अबाउट दैट.
0: चलिए इधर आज कुछ तैयारियों के लिए मैच हैं. अल्बेनिया इजराइल, कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डेनमार्क, लुक्जमबर्ग इटली, नेदरलैंड्स अल्जीरिया और पोलैंड का मुकाबला नाइजीरिया से होगा. और आईटी ने आज न्यूजीलैंड को 4-0 से हराया. कुछ अन्य फ्रेंडलीज भी खेले जाएंगे, चाहे वो हांगकांग, फिजी, म्यांमार, उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, तंजानिया, मलावी, जॉर्डन, मलेशिया, ये भी हैं. कल भी काफ़ी मैच हैं, इनमें कुछ इंटरेस्टिंग मैच हैं. स्पेन वर्सेस इराक, फ्रांस का मुकाबला आइवरी कोस्ट से, स्वीडन ग्रीस, स्लोवेनिया साइप्रस, फिर ईरान माली, नॉर्दर्न आयरलैंड गीनिया, लेसोथो केन्या, साउथ कोरिया, एल साल्वाडोर, पनामा, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये कल के मैच हैं जो खेले जाएंगे. सो फुटबॉल में और कुछ हो रहा है, जैसे ट्रांसफर बाजार को लेकर वर्बल एग्रीमेंट हो गया है लिवरपूल और इराओला के बीच, लेकिन वो अपने साथ अपने कुछ सपोर्ट स्टाफ को लाना चाहते हैं, इसीलिए सब फाइनलाइज करने में कुछ समय लगेगा. इधर मैनचेस्टर यूनाइटेड एक खिलाड़ी को लगभग साइन कर चुका है, 35 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग. अटलांटा के एडिसन को, एक मिडफील्डर है, कारिक मिडफील्ड को मजबूत करना चाहता है क्योंकि कासेमीरो चला गया. सो कासेमीरो के स्थान पर उसी का हमवतन आ रहा है एडिसन, बहुत जल्द वो साइन कर लेगा. टेनिस की बात करें, टेनिस हैपनिंग एट फ्रेंच ओपन, इसी समय सावालेंका और श्नाइडर के बीच क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है. लेट मी चेक द स्कोर. तो इससे पहले श्वालिंस्का ने कालिंस्काया को हराया और सावालेंका लीडिंग फर्स्ट सेट जीत चुकी है 6-3 और सेकंड सेट में 4-1 से आगे हैं. सो लगभग वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुकी हैं. लड़कों में आज ओगा अलियासिमे को बोली बेरेटिनी का मुकाबला और नाल्डी से होगा. और कल भी काफ़ी मैच खेले जाएंगे, जैसे सेमीफाइनल कुश्चुक अंद्रीवा और बाकी जो आज क्वालिफाई होंगे उनके नाम भी आएंगे इन दी लिस्ट. तो इतना कुछ अभी के लिए. वैसे ये भी बता दें कि वर्ल्ड कप, जिसे हमने बताया, जारी है, अभी तैयारियां जारी हैं. विल कम अप विद दी वर्ल्ड कप स्पेशल थोड़ी देर बाद.
1: बिल्कुल जी, एंड वी रिमाइंड ऑल आवर लिसनर्स एज वेल, अरविंद जे की है, जब वर्ल्ड कप चलेगा सो ऑफकोर्स विल बी हैविंग ऑल द अपडेट्स ऑन आवर पेज आरएन2 रेडियो मस्ती ऑन फेसबुक एंड इवन ऑन टिकटॉक. यू गाइस कैन स्टार्ट फॉलोइंग अस अगर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया. सो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर भी कर लीजिए अपनों के साथ.
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट.
3: Méga promo code Quality Déco. Tiles 30x30. Méga deal, low tiles 60x60. Super sales, low granite et quartz. Puis cassez-le la voie. La lumière moderne, prix choc.

0: की देखो।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: OMG
3: रेडियो मस्ती।
1: Get ready for the biggest World Cup ever.
2: 2026 FIFA World Cup.
1: पहली बार होंगी 48 टीम्स, 104 मैचेस। रेडियो मस्ती की टीम के साथ
2: चलिए
1: यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको।
2: रेडियो मस्ती के साथ रोड

कप की ओर, फीफा वर्ल्ड कप 2026 नॉकिंग एट द डोर। आज है 3 जून और बचे हैं कितने, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बूम 11, यानी केवल 8 दिन रह चुके हैं। सो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का बिगुल बज चुका है और इस बार मैदान पर खिलाड़ियों के साथ साथ एक और चीज सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, वो है इस टूर्नामेंट की ऑफिशियल मैच बॉल जिसका नाम है एडिडास ट्रियंडा। इस फुटबॉल, खूबसूरत फुटबॉल का नाम है ट्रियंडा। स्पैनिश भाषा में इसका मतलब होता है 3 लहरें। ये नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इस बार

0: वर्ल्ड कप का रोमांच तीन देशों में होने जा रहा है, कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका। इस बॉल के डिजाइन में तीनों देशों की झलक है, कनाडा का मेपल लीफ, मेक्सिको का गोल्डन ईगल और अमेरिका का स्टार इस बॉल को बेहद खास बनाती हैं। ये सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं है, ये अब तक की सबसे हाईटेक फुटबॉल है। क्यों हाईटेक? क्योंकि ये चार पैनल का कमाल पुराने जमाने की फुटबॉल को टुकड़ों में जोड़कर बनती थी, लेकिन थ्रियोंदा को सिर्फ चार पैनल से जोड़कर बनाया गया है। इससे हवा में इसकी रफ्तार और कंट्रोल लाजवाब होने वाला है। ये एक स्मार्ट बॉल टेक्नोलॉजी, इस बॉल के ठीक अंदर एक छोटा सा चिप, एक सेंसर लगा है जो एक सेकंड में 500 बार डाटा भेजता है, यानी रेफरी को ऑफसाइड और हैंडबॉल पकड़ने में अब एक सेकंड की भी देरी नहीं होगी। और ये वायरलेस चार्जिंग है, मोबाइल की तरह इस फुटबॉल की चिप को भी मैच से पहले बिना तार के यानी इंडक्शन से चार्ज किया जा सकता है। तो इस बार जब गोल पोस्ट पर दनादन शॉट लगेंगे तो नजरें सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं बल्कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस अजूबे थ्रियोंदा पर भी रखिएगा। सो ऐसी कुछ खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे वर्ल्ड कप स्पेशल में, सो कीप ऑन लिसनिंग।
1: FIFA वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई। कैच ऑल द न्यूज, व्यूज, प्रीव्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Well, guys, welcome back in the second hour of this beautiful show. And that's your Raftaar Vibes. 5:10 ho chuke hain. Wishing all of you a magical afternoon. With us on Radio Masti. Namaskar ji aur Ganesha ka pranam. So I really hope that you guys are feeling good, much better by listening to these beautiful and lovely, lovely gaane jo especially aap logon ke liye hum lekar aaye hain on our MT Radio Masti. And I really hope that you are feeling good. Ji haan. वैसे ही है तो म्यूजिक तो आप सुन ही रहे हैं हर टाइप के म्यूजिक लेकर आए हैं अकॉर्डिंग टू ऑल चॉइसेस एंड वी रियली होप दैट यू आर फाइंडिंग योर परफेक्ट योर मैजिकल वन इन दिस. तो चलिए जी फिलहाल के लिए 5499-1394 पर आप हमें भेज सकते हैं अपने दिल की बात. आर यू सेलिब्रेटिंग समवनस बर्थडे टुडे? यू जस्ट वांट टू मेक देम फील स्पेशल, सो व्हाई नॉट हमारे साथ शेयर कीजिए. समवन सेलिब्रेटिंग देयर वेडिंग एनिवर्सरी या सिंपली आप किसी को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, यू नो सम ड्राइवर्स हिटिंग द रोड, आप उनको याद कर रहे हैं, सो व्हाई नॉट लेट्स ब्रिंग अ स्माइल ऑन देयर फेस. Dedicate a song for them on RMT Radio Masti. 5499-1294 but I'm just waiting for your dedications.
1: RMT Radio Masti.

0: que tu payes TVA, Pablié exige ou reçu.
1: RM2
2: Radio Musti
3: Raftar Vibes Filmy Rides
1: RM2
4: Radio Musti
5: कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी.
6: You're listening to Radio Musti.

0: केस पे आएगी।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: और M2
1: रेडियो मस्ती।
3: बिल्कुल जी, ये ट्रेन निकल चुकी है बॉलीवुड की दुनिया से और रफ्तार से पहुंचा दिया आपको हमारे रफ्तार वाइब्स में। ऑन आवर एम2 रेडियो मस्ती, यू आर लिसनिंग टू गिनेशा राइट नाउ 5499 1294 पर। जी हाँ, आई हैव गॉट योर डेडिकेशन। और अगला गाना धीरज, आयुष एंड विदिशा के लिए। वी डू हैव अश्विन, ज्योति और हरक परिवार जो मॉडल बेस से साथ दे रहे हैं, और जितने भी हमारे लिसनर्स, आई गेस वी हैव सो मेनी पीपल आउट देयर जो साथ दे रहे हैं फ्रॉम मॉडल बे। बिग शाउट आउट टू यू गाइस। हे वीना चौकी साहू जी, बेलवी मोहल से गाना आपके सभी परिवारों और दोस्तों के लिए। थैंक यू सो मच choosing us as your radio partner as well. Abdul ji, Sarah Banu ji, haba ko bhi hum salam karte hain. Hey, very nice selection, Badwag Bidesi ki taraf se agla gana Anusha ke liye from Mataba. And chaliye ji, we do have the next one for you. Krishni from Kafu ko pranam aapko bhi. Hey ji, ho ji, kaise ho ji? Bilkul mast hain ji. And that's Pooja from Gombe. Thank you so much. Hey, sweet meethi ki nahi hai, hai itna bhi meethi nahi hu, itne bhi meethi nahi hu, diabetes na ho jaye. Well, sab theek hai, sare gaane ekdam fantastic hai. As usual, team ko pranam, wonderful evening and bon courage to everyone. Aur agla gana sabhi logon ke liye jo saath de rahe hain, that's coming from Malini, our beautiful Malini. And I just want to wish a happy birthday to Miss Salma. Hello Salma ji, aaj aapka janmdin hai, so here we go, this one goes out to you.

0: रेडियो मस्ती।
1: बिल्कुल जी, फ्रॉम रेडियो मस्ती, मिस सलमा, हैप्पी बर्थडे टू यू एंड बेस्ट विशेस कमिंग सारे कलीग्स की तरफ से। टीचर्स ललिता जितेंद्र, सुनीता पा, रूही एंड आश्रय, रवि, सिनेका, पूर्णिमा, वी हैव सरिका, कान्या, सिमी एंड लवली स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल पोर्टवी से गॉड ब्लेस यू एवरी डे एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। नॉट ओनली सलमा जी, टू ऑल दोस हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडेज, आई जस्ट वांट टू विश यू अ मैजिकल वन ऑन आवर एंड टू रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच जी। तो चलिए जी, अक्षय जी, अक्षय सिचन बोलते हैं अगला गाना, मानसा एंड रविन, जियाना, विदुषा, केविन, रेशमी, आयान, लाल माची से साथ दे रहे हैं सती सिचन ऑफ रिविया जो पास है अगला गाना। टू ऑल दोस हु आर लिसनिंग टू अस एट द मोमेंट, और फिलहाल के लिए चलिए जी, टू ऑल दोस जो काम से थके हुए हैं, अरे थक गई हो कोई बात नहीं, ये गाना स्पेशली हमारी तरफ से आपके नाम ऑन रेडियो मस्ती, एंजॉय कीजिएगा। हियर वी गो, थैंक यू सो मच जी किनिशा का साथ देने के लिए।
2: गुड़ी की

बिल्कुल जी मोनिका जी, ओ माय डार्लिंग जी, अगर आप हमें सुन रहे हो तो ये गाना स्पेशली मोनिका के लिए जो साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती। वैसे यू डोंट हैव टू कम डाउन, अगर आपका मन कर रहा है नाचने का सो यू कैन डू इट, बैठे बैठे बस में भी ऐसे आप कर सकते हो, ईयर प्लग्स ऑन एंड हाथ पैर हिलाते रहना। हम भी तो यहाँ पे बैठे बैठे स्टूडियो में नाच रहे हैं मेरी जान। अरे कोई बात नहीं, कोई गल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस ये होता है

है कि एंजॉय कर लेना चाहिए, वो भी फुल ऑन वॉल्यूम लगाकर, रफ्तार वाइब्स को जब आप सुनते हो ना अग्निशा के साथ, तो बस यू जस्ट हैव टू लेट गो विद द म्यूजिक, एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय टू द मैक्स। और हमेशा याद रखना, आज का एक पॉजिटिव रिमाइंडर लेकर आई हूँ आपके लिए, आप जितना सोचते हैं ना उससे कहीं ज्यादा आप स्ट्रांग हैं। अगर आज का दिन थोड़ा चैलेंजिंग रहा है ना, तो याद रखिए कि हर सनसेट के बाद एक नई सनराइज तो आ ही जाती है। सो कीप गोइंग, कीप स्माइलिंग और एंजॉय करते रहे रफ्तार वाइब्स हमेशा हमारे साथ ऑन आवर एंड टू रेडियो मस्ती। चेक योर टाइम, 5:33 हो चुके हैं, एंड हियर वी गो, दिस वन गोज आउट टू यू।

0: Welcome to Radio Musty. Check this out. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: फिलहाल के लिए जस्ट गेट रेडी टू लीव बैक सम लवली हियर मेमोरीज हमारे साथ ऑन आवर इंटर रेडियो मस्ती करण नवानी की आवाज में दैट्स अ रीमेक फ्रॉम द मूवी टू मेरी मैं तेरा हियर वी गो
3: आवर इंटर रेडियो मस्ती

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
1: RM2
2: रेडियो मस्ती
1: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.
3: Well guys, time beta chala ja raha hai, 5:40 ho chuke hain aur filhal ke liye for your fashion tips, aaj hum tips lekar aaye hain men's ke liye, wo bhi winter fashion tips. To aap zara apne radio ka volume uncha kar lijiye kyunki I've got a very nice tip for you guys. So winter style tip dekh rahe hain aapko gentlemen, ek simple sweater ya jacket ko plain t-shirt aur dark jeans ke saath pair kar lijiye. Waise colors jaise navy blue hote hain, charcoal grey ya olive green hamesha classy lagte hain aur ha bilkul ek style वॉच या स्कार्फ आपके लुक को इंस्टेंटली अपग्रेड कर सकता है. सो स्टे वार्म, स्टे स्मार्ट और कीप दोज विंटर वाइब्स वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड यस, आई हैव गॉट यू ऑलवेज द बेस्ट जो टिप्स होते हैं ना ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड.
1: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स.
4: यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती.

0: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
1: OM2,
2: रेडियो मस्ती।
3: Wednesday, 3rd of June 2026. To all those who are enjoying their day today, बिल्कुल जी, keep on enjoying क्योंकि लेकर आए हैं कुछ ऐसे गाने. और फिलहाल, I've got your dedications on 549-901-294 पर. और अगला गाना जो है हम dedicate करना चाहेंगे संगीता के लिए और उनके परिवार के लिए जो मोटाई ब्लॉंच से हमारा साथ दे रहे हैं. And a big shout out to everyone who's tuned to RM2 Radio Masti from मोटाई ब्लॉंच, सेबास्टोपोल एंड दैट साइड. तो चलिए जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. चाया सुकोई या पेलगा सेबास्टोपोल, सेबास्टोपोल का नाम लिया और मैसेज भी आ गया. एंजॉइंग सच वंडरफुल गाने वाइल कुकिंग. गाने म्यूजिक हैव द पावर टू टेक अवे ऑल आवर पेन, गिनिशा, सैडनेस एंड इवन टायर्डनेस. म्यूजिक इज लाइक एन एनर्जी बूस्टर व्हिच फ्यूल्स अप आवर सिस्टम एंड रिविटलाइजेस अस. बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है. अगला गाना आपके हस्बैंड सुबिराज के लिए, पैसेंजर्स के लिए, माई बेटा श्रेयाश के लिए और बेटी शाइवी के लिए और आपके लिए भी, आपकी टीम के लिए, सारे लिसनर्स हु आर ऑलमोस्ट वेरी मोस्टली बिजी किचन में. ऑफकोर्स इस वक्त बहुत सारे जितने भी हमारे होम मिनिस्टर्स, मैं तो हाउस वाइफ नहीं बोलती हूँ, हमारे होम मिनिस्टर्स जो है किचन में है, खाना बना रहे हैं. कुहाश टू यू माई डियर, हे हाउ आर यू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. कुमार देवीचंद एंजॉइंग प्रोग्राम, गाड़ी धो रहे हो और फुल ऑन वॉल्यूम लगाकर आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती आपके पापा शाम के लिए. थैंक यू सो मच जी. और द नेक्स्ट वन गोज आउट टू ऑल पापाज हु आर ट्यून्ड टू RM2 रेडियो मस्ती. तो चलिए जी, याले शर्मा फ्रॉम सुरीनाम, ये अगला गाना आपके लिए, आपके फैमिली के लिए. राधा हियर फ्रॉम कनाडा, सात समुद्र पार से. यस, द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू. एज़ यूजुअल इट्स सो नाइस टू लिसन टू लवली शो धमाकेदार म्यूजिक के साथ. जी हाँ, और आपके लिए, लिसनर्स के लिए, हमारे लिए, हर हर महादेव जी. सो द नेक्स्ट वन गोज आउट टू यू एज़ वेल. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग नो टाइम, आई जस्ट वांट टू विश जेनिटा बीशु पुत्याज अ हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर, एंड बेस्ट विशेस कमिंग फ्रॉम द एंटायर फैमिली. संजना, ये अगला गाना आपके लिए. मनीषा, आपके लिए भी ये अगला गाना. So happy birthday to sister-in-law Madhvi. She's celebrating her birthday as well. So congratulations and a happy birthday to you. तो चलिए जी, टू ऑल दोज़ जो साथ दे रहे हैं फिलहाल, बस में बैठे हैं, परेशान हैं कि घर पे जाके अभी फिलहाल खाने में क्या बनाना है, ये सोच सोच के परेशान हो गए हैं. अरे चड्डो यार, ये गाना एंजॉय कर लीजिए.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

0: खूबसूरत गानों का ये सिलसिला तो हमेशा ही चलता ही रहेगा आपके और हमारे बीच में। ऑन राइट टू रेडियो मस्ती, वी हैव गॉट यू द बेस्ट मिक्स अप म्यूजिक। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज चूजिंग अस एज योर रेडियो पार्टनर, एंड कीप ऑन ड्राइविंग सेफली एंड कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन। फिलहाल के लिए जस्ट चेक योर टाइम, इट्स शार्प 6 PM।
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And Alokik Gel Air Freshener. Freshness anytime, anywhere.
3: North, South,
4: 103.5.
3: East, West,
4: 96.4.
3: Center,
4: 99.4.
5: RM2
4: Radio Musty.

बुधवार 3 जून 2026 के सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की एक व्यापक जांच में कई विधवाओं, बुजुर्गों और संकटग्रस्त परिवारों से कथित ठगी का मामला सामने आया है। वाकवा निवासी 64 वर्षीय एक व्यक्ति पर भावनात्मक रूप से कमजोर लोगों का भरोसा जीतकर उनसे बड़ी रकम ऐंठने का आरोप है। वर्ष 2026-2027 का राष्ट्रीय बजट आगामी 19 जून को राष्ट्रीय सभा में पेश किया जाएगा, जिसे इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक घोषणाओं में से एक माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार सरकार के सामने आर्थिक पुनरुद्धार, सार्वजनिक ऋण नियंत्रण और कमजोर वर्गों को सहायता देने के लिए संतुलन बनाने की बड़ी चुनौती होगी। मॉरिशस ने अफ्रीका की सबसे अधिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखी है और एक नई सूचकांक में 5वां स्थान प्राप्त किया है। अफ्रीकी विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार देश उच्च मूल्य वर्धित यानी वैल्यू एडेड विनिर्माण निर्यात में सक्षम है, हालांकि औद्योगिक क्षेत्र के सामने कुछ चुनौतियां भी बनी हुई हैं। दक्षिण मॉरिशस के दक्षिण में पोनाचुगा क्षेत्र में 3 किलोमीटर लंबी नई प्राकृतिक वॉकिंग ट्रैक विकसित की गई है, जो ले बुशों सार्वजनिक समुद्र तट से जुड़ती है। ये पहल वर्जीनिया के पाजियोमेट्रिक क्षेत्र में चल रहे पुनर्नवीकरण कार्यक्रम के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को और मजबूत करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजधानी नई दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में आज एक इमारत में भीषण आग लगने से कम 21 लोग

0: लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की एक व्यापक जांच में विधवाओं, बुजुर्गों तथा बीमारी और शोक से प्रभावित परिवारों को कथित रूप से निशाना बनाए जाने का मामला सामने आया है। वक्वा सुल्फिकरी नंबर 3 क्षेत्र के 64 वर्षीय निवासी हेमराज मनोहर पर आरोप है कि उन्होंने दर्जनों कथित पीड़ितों की भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाकर उनसे बड़ी रकम हासिल की। आज बुधवार को उन्हें औपचारिक चेतावनी के तहत पूछताछ के लिए बुलाया गया। अधिकारियों के अनुसार पूछताछ पूरी होने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। मामले की जांच जारी है और फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन इस कथित वित्तीय धोखाधड़ी के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रहा है। देश के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक आयोजनों में से एक के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्योंकि बजट 2026-2027 आगामी शुक्रवार 19 जून को राष्ट्रीय सभा में प्रस्तुत किया जाएगा। वर्तमान आर्थिक और राजकोषीय चुनौतियों के बीच इस बजट को लेकर काफी उम्मीदें जताई जा रही हैं। आर्थिक पुनरुद्धार, सार्वजनिक ऋण के प्रबंधन और कमजोर वर्गों को समर्थन देने जैसे प्रमुख मुद्दों के बीच सरकार को संतुलन साधना होगा ऐसा अर्थशास्त्रियों का कहना है। विशेषज्ञों के अनुसार ये बजट देश की आर्थिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आने वाले वर्षों की विकास रणनीति को प्रभावित करेगा।
1: Madam Speaker, I move for the adjournment of the House to the 19th of June 2026 at 5 p.m.
2: मंगलवार की रात राष्ट्रीय सभा के कार्यों के स्थगित किए जाने पर सभी लोगों का ध्यान अगले सत्र पर केंद्रित। शुक्रवार 19 जून 2026 को अगला राष्ट्रीय बजट प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसकी पुष्टि की। प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम की ओर से शाम 5 बजे इसकी शुरुआत होगी। अर्थशास्त्री डॉ. भवी चक्रनाथ ने कहा,
3: véritable manche de manœuvre pour réside davantage sur réallocation de ressources, l'amélioration de l'efficacité des dépenses publiques. Et me penser, Bizin mobilise plus beaucoup l'investissement privé.
2: आर्थिक प्रेक्षकों के अनुसार जिस परिप्रेक्ष्य में ये बजट पेश किया जा रहा है वो भी अहम है। अर्थशास्त्री एवं पूर्व बैंकर इब्राहिम मालिक ने कहा,
4: Avec ce qui s'est passé partout dans le monde, surtout au Moyen-Orient et dans un contexte de consolidation fiscale et économique au niveau local, qui a commencé avec le budget de l'année dernière. Vous pensez que tout le monde mourit en ce moment, qui va être priorité budgétaire de cette année, avec un intérêt très particulier par rapport à ce qui pourrait arriver au niveau du pouvoir d'argent avec l'inflation qui peut tomber nous.
2: Vitt Mantralay ke ek budget circular par Vittiya Sachiv Anand Singh Acharaj ke hastakshar hain, जिस पर 2026-2027 कार्रवाई के प्रमुख मुद्दों का उल्लेख है। सरकार ज्यादा खर्च करने के बजाय बेहतर तरीके से खर्च करते हुए आर्थिक वृद्धि प्रोत्साहित करना चाहती है, आर्थिक स्तंभ डाइवर्सिफाई करना चाहती है, सोशल इंक्लूजन बरकरार रखना चाहती है और साथ में उत्पादकता मूल ढांचों में निवेश करना चाहती है, जलवायु मजबूती को सुदृढ़ करना चाहती है और सार्वजनिक वित्तीय स्थिति में भी सुधार लाना चाहती है। गवर्नमेंट हाउस के अर्थशास्त्रियों के मुताबिक संक्षेप में बजट 2026-2027 की फिलोसॉफी में बजट संबंधी अनुशासन का पालन करते हुए सार्वजनिक कर्ज को कम करते हुए टिकाऊ अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाना है, खरीद शक्ति को सुरक्षित रखना है और जरूरतमंदों का समर्थन करना है।
0: कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल कल रात 8 बजे के बाद राष्ट्रीय सभा में संशोधनों के साथ पारित कर लिया गया। विधेयक पर समिंग अप के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने देश की चुनावी प्रणाली की समीक्षा और उसमें सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एक आधुनिक मॉरिशस गणराज्य के प्रभावी संचालन के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक ढांचे का समय समय पर पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रस्तावित आयोग देश की शासन व्यवस्था और चुनावी प्रणाली को और अधिक आधुनिक, समावेशी तथा प्रभावी बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करेगा। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
1: Je dirais, madame la présidente, le projet de loi traduit directement un engagement pris dans le programme gouvernemental 2024-2029.
2: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम

0: राम ने कहा, इस विधेयक के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से सरकारी कार्यक्रम 2024-2029 में प्रस्तावित कदमों के अमल में लाए जाने का प्रावधान है। इस विधेयक के तहत एक स्वतंत्र आयोग कायम किए जाने की बात का उल्लेख है। हमारे सर्वोच्च कानून, हमारे संविधान पर फिर से गौर करने की बात भी कही गई है। प्रमुख सुधार प्रस्तावित हैं, जिन पर यही पर वोट डाला जाएगा। यही उम्मीद है कि हमारी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ से पूर्व सुधार हो जाए।
1: राष्ट्रीय सभा में कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन बिल पर बहस जारी रही, जिसमें सरकार और विपक्ष दोनों ने अपने अपने तर्क रखे। प्रधानमंत्री के अंतिम संबोधन से पहले मंत्रियों, विपक्ष और अटोर्नी जनरल सहित कई सदस्यों ने विधेयक के महत्व और प्रभाव पर विचार व्यक्त किए।
2: पर्यावरण मंत्री के अनुसार इस सरकार को भविष्य की पीढ़ियों के हित में बड़े संरचनात्मक बदलाव लाने के स्पष्ट मैंडेट के साथ चुना गया है। उनके मुताबिक संसद में वर्तमान में विचार किए जा रहे ये विधेयक इसी सुधारवादी दृष्टिकोण का हिस्सा है।
3: La commission sera chargée d'examiner comment mieux protéger les droits fondamentaux, y compris ce qu'on appelle les droits de nouvelle génération. Le projet de loi mentionne explicitement les droits de la nature. C'est une vision audacieuse, progressiste, en phase avec les grandes réflexions internationales sur notre rapport à la planète.
2: विपक्ष की ओर से पुल बेरांजे का मानना है कि आयोग की सिफारिशों को लागू करने के दौरान समय कारक बेहद महत्वपूर्ण होगा।
4: La première question qui se pose est de savoir combien de temps prendra la commission que nous allons mettre sur pied pour faire ses recommandations au gouvernement. Et on peut s'attendre à ce que le gouvernement actuel prenne autour d'un an avant d'approuver telle ou telle recommandation de la commission constitutionnelle. En d'autres mots, il y a un risque. Un an et demi déjà depuis les dernières élections générales, qu'aucun amendement ne soit apporté à notre constitution d'ici les prochaines élections générales.
2: वहीं अटोर्नी जनरल ने किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति को दूर करने का प्रयास किया। गेविन ग्लोवर ने स्पष्ट किया कि इस विधेयक के माध्यम से संविधान में सुधार लाने का कभी कोई इरादा नहीं था।
5: Not a single comma, not a single word of our constitution is being amended tonight. This bill only establishes an independent commission to consult the nation and to take expert advice and to recommend. The report of the proposed amendments will return to this House and every member will have his or her say and vote thereon.
2: आवास एवं भूमि मंत्री के अनुसार ये विधेयक मुख्य रूप से उन अनेक अन्यायों को दूर करने में मदद करेगा जिनका सामना मॉरिशसवासी कर रहे हैं।
6: The everyday Mauritian in whose name we sit in this chamber. To the student preparing for their exams. This bill is about your future. The commission will examine the constitutional right to quality education and a freedom of information principle that will let you request the data shaping the decisions affecting your life. This bill is about your dignity at work. The commission will examine enforceable rights to health, social protection and fair conditions. The expanded public bodies appeal tribunal will mean that when you are passed over for a promotion you earned, you will have a real forum to demand justice, not a closed door.
2: प्रधानमंत्री के समिंग अप से पहले अंतिम वक्ता उप प्रधानमंत्री आर्यन नवमारी थी। उन्होंने मॉरिशस जैसे बहुसांस्कृतिक देश में राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया।
7: In a society as diverse and plural as ours, it is important that the process leading to the election, the choice of our head of state, inspires confidence across all sections of the population. Madam Speaker, some voices and media narratives have attempted to attach the label of a second republic to the process of the possible introduction of an

0: electoral college for the election of the president.
1: कुल मिलाकर कल की संसदीय बैठक के दौरान लगभग 10 सांसदों ने इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए, जिसके बाद प्रधानमंत्री का समिंग अप रहा।
2: राज्यसभा में कल मंगलवार को प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री नवीन राम गुलाम ने सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन बिल 2024-2025 नंबर 2 को प्रथम पढ़त में प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान कुछ सरकारी विभागों और सेवाओं के लिए संसद द्वारा पहले से स्वीकृत राशि के अतिरिक्त व्यय की अनुमति प्राप्त करना है। इस बीच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पर राज्यसभा में बहस जारी है। और जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे, फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की एक व्यापक जांच में विधवाओं, बुजुर्गों और बीमारी तथा शोक से प्रभावित परिवारों को कथित रूप से निशाना बनाए जाने का एक मामला सामने आया है। वाकवा सुल्फिगनो नंबर 3 क्षेत्र के 64 वर्षीय निवासी हेमराज मनोहर पर आरोप है कि उन्होंने दर्जनों कथित पीड़ितों की भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाकर उनसे बड़ी रकम हासिल की है। आज बुधवार को उन्हें औपचारिक चेतावनी के तहत पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
3: शुरुआत में मामला व्यक्तिगत शिकायतों से संबंधित था, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि इन पिछले वर्षों में जरूरतमंद लोगों का विश्वास तोड़ा गया।
4: Ça veut dire qu'il faut mettre lui dans business, après il pourrait tout noir doubler. Mais jamais, jamais pas il n'arrive ça.
3: असल में 64 वर्षीय हेमराज मनोहर को बुधवार 3 जून को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की ओर से एक तथाकथित मनी लॉन्डरिंग और धोखाधड़ी के मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। जांचकर्ताओं के मुताबिक सुल्फेनो वाकवा के रहने वाले व्यक्ति ने 2017 के जून महीने और 2024 के मार्च महीने के बीच बुजुर्ग महिलाओं, विधवाओं और गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों या जिन लोगों के पति या जिनकी पत्नी गुजर गए हों, उन लोगों को निशाना बनाया और वो भारी रकम ऐंठने में कामयाब हुआ।
5: La première fois, le 7 septembre 2022, mon associé 3 millions, Livine avec moi dans la banque pour faire cette transaction-là et Lindy et moi écrit comme si on prête lui l'argent. Après, on envoie un message quand ou pour retourner au casque, Lindy et moi ont besoin verse un nouveau 3 millions parce qu'il n'est pas assez pour faire sa transaction-là. Pour au total 7,7 millions. Et là, Ninale est depuis mon pas trop mis.
3: कुछ लोगों ने उन पैसों का इस्तेमाल किया है जो अपने पति के देहांत में मिला हो। पैसे को एक फंड में जमा किया गया जिसका प्रयोग खेल संबंधी गतिविधियों में लगाया गया। हेमराज मनोहर के घर पर जब छापा मारा गया तब एफसीसी के अफसरों ने एक मोबाइल फोन जब्त किया, साथ में एक टेजर भी। लेकिन प्राप्त जानकारियों के अनुसार संदिग्ध व्यक्ति ने बताया कि उसका कोई फोन नहीं, जिसके बाद उसने जांचकर्ताओं को बताया कि उसके पलंग के नीचे एक हालिया आईफोन छुपाया गया है। अब तक 11 लोगों ने आयोग के सामने अपने बयान दे दिए हैं, जबकि 40 से अधिक क्षतिग्रस्त लोगों को पहचान लिया गया है। अब जांचकर्ता फाइनेंशियल फ्लो का पता लगाने की कोशिश कर रही है और साथ में संबंधित कुल रकम निर्धारित करने की भी कोशिश कर रही है, जो 30 मिलियन रुपये से अधिक की हो सकती है।
2: और जैसे कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे कि कल राष्ट्रीय सभा में प्रथम पढ़त में प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन बिल 2024-2025 नंबर 2 को प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान कुछ सरकारी विभागों और सेवाओं के लिए संसद द्वारा पहले से स्वीकृत राशि के अतिरिक्त व्यय की अनुमति प्राप्त करना है। इस बीच कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पर राष्ट्रसभा में बहस जारी है। इस पर प्रस्तुत है ये रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री रितेश रामफल ने याद दिलाया कि मॉरिशस संविधान नागरिकों की बुनियादी स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करते हुए कई दशक पार कर पाया है।
6: People should ask the question, why are we doing this? Why have we taken such a decision? Because little did we realize that one day there will be a tyrannical government who will rule and who will even dare to abuse people's rights.
3: वित्तीय सेवा मंत्री ज्योति जितन ने कहा कि मजबूत संस्थाओं से देश समृद्ध बनता है और कि इसके आधुनिकीकरण पर विचार करना जायज है। ऐसे में संविधान पर गौर करने की अहमियत आन पड़ती है।
7: The true strength of a constitution is its ability.

0: to remain relevant in a changing world. Nations too must periodically reflect on whether their constitutional arrangements remain adapted to the realities of their time.
1: समाज कल्याण मंत्री अशोक सुबो ने कहा कि प्रस्तावित सुधारों में ऐसे औजार हैं जिनसे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अतिरिक्त इंक्लूजन और सामाजिक न्याय प्राप्त हो।
2: Shall we remain a community-based electoral system based on community classification of 1972, or shall we move towards another electoral system which will guarantee the diverse political representation via a dose of proportional representation?
1: राष्ट्रीय मूल ढांचा मंत्री अजय गणेश ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक गारंटी बढ़ाना है ताकि कोई भी सरकार भविष्य में संवैधानिक सिद्धांतों के साथ आजादी न ले सके।
3: इट इज अबाउट करेक्टिंग इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस दैट हैव बीन एक्सपोज्ड ओवर टाइम। इट इज अबाउट मॉडर्नाइजिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड इट इज अबाउट एंश्योरिंग दैट नो गवर्नमेंट रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल कलर can ever take liberties with democratic institutions again.
1: कृषि उद्योग मंत्री डॉ. अरविंद बुलेर ने सुदृढ़ मैकेनिज्म के हक में बात की ताकि चुनाव प्रक्रिया की रक्षा की जा सके और राजनीतिक फाइनेंसिंग के अधिक पारदर्शिता प्रोत्साहित की जा सके।
4: We made a specific public commitment to appoint a constitutional review commission. The bill before this house today is the fulfillment of that commitment to the letter. We said we would do it. We are doing it.
5: गुश्ते सरकारी पाठशाला में आज सुबह संदिग्ध गैस रिसाव की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप किया। घटनास्थल पर पुलिस की विभिन्न इकाइयों के साथ साथ सामी और मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज मौजूद थी। कुछ विद्यार्थियों को मौके पर ही प्राथमिक चिकित्सा दी गई जबकि अन्य को अस्पताल ले जाया गया। कुल 13 विद्यार्थियों को SSRN अस्पताल में भर्ती कराया गया जिनमें से 7 को निगरानी में रखा गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार कथित गैस रिसाव स्कूल परिसर के भीतर से नहीं बल्कि उसके आसपास स्थित किसी स्थान से हुआ प्रतीत होता है। मामले की जांच के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि कल से गुश्ते सरकारी पाठशाला में पढ़ाई पुनः सुचारू रूप से जारी रहेगी तथा प्रभावित बच्चों का स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है। देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित पो नेचुरल स्थल पर अब 3 किलोमीटर लंबी नई प्राकृतिक पैदल पथ यानी कि वॉकिंग ट्रैक विकसित की गई है जो लुबुशों के सार्वजनिक समुद्र तट से जुड़ती हैं। ये विकास वर्जीनिया क्षेत्र के पाजियोमेट्रिक में चल रहे पुनर्वनीकरण परियोजना के साथ समन्वय में किया गया है। ये कार्यक्रम वर्ष 2004 में शुरू किया गया था जिसके तहत अब तक 2500 से अधिक स्थानिक पौधों को रोपा गया है। इस परियोजना को कई मंत्रालयों और विभिन्न संस्थाओं के संयुक्त प्रयास से आगे बढ़ाया गया है और ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस पहल का औपचारिक शुभारंभ आगामी 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर में भी जोड़ा गया है। और कूटनीति के अंतर्गत आज दोपहर पोर्ट लुइस के ट्रेजरी बिल्डिंग में कैथोलिक शिक्षा सेवा के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के साथ मोसेनियर जोमिकल जॉन भी उपस्थित थे। इस बैठक में सिडेक के भविष्य पर चर्चा की गई जो जोसेस के अंतर्गत आने वाले कैथोलिक स्कूलों की पादरी शैक्षिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी संभालता है। चर्चा के दौरान मुख्य रूप से युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और शिक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक को शिक्षा और सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आज रिजवी के सनातन वाटिका में मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन ने एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया। फेडरेशन के सदस्यों ने रामायण और रिजवी में नए कन्वेंशन केंद्र के निर्माण के लिए भूमि पूजा के सिलसिले में गतिविधियों का ऐलान किया। इस पर याचना मिश्रा की रिपोर्ट।
6: सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर के लिए भूमि पूजा 21 जून को होगी। एक प्रेस सम्मेलन के दौरान इसका ऐलान किया गया।
7: 21 जून को यानी कि सनातन वाटिका में यहां पर सनातन वाटिका कन्वेंशन सेंटर के शुभ आरंभ के लिए हम लोगों ने यहां पर एक भूमि पूजा

0: का आयोजन किया है। सवेरे 9:30 यहाँ पर भूमि पूजा होगी।
1: मॉरिशस सनातन धर्म टेंपल्स फेडरेशन की पहल पर कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा रहा है।
0: पहली जो है रामायण गायन प्रतियोगिता जो मॉडर्न वर्जन में होगी, और ये हमारे जो नौजवान हैं जो कॉलेज में हैं उन लोगों के लिए है। दूसरी पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल नॉर्मल वर्जन और ट्रेडिशनल चौताल वर्जन, तीसरी मॉडर्न क्लासिकल वर्जन पर होगी। चौथा जो है गीत गवाए प्रतियोगिता, पांचवी है इलोकेशन कंपटीशन कहते हैं, चौथा है चित्रकला प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी जो हम कहते हैं क्विज कंपटीशन, इसमें भी ये यंगस्टर्स के लिए हैं।
1: मॉरिशस के लिए अगले हिंदू कैलेंडर की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा गंगातलाव स्पिरिचुअल सेंचुरी को लेकर कुछ निर्देशों पर भी फेडरेशन द्वारा काम किया जा रहा है।
2: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा के तहत हमले किए और जहाजों तथा खाड़ी देशों की ओर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। अमरीकी सेंट्रल कमान के अनुसार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की स्थिति में स्थित कश्म द्वीप पर किए गए ये हमले मध्य पूर्व में ईरान की ओर से कथित हमलों की कोशिशों के जवाब में किए गए। ईरान ने कहा है कि उसने जवाबी कार्रवाई में एक क्षेत्रीय देश में मौजूद अमरीकी ठिकानों और हेलीकॉप्टरों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। और दूसरी ओर भारत की राजधानी नई दिल्ली के मालवीय नगर क्षेत्र में आज बुधवार को एक इमारत में भीषण आग लगने से कम 21 लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार इमारत के भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट और ऊपरी मंजिलों पर एक होटल संचालित किया जा रहा था। इस पर और दुनिया भर की अन्य खबरों पर ये रिपोर्ट।
3: दिल्ली के मालविया नगर में आग लगने की घटना सामने आई है जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है। आग पर काबू पा लिया गया है लेकिन बचाव और खोज कार्रवाई जारी है। ये घटना दक्षिण दिल्ली की एक बहुमंजिला इमारत में लगी जिसका नाम फ्लरिश स्टे बीएनबी है। मारे गए अधिकतर लोग विदेशी थे। रेस्टोरेंट के बेसमेंट से करीब 37 लोगों को बचाया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस त्रासदी पर शोक व्यक्त किया और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से मरने वालों के रिश्तेदारों को 2,00,000 रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है।
2: बढ़ते हैं अब मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। पूजा हस्ताबीर के साथ।
4: हमारे इलाके पर हल्की और गर्म हवाएं बह रही हैं। उत्तर की ओर से आ रहे बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। पूर्वानुमान रात को तथा कल सुबह बादल घिरे रहेंगे। देश के उत्तर पूर्व और ऊंचाइयों पर रह रहकर वर्षा होगी। कल दिन के दौरान भी बादल कुछ छाए रहेंगे। कुछ इलाकों में बारिश के साथ बादल भी गरजेंगे। हवा हल्की रहेगी। दक्षिणी पूर्वी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम तापमान 23 से 25, साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:39 पर होगा।

इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। कंसल पर हमारे सहयोगी लुडोविक हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं अब हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। रागुलेन ल्योशेतेरोज में, रागुलेन ल्योशेतेरोज में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री राजमन रागू जिन्हें राजमन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे परमानंद रागू के घर ल्योशेतेरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्तिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टिमूर और

0: Basawan. Bwa pinyoli, te rujme. Navasi Sal, ki 89 years old ki. Amina B. Olkori, जिने मीना के नाम से ब्लॉग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज रात 9 बजे इनकी भतीजी यास्मीन बीबी कुमल के मकान बुआपिन्योली तियागुश से उठाकर दफनाने के लिए बुआ मौशोका का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9 PM। रॉयल रोड कोचिमलितिया में, रॉयल रोड कोचिमलितिया में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड के श्री जगदत सिंह सांदुगाम जिन्हें जग के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले बायवन कॉलेज और बॉम्बू SSS में एजुकेटर थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11:30 बजे उनके घर कोचिमलितिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए विलमे की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमारो एट 11:30 AM। मोगल रोड रिविया जोरोंपो में 92 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की बीबी अमीना धर्मन पैदाश नाम कुदाबकस और जिन्हें मीना के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई है। इनका जनाजा आज रात 8:30 बजे इनके बेटे रफीक धर्मन के मकान रिविया जोरोंपो से उठाकर दफनाने के लिए पॉइंट डिलास्को का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 8:30 PM। रू गालिया कस्टेल में 54 साल के 54 ईयर्स ओल्ड के श्री उत्तम दत्त सामनाथ जिन्हें प्रीतम के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके घर कस्टेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अलीब्रियों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमारो एट 11 AM। गांधी रोड एन एस फ्लोरों बेलिया में 52 साल की 52 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देवयानी लक्ष्मण पैदाशनाम जहाजिया जिन्हें बबीता के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके पति विनोद श्याम लक्ष्मण के घर एनएस फ्लोरों बेलिया से उठाकर सुबह 11:30 बजे अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। कमीशन टुमारो एट 11:30 AM। काना अवेन्यू कथकोको में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री हरिप्रसाद रामित जिन्हें महाराज तैयार के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके बेटे रामित जयदत्त के घर कथकोको से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। बेलेक्स हीथ केंट यूके में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री जयराज जीवन जिन्हें अनिल के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे और जो पहले टैगोर रोड फोंजसाक के रहने वाले थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी शुक्रवार को उनकी पत्नी अनुराधा जीवन के घर बेलेक्स हीथ केंट यूके से उठाकर यूके समय अनुसार शाम 3 बजे थेम्स व्यू क्रिमेटोरियम ले जाया जाएगी। क्रिमेशन ऑन फ्राइडे एट 3 PM यूके टाइम। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: RM2 Radio Musti

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइट्स
1: बिल्कुल जी, सभी लोग जो होते हैं प्यार पागल तो हो ही जाते हैं प्यार में, लेकिन हम तो म्यूजिक का बजा बजा के आपको पागल कर देना चाहते हैं। वेलकम इन द थर्ड आवर ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो, एंड दैट्स योर रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइट्स विद मी गणेश ऑन आरएनटी रेडियो मस्ती। टाइम बीता चला जा रहा है, 6:39 हो चुके हैं। सो टू ऑल दोस जो किचन में है, खाना बना रहे हैं, कुगाश टू यू एंड ऑल दोस हु आर स्टिल हिटिंग द रोड, ड्राइव केयरफुली, मेंटेन डिस्टेंस व्हाइल ड्राइविंग, एंड कीप ऑन लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन.
2: RN2 Radio.

I've got you the best mix up music for this beautiful late afternoon evening. तो शुरू हो ही चुके हैं आपके और हमारे बीच में. आया एक्चुअली 4 बजे से आई हूँ, 7 बजे तक आपके साथ रहने का फुल ऑन प्लान है मेरा. और योर डेडिकेशंस आर द मोस्ट वेलकम ऑन 5499124 पर. एंड बेबी अर्शद के लिए अगला गाना, यस समवन इज मिसिंग यू माय डियर.

और ये अगला गाना स्पेशली आपके लिए फ्रॉम रेबिका। एंड किसी ने बोला है कि हम यम्मी, अरे इतना प्यारा फोटो आपने भेजा है खाने का, यहाँ पे चूहे डोर रहे हैं हमारे पेट में। एंड द मैन इज कुकिंग मेकिंग होममेड वेज पिज्जा। एंड चलिए आज वेनेसडे को आप फास्ट रखते हो, सो इट्स आंतिश फ्रॉम स्विट्जरलैंड। तो आंतिश जी, ये अगला गाना खास कर आपके लिए। एंड वी डू हैव पूजा। पूजा फंसे हुए हैं कहीं किसी ट्रैफिक में। वो बोलती है क्या करूँ, हम अभी कुछ खरीदने जा रहे हैं खाना खाने के लिए, लेकिन हम listening to Yogini and I'm enjoying the good vibes. Thank you so much, honey. So here we go. The next one goes out to you, my beautiful Pooja, and let's all enjoy it.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनीशा टू से गुडबाय टू यू. यू नो व्हाट, शी इज ऑलरेडी हियर इन द स्टूडियो, यानी कि मनीषमा आ गई है साथ देने के लिए. जी हाँ, इन योर लवली इवनिंग लाउंज शी इज गोना मेक यू फॉल इन लव अगेन एंड अगेन थ्रू दिस ब्यूटीफुल एंड मेस्मराइजिंग गाने. तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत. टेक केयर, बाय बाय, एंड कीप ऑन स्प्रेडिंग लव.

0: मुझे कैसा लग रहा है? वैसे ऐसा ही लगता रहता है कि जब भी प्यार होता है, वैसे छाया है जो दिल पे क्या नशा है, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में, शान की आवाज़ में, यहाँ पर लिख रहा है एक से बढ़कर एक सुनहरे गाने, बस प्यारे प्यारे पर। और यहाँ पर अगर यह सिलसिला ये चाहत का, वैसे आप तो जानते हैं कारवा कैसे चलता है, हमारी इवनिंग लाउंज में फ़ोन करिएगा। एंड यहाँ पर 4028035 पर ये नंबर हैं जहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं बेशक, और 5491294 पर ये है नंबर मैसेजेस का। वेलकम, स्वागत है आप सभी का न्यू इवनिंग लाउंज।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti. चलिए जी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। 7:17 हुए हैं। यह ब्यूटीफुल सॉन्ग सिलेक्शन का कारवां इवनिंग लाउंज आज मनीषमा के साथ और आपके साथ भी है। यहाँ पर फोन नंबर 402-435-402-435 जहाँ पर आप फोन कर सकते हैं, बेशक हमसे लाइव भी बात कर सकते हैं।

0: चलिए हमारे लिसनर्स बहुत सारे लोग अभी सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए यहाँ पर हम लाइव, उन सभी से बात करना बहुत ही पसंद करेंगे। और यहाँ पर उर्वशी से हम बात करते हैं। हेलो जी।
1: हेलो,
0: कैसे हो आप?
1: ठीक हूँ।
0: वैसे मैं ठीक हूँ उर्वशी जी।
1: आप बहुत स्मार्ट हैं।
0: अरे थैंक यू। वैसे स्मार्ट लुकिंग स्पॉट बात करते हुए वैसे उर्वशी जी मैंने आपको कभी नहीं देखा, लेकिन आपके स्माइल से मुझे ये पता चल गया है कि आप हमेशा लोगों से बहुत ही प्यार तरीके से बात करते हो, है ना? आपके पड़ोसी से हम पूछेंगे कि किस तरह से आप हंसती हो, मुस्कुराती हो। वैसे उर्वशी आप रहती कहाँ हो?
1: सेबास्तेपोल।
0: मेरे घर के बहुत करीब है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी ना मैं कहाँ रहती हूँ, लेकिन सेबास्तेपोल बहुत ही करीब है। और सेबास्तेपोल में वहाँ पर मौसम कैसा है?
1: ठीक है।
0: ठीक है ना?
1: ठीक है।
0: ज्यादा सर्दी नहीं आ रही है आजकल?
1: बारिश नहीं है आज।
0: जब बारिश हो जाती है तो जैसे सारे जो टेम्परेचर है गिर ही जाती है और हमको सर्दी लग जाती है। आप तो अपना ध्यान तो रख रहे हो ना?
1: ठीक है।
0: अच्छा जी, तो उर्वशी जी ऐसा आपने बोला कि आप बड़े पसंद करते हैं जैसे गजल सॉन्ग्स।
1: गजल?
0: हाँ जी। तो होश वालों को खबर क्या, ये जगजीत सिंह की आवाज में आप सुनना चाहती?
1: जगजीत सिंह।
0: हाँ जी। तो ये गाना आप किसके नाम डेडिकेट करना चाहती हैं?
1: मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए और आपके टीम के लिए।
0: थैंक यू उर्वशी जी। वैसे आप करती क्या हो जिंदगी में? ऐसे
1: घर में रहती हूँ।
0: और अपना सारा काम खुद ही करती हो?
1: अपने बच्चे को देखती हूँ।
0: अच्छा।
1: बेटा एक बेटी।
0: एक बेटा एक बेटी। और बच्चों के नाम आप बताना चाहेंगी?
1: योजना।
0: हाँ जी।
1: और त्रिलोक।
0: त्रिलोक और योजना, बड़ी कमाल के नाम है। वेरी सुपर सुपर ब्यूटिफुल नेम्स। वैसे आपसे बात करके बहुत खुशी हुई उर्वशी जी। तो आप यूं ही मुस्कुराते रहिएगा, साथ में बाते रहिएगा। यू टेक केयर। हम ये गाना चला देते हैं आपके नाम।
1: गुड नाइट।
0: बाय बाय। बाय। इवनिंग लाउंज। इवनिंग लाउंज। RM2 रेडियो मस्ती।

0: कभी कभी खामोशियाँ भी कुछ ज्यादा बातें कर लेते हैं, कुछ कह भी नहीं चाहते और सब कुछ कह देती है खामोशी है। वैसे ऑल दोज पीपल हु आर साइलेंट, दिल की बात नहीं कहना चाहते, क्या हुआ? जानती हो थोड़ी सी कठिन बात हो जाती है। यहाँ पर हम बात करते हैं दिल से, किसी को हम विश करना चाहते हैं हैप्पी बर्थडे। चलिए बात करते हैं विद रजनी। हेलो, गुड इवनिंग सुरजनी जी। जी सुरजनी, सबसे पहले हम आपको जन्मदिन की ढेर शुभकामनाएं देना चाहते हैं फ्रॉम RM2 रेडियो मस्ती की पूरी टीम की ओर से। आपको दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद और लट्स ऑफ गुड विशेज आपके लिए। आपने चुना हमारे चैनल को, यही बहुत बड़ी बात है टू सेलिब्रेट योर बर्थडे।
1: ये रेडियो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: सॉरी, कैन यू टेल मी अगेन?
1: ये गाना बहुत अच्छा लगता है हमको। ये खास आप बहुत अच्छी मीठी मीठी बात करते हैं।
0: अच्छा जी, अच्छा आपने बोला था ना जुबिन का गाना दिल गलती कर बैठा। अरे वाह,
1: खास मेरे दोस्त के लिए। वो अभी सुबह बीच होटल में
0: अभी काम कर रहे हैं।
1: हाँ, हम कहेंगे इसको बहुत मुखाश।
0: और आप अकेले अकेले अपना जन्मदिन मना रहे हैं?
1: मैं आज तो खास नहीं,
0: आज कुछ खास नहीं, बस अकेले और हमारे साथ।

0: ये तो खास बात है ना आप बात कर पाए हमारे साथ, ये तो खास है हम भी आपके जो जन्मदिन है आपको विश कर पाए, ये हमारी खास बात है।
1: और आपके टीम के लिए,
0: अरे वाह, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे अगेन, हैव ए वंडरफुल टाइम, जिंदगी आपको ढेर सारी खुशियां दे हमेशा, यू ही। अच्छा, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ये जिंगल आपके लिए चल पड़ा, एंड दिस वन गोज़ आउट टू ईच एंड एवरीबॉडी जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं।

0: Evening Lounge,
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Masti.
3: वैसे दिल कभी कभी गलती कर बैठता ही है, वैसे आपको क्या करना पड़ता है, दिल को सुलहाना पड़ता है और उसको समझाना भी पड़ता है। कमबख्त ये दिल कभी कभी मानता भी नहीं। वैसे यहाँ पर हम किससे बात करने वाले हैं और उनका नाम है होनिता फ्रॉम बोनक्का। या गुड इवनिंग।
4: गुड इवनिंग टू यू।
3: कैसे हो आप?
4: ठीक हूँ, आप कैसे हो?
3: मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। आप कैसे हो? आप बताओ आपका हाल।
4: मैं ठीक हूँ।
3: और अभी क्या कर रही है थी आप?
4: मैंने नूडल्स पकाया, पति को पता नहीं पसंद होगा या नहीं, क्योंकि वो कहते बहुत ऑयली है।
3: ओके, वैसे आपने अभी खिलाया नहीं?
4: नहीं खिलाया नहीं।
3: कौन सा नूडल्स बनाया आपने? उनको दिखाइएगा मत, ऐसे ऐसे बस वैसे प्लेट में ही डाल दो, थोड़ा सा चीज उसको रैप करके।

0: दे दो दिखाई ना दे, आपने ज्यादा तेल इस्तेमाल किया क्या?
1: नहीं मैंने ज्यादा तेल इस्तेमाल नहीं किया।
0: नहीं किया ना, तो कोई बात, कॉन्फिडेंस के साथ भेज, आप ना डाल दो उनके सामने, पति देव देखो भगवान जी ने हमको आशीर्वाद दिए हैं, हम खाना बना पा रहे हैं, दो हाथ अच्छे हैं, वेरी गुड, आप खा लो। तो और आपने नूडल्स में क्या डाला आज?
1: वेज
0: कैरेट
1: बीन्स।
0: अच्छा आपने वेज बनाया
1: जी,
0: और आपके पति वेजिटेरियन है?
1: नहीं,
0: हाँ तो सुनाई देगा आपको, क्या करोगे आप, अब तो सुन लो। नहीं अच्छी बात है, उनको आदत भी होनी चाहिए। कभी कभी खा लेनी चाहिए जो बीवी दे देती है। आप बुरा मान गई तो कल नहीं बना पाएंगी ना।
1: नहीं बना पाऊंगी।
0: तो चुपचाप से खा लो, वो कह दो उनको। और बताइएगा हनीता जी, और आज आप कौन सा गाना मांगना चाहती है? तुमसे ही। ओ माय गॉड हनीता जी, ये तो गाना मेरा भी फेवरेट है। अरे वाह, ये चल पड़ा आपके नाम, कोई बात नहीं। वैसे मैं ना चलाना चाहती थी, मैंने सोचा कि कोई मांग ले तो मैं चलाऊंगी। और ये गाना स्पेशली किसके नाम डेडिकेट करना चाहती है?
1: अपने पति संजय के लिए, आपके लिए, सभी आपके टीम के लिए, सभी लिसनर्स के लिए।
0: और वो सुन रहे हैं?
1: हाँ सुन रहे हैं।
0: हाँ सुन रहे हैं, तो उनको पता चल गया आज मेनू में क्या है, और सारी दुनिया को भी पता चल गया आपके पति का नाम क्या है। संजय जी खा लीजिएगा, कल भी आने वाला है प्लेट, कल अलग, आज बस खा लीजिएगा वेज मिन। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।
1: थैंक यू,
0: बाय बाय बाय बाय। इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2 रेडियो मस्ती।

0: कभी किसी के होने से कुछ होता है, किसी के ना होने से ज्यादा कुछ हो जाता है। कभी कभी ये डिस्टेंस बस प्यार को और भी गहरा बना देता है। नोहित चौहान के पास में तुमसे ही टेकन फ्रॉम द मूवी जब वी मेट स्पेशली फॉर आवर डियर लिसनर जिन्होंने ये गाना मांगा है। उनका नाम है कुनल जी। गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग मनीषमा जी,
0: कैसे आप? मैं ठीक हूँ। अभी बताए आप कहाँ से फोन कर रहे हैं?
1: मैं अभी तो फिलहाल घर से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, घर से बोल रहे हो? फिर मुझे लगा कि आप ना बस यू नो ब्रिज के नीचे खड़े हो, कोई बात नहीं, घर से ही बोल रहे हो, ये तो अच्छी बात है।
1: मैं घर से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा,
1: फिलहाल आपके जो कुछ परिवार है मेरे साथ है।
0: अच्छा,
1: मैं ये सब देना चाहता हूँ आपको, हैप्पी बर्थडे विश करना चाहता हूँ आपको।
0: मुझको?
1: ये जी
0: आपको कैसे पता चल गया? और जी थैंक यू सो मच।
1: मैं कुनाल जी हूँ। मैं जैसे कि कुंडली देखना जानता हूँ।
0: अच्छा, आपने कुंडली भी देख ली?
1: जी, आपका कुंडली देख लिया है मैंने। तो आपको दिल से हैप्पी बर्थडे।
0: थैंक यू।
1: आपके जो भी परिवार है, लालजी परिवार, गंगाराम परिवार और चीनी परिवार से की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
0: थैंक यू।
1: और भी नाना नानी जी जो भी है
0: जी।
1: नाना नानी जी आपके जो होने वाले।
0: अच्छा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।
1: परिवार होने वाले,
0: थैंक यू। थैंक यू जी। दिल को छू लिया आपने, थैंक यू सो मच। और आप बताएं अभी आप क्या कर रहे थे, और परिवार के साथ हो या पर पीछे में बहुत सारी आवाजें आ रही थी, कौन कौन है साथ में?
1: थोड़ा सा बहुत बात कर रहे हैं।
0: खा लिया आप लोगों ने? डिनर हो चुके?
1: नाना नानी जी डिनर कर चुके हैं, तो मैं बात कर रहा हूँ, देखने आया हूँ जो भी है जी।
0: अच्छा, ओके ओके ओके जी, हैव अ वंडरफुल इवनिंग। आप यूं ही परिवार के साथ अच्छा अच्छा वक्त बिताए, ये हमको बहुत खुशी मिलती है, और उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने हमारी स्पेशल दिन को और भी स्पेशल बना दिया, और यहाँ पर बहुत सारे कॉल्स भी आ रहे हैं, और आपको बताऊंगी आपके लिए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं। अभी
1: मैं थोड़ा सा रोजा रोजा।
0: अच्छा, कोई आई गेट हियर द रोजा रोजा सॉन्ग इन माई प्लेलिस्ट। अभी मैं बजा देती हूँ आपके नाम और

0: कुनल जी, आपको दिल से धन्यवाद देना चाहते फॉर ऑल योर विशेस. थैंक यू, बाय बाय. थैंक यू, बाय बाय. इसे चल पड़ा रोजा रोजा आप सभी के नाम और दोज हु लव दिस सॉन्ग. इन हियर वी गो.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: इतनी प्यारी लगी. वैसे कोई प्यार में होता है तो प्यारी ही लगते हैं. वैसे 8:05 हुए हैं. थैंक यू सो मच. आई गेट हियर सो मेनी मैसेजेस. हेलो जी, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? वेलकम बैक द सेकंड आवर ऑफ योर इवनिंग लाउंज विद मी मनीषमा. रात्रि के 9 तक चलने वाला है ये शो. बस प्यारी प्यारी गाने, रोमांटिक रोमांटिक सॉन्ग्स, आपके नाम और हमारे नाम भी.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: सिर्फ मूवी कल हो ना हो फॉर यू. गुड इवनिंग मनीष मैजी चांदनी की तरफ से मैसेज आया है. हेलो दिप्रिवर से फैमिलीज हम मई सुन रहे हैं. हेलो जी. हेलो टू ऑल आर एम टू रेडियो मस्त लिसनर्स. मिस्टर रंजीत रचन ऑफ वायल मुसलमान दिप्रिवर सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे. विश हिम लॉन्ग लाइफ गुड हेल्थ हैप्पी हैप्पी बर्थडे. एंड यहाँ पर लवली वॉइस प्रीतम बीतो की तरफ से मैसेज आया. हेलो जी मनीष अमर राजा बानी डिसिक फैमिली कुबलाल फैमिली फ्रॉम रिविया जोधपुर की तरफ से भी मैसेज आया है. हैव अ वंडरफुल इवनिंग आउट देयर.
1: इवनिंग लाउंज. इवनिंग लाउंज
2: RM2
1: रेडियो मस्ती.
0: वैसे हम साथ में गायत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं फॉर द ब्यूटीफुल मैसेज. और यहाँ पर कैन आई प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर समवन रियली स्पेशल. जी हाँ पधारिए आ जाइए. बस आप फोन भी कर सकते हैं 402-80-35 पर 402-80-35 पर. एंड आगे थे नमस्ते जी आप कैसे हो. मेरी फ्रेंड इंदिरा श्यामा मीरा सिनन कविराज साधना मलिनी कविता और आपके लिए भी अनिता ऑफ फ्लेक्स से.

0: कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। वैसे किसी के बगैर हमारी दुनिया कितनी अधूरी हो जाती है, ये एहसास बस उन लोगों को पता है जो अपनों से दूर, बस कई दूर रहते हैं। बस यहाँ पर गुड इवनिंग जी, कैन यू प्लीज डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, बरसात मूवी से। थैंक यू सो मच सर। आर वी जी जो कि हमारे साथ है, हेलो गुड इवनिंग। अब्दुल सारा बानू वर्किंग राइट नाउ एट फिलिंग स्टेशन। ओके जी, बॉन कुराज गुजार टू यू। हेलो रेडियो मस्ती, आई एम क्रिस्टे फ्रॉम रिविया दि क्रेओल। प्लीज एनी रोमांटिक सॉन्ग हो, चाहे मेरे प्यारे हस्बैंड के नाम विक्रम, ऑल्सो फॉर माई ट्विंस कौशिक एंड कौशल। और साथ ही हम डेडिकेट करना चाहते हैं टू समवन रियली स्पेशल, जो कि हर घंटे हर मिनट जब भी वो उनको फुर्सत मिलते हैं तो एक मैसेज, एक वॉइस नोट भेज देते हैं। दिलेश शर्मा जी, आप गाड़ी चला रहे हो तो हैव अ वंडरफुल टाइम, एन्जॉय योर ड्राइव। और आपकी नई जॉब के लिए भी हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। हैव अ वंडरफुल वंडरफुल करियर अहेड। ओके जी, एंजॉय कीजिएगा।
1: इवनिंग लाउंज,
2: इवनिंग लाउंज,
3: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: Evening Lounge. Evening Lounge.
1: RM2.
0: Radio Musti. चलिए बेबसी दर्द का आलम ये गाना चल पड़ा, बाबुल मूवी से लिया गया ये गाना सभी आशिकों के नाम। वैसे वो आशिक जो हमारे साथियों हैं, बस बिना कुछ कहे बिना कुछ लिखे साथ निभाते रहते हैं। कभी कभी दिल की बात कहना कितनी मुश्किल हो जाता है ना, बस यूं ही बेबस होकर हेल्पलेस होकर उसी की खुशी में खुश होना और सब कुछ यूं ही जाने देना।

0: Evening Lounge,
1: Evening Lounge,
2: RM2,
0: Radio Musti. चलिए, बहुत सारे लोग अभी ड्राइव भी कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिल रहा है मैसेजेस भेजने के लिए. कुछ लोग कह भी रहे हैं वी आर ड्राइविंग राइट नाउ. वैसे यूं ही गानों का लुफ्त उठाते रहिए. ये है RM2 रेडियो मस्ती विद यू मनीषमा. शादी भारी है आपका, बस 7 मिनट बाकी हमारा आपके साथ का. या फिर कैनेडा से राधा, शादी भारी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मैसेज, दिल को छू लिया.

वैसे आशा करते हो आपकी आँखियों में हमने हंसी डाला। वैसे अभी के लिए जाने का समय हो चला है। यू टेक केयर गाइस, हमारी मुलाकात संडे को होगी सुबह के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। बी रेडी।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits music only.
1: Feels a musti.
2: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musti.
3: स्वागत है आप सभी का लेडीज एंड जेंटलमैन, ये लेट नाइट ग्रूव्स RM2 पर। और अब जैसे कहते हैं कि सफर जब शुरू होता है ना तो पूरी एनर्जी होती है, तो म्यूजिक भी कुछ ऐसे रखने वाले हैं और फिर धीरे धीरे आपका साथ टिल मिडनाइट देने वाले हैं। एक और नया दिन और हर दिन की तरह एक नया सफर जो आपने पूरा किया होगा, और कल एक नए सफर के लिए बिल्कुल तैयार। तो बस यहाँ पर गानों की होगी बौछार, भीगने के लिए तैयार, तो चलते हैं।
2: लेट नाइट ग्रूव्स
0: RM2 Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: कितने सारे हमारे लिसनर्स होंगे जो कि दूर देश से हमारे साथ दे रहे हैं, लेकिन इंटरनेट के जरिए सब कुछ कितना पास हो गया ना, बस क्लिक ऑफ बटन और आप पहुंच जाते हैं, जुड़ जाते हैं अपनी कंट्री के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने म्यूजिक के साथ। नॉट टू फॉरगेट एमबीसी प्ले 1.0, अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से करो, उसके बाद आप लाइव सुन पाएंगे रेडियो बस इंटरनेट से कनेक्ट होकर, और फिर हम और आप ऐसे ही मैजिकल म्यूजिक जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे।
2: Late night grooves.
0: RM2. Radio Musty.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: हमारा रेडियो वैसे ही चलता जाता है क्योंकि हमें पता है कि उस साइड से आप हमारा साथ दे रहे हैं। गाने मस्त जबरदस्त और मूड तो एकदम फिट एंड फाइन। तो नींद को अगर आपने थोड़ी देर के लिए स्नूज बटन में डाल दिया है तो चलते जाइए क्योंकि हम भी आपका साथ देने का सोच के ही आए हैं। चलिए चलते हैं अगले गाने के साथ।
1: Late Night Grooves. RM2 Radio Musti.

0: You're listening to RM2, a Radio Masti.
1: पूरी दिन की भाग दौड़ी के बाद आपको यहाँ पर जो खामोशी मिलती है वो कुछ अलग ही। दिल खामोश लेकिन म्यूजिक से भरा हुआ।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: RM2
1: Radio Musty.
0: Feel the Musty.
2: Full on fun and music is out on Late Night Grooves RM2. और अभी ऐसे कुछ लोग होंगे जो कि अभी निकल पड़े हैं लेट नाइट ड्राइव्स या फिर काम से वापस, हाँ क्या करें, काम ही नहीं खत्म हुआ तो वापस लौट कर आ रहे हैं। वीकडे जून का महीना और धीरे धीरे ठंड भी अपना असर दिखाती हुई, नॉट ईजी है अब जाकर बस सोना और उसके बाद कल वापस आ जाना, क्या कह रहे हो, यही है। अरे साहब साहस रखिए, लेकिन ये सच बात है कि आज अगर एक्स्ट्रा मेहनत कर ली तो एक्स्ट्रा रंग आपकी मेहनत का कल जरूर दिखने वाला है। ऑल द बेस्ट।
3: लेट नाइट ग्रूव्स
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। Radio Musti, feel the musti.
4: Nimura, nimura, nimura.
3: Check this out.
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: Radio Musty.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
0: Radio Musty.
2: म्यूजिक की बीट और ये कहूँगा रिपीट की उसका स्टाइल ही कुछ अलग है। हर लिरिक्स पर स्माइल या फिर हर एक बीट पर आप वाइब करते हुए। ज़रूरी है ज़िंदगी के इस फलसफे को समझना, जहाँ पर आप सफ़र में अकेले ज़रूर चलते हैं लेकिन कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलता है साथ निभाने के लिए। और म्यूज़िक है ना गुनगुनाने के लिए, तो फिर देर किस बात की।
0: लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
0: RM2 रेडियो मस्ती,
2: हिट म्यूजिक ओनली।
3: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hits music only.
1: Feels a musti.
3: काफी हमारे दोस्त हैं जो कि पूरे दिन घर पर होते हैं कंप्यूटर लैपटॉप पर और फिर काम करते करते बहुत सारा काम है आजकल। तो अगर हम बात करें आईटी की या फिर वर्क फ्रॉम होम, ऐसे बहुत सारे हैं जो कि दूर देशों के साथ भी काम करते हैं, तो उनकी जो टाइमिंग है चेंज हो जाती है। लेकिन ये जो आपकी टाइमिंग है ना म्यूज़िक सुनने की इस वक्त, वो बिल्कुल फिट है, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त आपको सुकून चाहिए इन गानों के साथ। तो देर क्यों करें।
2: लेट नाइट ग्रूव्स
0: RM2 Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musty. Radio Musti.

0: RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.
1: इस वक्त कुछ लोग सो रहे होंगे और कुछ लोग रेडियो का साथ दे रहे होंगे, और जो सुन रहे हैं उनकी रात हमेशा ज़्यादा फन होती है, इसलिए क्योंकि आप जब म्यूज़िक को अपना साथी बना लेते हैं तो बॉडी हैप्पी हो जाती है, जो हैप्पी हॉर्मोन्स है वो उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, मिल जाते हैं एनर्जी के बबल्स, और ऐसी गायब होती हैं ज़िंदगी की सारी ट्रबल्स। हाँ, लेकिन पूरा अपना समय लेकर सोना 7 घंटे या ज़्यादा है, ये भी ज़रूरी है, तो बस थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। सही टाइम पर है सोना, कल उठेंगे फिर देखेंगे जो है होना।
2: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musty.

0: Welcome to Radio Musty. Check this out. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: भाई रात का मजे एक अब पीक पर है. लाइट स्लो, मूड हाई और बॉलीवुड फुल पावर में. हर गाना आपके एनर्जी को और बूस्ट करेगा. तो चलो एक ड्राइव पर चलते हैं हम और आप, जहाँ पर म्यूजिक है, रिलैक्स करने का मौका. और इस म्यूजिकल नाइट में अरे म्यूजिक तो बनेगा आपका पार्टनर.
3: लेट नाइट ग्रूव्स,
0: RM2, रेडियो मस्ती.

0: वेलकम टू RM2।
1: आता है मुझको प्यार में जल जाना।
2: इट्स ऑल डे लॉन्ग बॉलीवुड हिट्स म्यूजिक।
3: चेक दिस आउट।
2: रेडियो मस्ती। रेडियो मस्ती। फील द मस्ती।
4: निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा।
3: चेक दिस आउट।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: Radio Musty.
1: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musty. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musty.
0: Radio Musty.
2: ये भी हुआ होगा कि आपने किसी से अभी बात की होगी और बटन दबाकर बस किसी से भी कनेक्ट कर लें कभी भी, लेकिन ये सच है कि रात में ना ये कॉन्वर्सेशंस काफ़ी डीप हो जाती हैं। पूरे दिन की बातें या फिर एक सिंगल टॉपिक पर बात करने के लिए इतना सारा वक्त जो कि आपको लगता है है, लेकिन धीरे धीरे ये जो घड़ी है ना टिक टिक टिक करती जा रही है आगे अपनी रफ्तार तेज ऑटोमेटिक। तो बस इमोशंस को कंट्रोल में रखिए और बाकी अगर प्लानिंग कर लिए कल की भी तो वेरी गुड। टाइम है तो म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए।
0: लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: time to Radio Masti. Feel the Masti.
1: म्यूजिक के साथ हर एक आवर बन जाता है गोल्डन आवर. साउंडट्रैक भी गोल्डन ही होना चाहिए, यानी कि चुने हुए गाने होने चाहिए. तो बस ये जो धमाकेदार, ये जो चुने हुए गाने हैं, ये हैं सिर्फ और सिर्फ

0: आप ही के लिए। हो सकता है कि हाथ में हाथ डाले अपने इमोशंस को संभाले आप भी एक अलग ही दुनिया बना रहे होंगे अपने प्यार की दुनिया। तो चलिए म्यूजिक उसमें शामिल करना ना भूले।
1: लेट नाइट ग्रूव्स RM2 Radio Musti

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: रेडियो मस्ती।
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: हिट म्यूजिक ओनली
3: रेडियो मस्ती फील्स अ मस्ती।

0: Welcome to RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: Hit music only.
1: Feels a musti.
3: आज की रात का एनर्जी का मीटर फुल ऑन है और गाने भी वैसे ही पावरफुल लाइंड अप हैं। कुछ ट्रैक्स आपको डांस करने में मजबूर करते हैं और वहीं पर कुछ सिंग अलोंग करने के लिए कुछ गाने बस आपको हैप्पी फीलिंग देकर चले जाएंगे तो कुछ नींद को थोड़ा और वेट करवाएंगे। तो चलिए, आप अपना फेवरेट गाना सुनने के लिए तैयार हैं, सुन लिया है या फिर थोड़ा इंतज़ार है, जो भी 3 घंटे का सफर उसमें हमें मिलेगा अवसर टू इंक्लूड योर फेवरेट ट्रैक्स।
2: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.
2: कभी कभी मिडनाइट के पहले वाले जो मोमेंट्स होते हैं वो सबसे स्पेशल होते हैं और उन मोमेंट्स को परफेक्ट बनाता है गुड म्यूजिक, जहां पर कुछ बात होगी जो आज की दिमाग में घूम रही होगी दिमाग के राउंड अबाउट पर, और कुछ होंगी जो कल के लिए बिल्कुल सेट होंगी कि कल होगा तो मेरा पहला मूव ये होगा या फिर पहला काम जो मैं करने वाला हूँ वो ये। कुछ कहेंगे कि हाँ कल छुट्टी आराम से उठेंगे, क्या पता आपकी नाइट शिफ्ट हो और फिर आप एक बार फिर से शाम को निकल जाएं। हर किसी की अपनी अपनी अलग ज़िंदगी, अलग स्टाइल, अलग अलग रफ्तार, लेकिन जो भी रफ्तार वहाँ हर कोई करता है अपने स्टाइल ऑफ म्यूजिक से बहुत ही प्यार। म्यूजिक का खजाना आपको चाहेंगे बताना, आरएम टू पर लेट नाइट ग्रूव्स।
1: लेट नाइट ग्रूव्स
3: आरएम टू रेडियो मस्ती।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.

0: RM2 Radio Musty. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty. Feels a musty.
2: Late night और Bollywood songs. ये है Evergreen Love Story. और वैसे भी आज जो मैजिक है ना म्यूजिक का, वो हवा में गाने जो इंस्टेंटली मूड को अपलिफ्ट कर दें, इससे बढ़िया और क्या? वो गाने जो लोनलीनेस को बाय कर दें, इससे भी बढ़िया और क्या? तो चिल कीजिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि मिडनाइट अब ज्यादा दूर नहीं.
3: लेट नाइट ग्रूव्स.
0: RM2 रेडियो मस्ती.

0: Welcome to Radio Musty. Check this out. The latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty feels a musty.
2: हाँ, जहाँ पर हम मिडनाइट का काउंटडाउन साथ साथ कर रहे हैं, वहीं पर ये जो म्यूजिकल वाइब्स है ना, ये और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। कई लोग हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, लेकिन साहब सही टाइम पर सोना बहुत ज़रूरी है। बॉडी में फ़र्क एकदम से साफ नज़र आता है। अगर आप सुबह फ्रेश उठना चाहते हैं तो सही टाइम पर सोना, लेकिन अगर नींद खुल जाए और लगे कि इस वक्त कौन साथ देगा, तो समझ गए आप, म्यूजिक 24/7 आपके लिए हमेशा।
3: Late night grooves.
0: RM2 Radio Musty.

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: कभी वो यादों का एक जरिया होता है।
1: रेडियो मस्ती, वन हिट आफ्टर अनदर।
2: रेडियो मस्ती।
3: सो क्लॉक मिडनाइट के करीब है, लेकिन मस्ती अभी भी जारी है। रेडियो मस्ती पर लेना ग्रूव्स, और आज के इस म्यूजिकल मैजिकल सफर में फन, यादें और बॉलीवुड की एनर्जी, ये सब थी नहीं। कल एक बार फिर से एक नया सफर शुरू होगा, जहां पर नए लोगों से मुलाकात होगी। हाँ, अपने दिल से भी कुछ बात होगी, लेकिन उसमें म्यूजिक जरूर शामिल करना याद रखें। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप भी हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। जल्दी मुलाकात होती है, टिल देन यू टेक केयर, फिर से मिलते हैं। गुड नाइट, बाय बाय।
2: लेट नाइट ग्रूव्स,
1: RM2, रेडियो मस्ती।

0: कुछ होता है राहुल तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
4: अल्लाह बचाए मुझे तेरे वार से।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स।

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।
0: RM2 Radio Musti.
2: Hit music only.
3: Radio Musti feels a musti.

0: RM2.
1: Radio Musty feels a musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.

0: Radio Mercy
1: in the mix.
0: Radio Musty feels a musty
1: in the mix.

0: RM2.
1: Radio Musty. Feels a Musty.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

0: Radio Westy
1: in the mix.
0: Radio Westy feels a musty
1: in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio Musty. In the mix.

0: Radio Mesti
1: in the mix.
0: Radio Mesti feels a Mesti
1: in the mix.
2: जिस दिन से

0: एक बात बताऊं दोस्त?
1: बता बता जल्दी बता।
0: एक बार वो मुझे मिलने आई।
1: अच्छा?
0: मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया।
1: फिर क्या हुआ?
0: उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैंने उसकी आंखों में आंखें डाल दी, बस दोनों देखते रह गए।

0: तभी उसका टेलीफोन आया। हाँ, कहने लगी,
1: हेलो हेलो डार्लिंग
0: डार्लिंग।
1: हाँ,
0: फिर क्या बोली?
1: बोली मेरे घर में पार्टी है, आओ।
0: जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा वहाँ उसकी सिवाय कोई भी नहीं था।
1: फिर क्या हुआ?
0: मैं था, वो थी,
1: मतलब
0: मैं था,
1: तन्हाई थी।

RM2. Radio Musty. In the mix. Radio.